FM 102.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रथम सभा अब आरंभ होती है।

102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज

0: संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। रोम रोम में रम रहा उसी को राम जान। जी हाँ, जीव पूर्ण जीवन इसी जिज्ञासा में लगा रहता है कि वो अर्थ को एकत्र कर पाए। अर्थ धन वही सच्चा, वही कीमती जिसमें प्रभु का नाम छुपा हो।

मातृशक्ति या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमत्तसै नमत्तसै नमत्तसै नमो नमः।

आज के वंदना कार्यक्रम में आपने पंडित डीवी पुलस्कर, हरिओम शरण, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में कुछ भक्तिपरक रचनाएं सुनी। इसी के साथ आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न

0: लीजिए सुनिए चिंतन बिंदु। चिंतन बिंदु में आज का चिंतन संगति का प्रभाव। आलेख डॉक्टर शरदचंद्र सक्सेना का, वाचन राखी कटारा का।
1: सम्राट रामदेव का पुत्र बहुत उद्दंड था। किसी भी सभासद, मंत्री या सेनापति का अपमान करने में उसे बहुत आनंद आता था। राज्य के सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि राजकुमार कुमारदेव के दर्शन न हो। सम्राट ने अनेकों विद्वानों से परामर्श किया, पर वो राजकुमार कुमारदेव की उद्दंडता नहीं छुड़ा पाए। दिन प्रतिदिन राजकुमार कुमारदेव का स्वभाव और भी उग्र होता चला गया। अब तो वो प्रातः, सायं या रात्रि में किसी भी राज अधिकारी, मंत्री या सभासद के पास पहुंच जाता, होनी या अनहोनी मांग करता। मांग चाहे पूरी की जाए या नहीं, लेकिन अपमान अवश्य करता। सम्राट रामदेव अत्यधिक चिंतित थे। कुमारदेव का स्वभाव राजकुल के लिए कलंक सिद्ध हो रहा था। सम्राट ने महर्षि तीर्थराज के पास अपने अति विश्वस्त सभासद के द्वारा कुमारदेव की समस्या भेजी। महर्षि एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने सम्राट को यज्ञ में आमंत्रित किया और सभासद से कहलवा भेजा कि जब सम्राट आएंगे तभी उनकी समस्या का समाधान भी होगा। यज्ञ प्रारंभ होने के 3 दिन पूर्व ही सम्राट रामदेव आश्रम की ओर चल पड़े। पहला पड़ाव राजधानी से 30 मील दूर एक गांव के निकट रखा गया। दिन भर की यात्रा से थके सैनिक और सम्राट शीघ्र ही सो गए। तभी किसी विलक्षण आवाज ने उन्हें जगा दिया। ये आवाज किसी नन्हे से तोते की थी। वो मनुष्य की बोली में अपने स्वामी से कह रहा था, स्वामी आज तो बहुत अच्छा शिकार आ गया है। इसके पास तो सोना ही सोना है। सोने का मुकुट और मणियों जड़ित बहुमूल्य वस्त्र हैं। अब तो जीवन भर भटकना नहीं पड़ेगा। स्वामी एक ही दाव में हिसाब कर लें, ऐसा अवसर फिर हाथ नहीं आएगा। तोते का मालिक एक खूंखार डांकू था। सम्राट को वो पहचानता था। उसने तोते को चुप कराना चाहा, किंतु ढीठ तोता चुप न रहा। फिर बोला, सम्राट है तो क्या हुआ, सिर धड़ से अलग कर दीजिए और चुपचाप सारा सामान अपने अधिकार में ले लीजिए। रात के अंधेरे में सम्राट रामदेव की नींद उड़ गई। तोते की भयानक मंत्रणा ने उन्हें कुछ डरा दिया। सुबह होने से पूर्व ही उन्होंने सैनिकों को जगा दिया और उन्हें आगे प्रस्थान की आज्ञा दे दी। सम्राट रामदेव अपनी यात्रा पूरी कर महर्षि तीर्थराज के आश्रम में पहुंचे। आश्रम पहुंचकर महाराज महर्षि के दर्शन करने उनके पास गए। चरण स्पर्श किए तभी एक मधुर ध्वनि उनके कानों में पड़ी, स्वागतम सुस्वागतम सम्राट। आश्चर्य से सम्राट ने ऊपर दृष्टि उठाई। समीप के एक वृक्ष पर बैठा एक नन्ना सा तोता बोल रहा था। रात की घटना सम्राट को तत्काल याद आई। सम्राट बोले, तोते तुम्हारा स्वर कितना प्रिय और मोहक है, और एक वो स्वर था जिसने मुझे डरा दिया। तोते के पूछने पर सम्राट ने रात का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तोते ने अत्यधिक व्यथित होते हुए कहा, महाराज वो तोता मेरा सगा भाई है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। सम्राट बोले, वत्स एक ही उदर से जन्मे, तुम दोनों भाइयों में ये विसंगति कैसी? महाराज ये सब संगति का फल है। मेरा भाई डाकुओं के साथ रहता है, इसलिए स्वाभाविक है कि उसके स्वभाव में क्रूरता हो। मुझे जो ज्ञान मिला वो महर्षि के आश्रम का प्रतिफल है, तोते ने जवाब दिया। सम्राट रामदेव को अपनी समस्या का कारण और निवारण मिल गया। उन्होंने यज्ञ समाप्त होने के पश्चात राजधानी वापस आते ही बुरे साथ

0: साथियों का राजकुमार कुमारदेव से मिलने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया।
1: संगति प्रभाव, ये था आज का चिंतन। आलेख डॉक्टर शरदचंद्र सक्सेना का था, वाचन राखी कटारा का। इसी के साथ आज का चिंतन बिंदु कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:35 होने को है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान में आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। स्वर महेंद्र कपूर का है, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदरपूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपना अज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन हैं?

संगीतकार थे सतीश भाटिया। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत प्रातः 7 बजे। प्रातः 6:50 पर सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज का विषय रहेगा ऊसर भूमि बनने के कारण। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, जिसमें आज आप सुनेंगे यात्रा ब्रज 84 कोस की में डीग यात्रा पर कार्यक्रम, प्रस्तुति रश्मि शर्मा की रहेगी। साथ ही रहेंगे हवेली संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज के कलाकार रमेश चंद्र राजा चौबे, आप इनसे सुनेंगे पद गायन। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि। दिन में 9 बजे हिंदी वार्ताक्रम में आज आप सुनेंगे आज का विषय भारतीय अस्मिता का अद्भय जय घोष वंदे मातरम। वार्ताकार होंगे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा। प्रातः 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबो हवा, आज का विषय समुद्र और पर्यावरण। आलेख वाचन चंद्रशेखर सिंह का रहेगा। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे परिचर्चा जिले में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम और जन सहभागिता, इस विषय पर प्रतिभागी होंगे डॉक्टर संजीव यादव, डॉक्टर आर चंद्रावली, लक्ष्मीकांत गौड़। आपसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। दिन में 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम उमंग। श्रोता सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी दिन में 11 बजे। फिल्म संगीत का आनंद एक बार फिर से लेंगे आप दिन में 11:30 पर और गीत बात एसएमएस में दिन में 12 बजे। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम, आज के कलाकार होंगी श्रीमती नीरज। मैंने सुनेंगे अपना कार्यक्रम वनिता लोक दिन में 1:15 पर, जिसमें आज चर्चा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस गर्मियों में बच्चों की देखभाल विषय पर रहेगी। साथ ही छाया जैन से आप सुनेंगे वार्ता बच्चों के विकास में माता पिता की भूमिका। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी हमारी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शिल्पा महाजन से युवा वार्ता युवाओं की बढ़ती नशा प्रवृत्ति। साथ ही लेंगे आनंद कार्यक्रम में फिल्म संगीत का।

संध्या 6:15 पर हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे। आज का विषय रहेगा नए उद्यान लगाते समय सावधानियां। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर उदय भान सिंह, आपसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र सिंह और नीलमणि शर्मा। कार्यक्रम का समय संध्या 6:15। भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन संध्या 6:45 पर सुना जा सकेगा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण में, समय रात्रि 10 बजे। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे जिला खेल अधिकारी राकेश यादव से ये भेंट वार्ता। आलेख वाचन देवराज कृष्ण दीक्षित का रहेगा। साथ ही सुनेंगे शरद श्रीवास्तव से वार्ता, आईपीएल खेलों का आर्थिक पक्ष। प्रस्तुतकर्ता होंगे इस कार्यक्रम के ओपी सिंह। रात्रि 9:30 पर मनी टॉक और मंथन, रात्रि 9:45 पर, ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली

0: केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। तो ये था विवरण हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय ऊसर भूमि बनने के कारण। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, आज आप ये जान लें कि अच्छी भूमि ऊसर कैसे बनती है। इसके पीछे कारण ये रहा है कि गंगा जमुना और अन्य नदियों से सिंचित भूमि प्रारंभ से उपजाऊ रही है, परंतु इसके कुछ भागों में वनों के कट जाने तथा वन विहीन भूमि का हजारों वर्षों तक उचित प्रबंध न होने से उसका एक बड़ा भाग ऊसर हो गया। अधिकांशतः वही मिट्टी ऊसर बनती है जो चिकनी या भारी होती है तथा जहाँ के पानी में, चाहे वह भूमिगत हो या बहकर आया हो, घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है। वर्षा के दिन और वर्षा की मात्रा जहाँ पर कम होती है, हमारे प्रदेश में कहीं कहीं पर वर्षा सामान्य से कम होती है और जहाँ पर वर्षा पर्याप्त या अधिक मात्रा में होती है लेकिन वहाँ पर पूरे वर्ष में वर्षा के दिन बहुत कम होते हैं और सूखे के दिन अधिक होते हैं। जिस भूमि पर पेड़ पौधों का आवरण नहीं होता है वहाँ पर तेज धूप और हवा के कारण भूमिगत जल धरातल पर आकर के बाष्पित होता रहता है और यदि जल में घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक हुई तो यह अधिक मात्रा में धरातल पर रह जाते हैं। यद्यपि ये लवण वर्षा के दिनों में पुनः वर्षा के जल के साथ नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं, परंतु चूंकि वर्षा के दिन कम होते हैं या वर्षा कम होती है इसलिए धीरे धीरे यह भूमि की धरातल पर अधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं। वर्षों तक इसी प्रक्रिया के चलते रहने से भूमि जो है ऊसर होने लगती है, जिसके उपरांत उसमें पानी का रिसाव कम हो जाता है तथा भूमि अधिकाधिक ऊसर बनती जाती है। इसके अतिरिक्त पानी के जमाव वाली जगहों पर जब घुलनशील लवण अधिक होते हैं तो वे भूमि की धरातल पर एकत्र हो जाते हैं और वह ऊसरीली हो जाती है। जैसा कि तराई के कुछ क्षेत्रों में देखा गया है, जब ऊसर भूमि बनने की बात चल रही है तो इसके साथ साथ ये भी जान लेना आवश्यक है कि ऊसर भूमि कितने प्रकार की होती है। साधारणतः ऊसर भूमि को तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है लवणीय भूमि और दूसरी है क्षारीय भूमि और तीसरी भूमि होती है लवणीय और क्षारीय दोनों मिलमा भूमि। लवणीय भूमि किसे कहते हैं, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि लवणीय भूमि को सफ़ेद ऊसर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि घुलनशील सफ़ेद नमक भूमि की ऊपरी धरातल पर एकत्र हो जाते हैं और इसमें का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेकर के 8.5 तक होता है। विद्युत संचालकता 4 से अधिक होती है तथा इसमें विनिमय योग्य सोडियम आयनों की सांद्रता 15% से कम होती है। क्षारीय भूमि जो होती है इसे काला ऊसर कहते हैं। इसके क्षार की सक्रियता के कारण मिट्टी की संरचना भी नष्ट हो जाती है और वह फूल जाती है। इसके जहरीले सोडियम पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है। सोडियम पदार्थों को निकालना केवल रासायनिक विधि द्वारा ही संभव है। ऐसी भूमि का पीएच मान काफ़ी अधिक होता है, 8.5 से लेकर के 10 तक होता है और इससे भी अधिक कई बार देखा गया है। विद्युत संचालकता 4 से कम लेकिन विनिमय योग्य सोडियम आयनों की सांद्रता 15% से अधिक होती है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था ऊसर भूमि बनने के कारण। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: अमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनस्य निरन्तरप्रयासै भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जासंकटस्य प्रभावीरीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामीरात, नीदरलैण्ड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां षड्दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री शुक्रवासरे नीदरलैण्डदेशं सम्प्राप्स्यति। सप्तदशाधिकद्विसहस्रतमे वर्षे स्वान्तिमयात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैण्डदेशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडनदेशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडनदेशस्य समकक्षेण उल्फ टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिकवार्तां करिष्यति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामी यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविधक्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत विश्वा शर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असमराज्यस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असमराज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं शर्मा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं त्रिस्तोभिः पराजितम् इति वार्ताः।
2: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में ये पहला गीत राजकुमारी के स्वर में फिल्म महल से, गीत जय नक्शवा और संगीत खेमचंद प्रकाश का।

अभी सुना आपने राजकुमारी को इस गीत में, और आइए सुने अगला गीत शमशाद बेगम और साथियों के स्वर में फिल्म मदर इंडिया से, गीत शकील बैदानी का और संगीत नौशाद का।

शमशाद बेगम और साथियों को अभी आपने सुना इस गीत में। गीत फिल्म मदर इंडिया से था।

और आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीत में सुरैया को, फिल्म अफसर का ये गीत, शब्दकार नरेंद्र शर्मा और संगीत सचिन देव वर्मन का।

मनमोर हुआ मतवाला। अभी आपने सुना फिल्म अफसर से, ये गीत स्वर सुरैया का था, गीत नरेंद्र शर्मा का और संगीत सचिन देव वर्मन का। और आइए सुनते हैं शकील बदायूनी की शब्द रचना को, संगीत नौशाद का, आवाज़ इस गीत में मोहम्मद रफ़ी और सुरैया की।

मोहम्मद रफ़ी और सुरैया को सुना आपने फिल्म दास्तान में। गीत शकील बदायूनी का था, संगीत नौशाद का, और आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, संगीत हेमंत कुमार का और लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के युगल स्वरों में ये गीत, फिल्म नागिन से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री, कहा अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। और केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: इस बीच केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुए मंत्री समूह की बैठक में यह जानकारी दी गई। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर सहित अनेक पवित्र तीर्थस्थल अपने वैभव के साथ विकास की

0: यात्रा तय कर रहे हैं।
1: सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है। सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसके पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जोड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का महायज्ञ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं।
1: मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वह देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। मैं मानता था कि तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारें और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वो थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अयोध्या में 2 दिवसीय श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभी कार्य 30 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में स्थित अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के 2 विशेषज्ञ अगले 3 वर्षों तक स्थानीय कर्मचारियों को संरक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे।
3: कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की लैब जो बनाई गई है यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने 2 अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं। लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे।
0: राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से कल जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री, कहा अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। और केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के

0: 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: अपने खार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

कार्यक्रम ब्रज माधुरी सुनवे वारे सभी भैया बहनन को अनुराग पांडे की जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। भैयाओ, हम सब जाने हैं कि ब्रज धरा को कहा महत्व है और याई सो हम सबन को ऐसो प्रयास करना चाहिए कि या में हमारे जो वन हैं, उपवन हैं, जो जीव हैं और हमारी जो भूमि है वो वाकु हम संरक्षण दे सकें और वाको जो नैसर्गिक सौंदर्य है ब्रज को वो बनो रहे। भैया, दूर दूर से जब श्रद्धालु ब्रज में पधारे हैं और जब कबू अपने घर से निकले हैं तो बिने ऐसो भाव हृदय में लगे हैं कि वो अब अपने अपनी लाडली को निहारवे के ताई, अपने गोविंद को निहारवे के ताई अपने घर से निकले हैं और ऐसे ब्रजधाम में जामेंगे जहाँ ठाकुर की लीलान को दर्शन होएगो। तो भैया, बिनके मन को ऐसो भाव या ब्रज धरा को लेकर के या चौरासी को उसको लेकर के है कि घर घर तुलसी पूजा बारो, कितनो पावन कितनो प्यारो, दुर्गा में जहाँ राधे श्याम, प्यारो लगे रसकन को ब्रजधाम। भोर भये बिहरे जमुना तट, भोर भये बिहरे जमुना तट, कालिंदी पान मिले कोऊ फिरे गिरकी परिकम्मा, कोऊ फिरे गिरकी परिकम्मा,

मुक्ति को द्वार खुले, सहज मिले भक्ति निस काम, प्यारो लगे ब्रजधाम। पूर्व पुण्य प्रतापन सो जन, पूर्व पुण्य प्रतापन सो जन ब्रज की ओर खिंचे, श्रवण कीर्तन वंदन पूजन जो रस जाहे रुचे। जे वृंदावन जय नंदगाम, प्यारो लगे ब्रज को ये धाम। तो भैयाओ, ऐसो ब्रज यहाँ पे एक एक कण और यहाँ की एक एक लता वा को विशेष महत्व है। तो जब कहूँ अपने या धाम में पधारें, या हम जब कहूँ घर से निकसें, तो ऐसो भाव रखें कि हमारे ठाकुर की कछु विशेष कृपा भई है, जिनने हमें या 84 कोस में हमें वास दियो है। कहे हैं कि या महत्व को जो समझे वो को बिरला हुए है। और यहाँ जब हम गेल में निकसें, हम यहाँ जब परिक्रमा को निकसें, तो हम देखें कि को दंडवत परिक्रमा लगा रहे हो है और बार बार प्रभु को प्रणाम कर रहे हो है, बिनके चरण में ऐसो भाव रखे अपने शीश को झुका रहे हो है। तो भैयाओ, ऐसो महत्व है या ब्रजधाम को भूलते हुए हम ऐसो प्रयास ना करें, या से हमारे 84 कोस को जो सौंदर्य है, जो आनंद है, वो कहूँ छूट ना जाए, वहाँ में कहूँ कमी ना आ जाए। तो ऐसो प्रयास करना चाहिए कि दूर दूर से जब श्रद्धालु ब्रज में पधारें, तो बिनको कोई कष्ट ना होए, हमसे कबू वो कुछ ठौर को पतो पूछें, तो हम बिनको बतावें और जितने हमारी हो सके हम बिनकी मदद करें। तो भैया, ऐसो भाव रखें हम सिगरी के सिगरी ब्रिवासी, तो बात कछु आनंद की बनेगी। और भैया लियो आनंद आज के या कार्यक्रम में, ब्रजमाधुरी के या कार्यक्रम में आप सुनो यात्रा ब्रज कोश की में। आज डीग धाम को ये वर्णन यात्रा ब्रज को राशि कोश में, प्रस्तुति सहयोग रश्मि शर्मा को।

जय श्री कृष्णा। यात्रा ब्रज चौरासी कोस की के 18वें अंक में आपने किनी गांठोरी तथा वाकी आसपास के अन्य दर्शनीय स्थलन की यात्रा, और आज हमारी यात्रा 19वें अंक में पहुंच रही है डीग की ओर।

छठी कराते डेरावली और वहां ते या स्थान पे नंद बाबा को डेरा लगो, अर्थात यहाँ कछु दिना रह के वे काम में बन गए और वहां ते नंदगांव पहुँचे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप सौंदर्य और वेणु माधुर्य ते श्री राधा के धैर्य धर्म और लज्जा को भी दिखा दियो। यही कारण या को नाम डीग है। यह त्रेता युग को भी प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ प्रकार शत्रुधन जी ने मथुरा, भरत जी ने भरतपुर को बसायो, वही प्रकार लक्ष्मण जी ने भी दीर्घपुर यानी डीग को बसायो।

0: जा प्रकार शत्रुघ्न जी ने मथुरा, भरत जी ने भरतपुर को बसायो, वही प्रकार लक्ष्मण जी ने भी दीर्घपुर यानी डीग को बसायो। यहाँ लक्ष्मण जी को प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ कृष्ण कुंड, साक्षी गोपाल जी को मंदिर और रूप सागर आदि दर्शनीय स्थल हैं।
1: ये है दुनिया का एकलौता मंदिर जहाँ श्री लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी उर्मिला जी के सुंदर स्वरूप विराज रहे हैं। ब्रज 84 कोस के अंतर्गत लठावन डीग में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला जी के साथ विराज रहे हैं। लक्ष्मण जी की अपने भाई श्री राम जी के प्रति अनन्य निष्ठा व प्रेम तथा उनकी पत्नी उर्मिला का अपने पति के लिए 14 वर्ष का अतुलनीय त्याग, इस सब को देखकर भरतपुर के राज परिवार ने श्री लक्ष्मण जी को अपना इष्ट बनाया और लठावन डीग में लक्ष्मण जी का भव्य मंदिर बनवाकर पूजा अर्चना की। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि यहाँ त्रेता युग में शेष के अवतार में प्रकटे लक्ष्मण जी तथा द्वापर युग में शेष के ही अवतार में प्रकटे बलराम जी दोनों के स्वरूप एक साथ विराजते हैं। ब्रज है तो बीच में लड्डू गोपाल विराज रहे हैं। यह मंदिर ब्रज 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत जल महलों की नगरी डीग के मुख्य बाजार में स्थित है। डीग को लठावन भी कहते हैं। डीग में पुरातत्व महत्व के बहुत सुंदर जल महल भी दर्शन।
0: यहाँ से कछु दूरी पे है परमादना, जाको वर्तमान नाम है परमदरा, यथार्थ में याफो नाम प्रमोद वन है। यहाँ राधा कृष्ण युगल मिलके बड़े प्रमोदित भए। गांव के उत्तर दिशा में कृष्ण कुंड और पूर्व में चरण कुंड है।

यात्रा यहाँ से जब कछु आगे चले हैं तब आमे हैं सेतु कंदरा, जाको वर्तमान नाम सेऊ है। दो पर्वतन के बीच में बसो भयो श्री कृष्ण के गौचारण को यह रमणीय स्थान है। पर्वतन के बीच में होने ते या स्थान को सेतु कंदरा कह में है। यहीं से अलीपुर गांव की भी रास्ता है, जहां से आदिबद्री पर्वत के ऊपर चढ़े हैं। पहले यह गांव का नाम आदिबद्री ही हो, किंतु मुस्लिम समाज ने गांव को नाम बदल के अलीपुर रख दिनो। यह ब्रज चौरासी कोस यात्रा में अनेक दर्शनीय स्थल हैं और इन्हीं में से एक सुंदर पर्वत है जाको नाम है धवल पर्वत। धवल अर्थात श्वेत होवे के कारण या कु नवनीत पर्वत भी कहमे हैं। पासई में कदम खंडी है, श्री राधा कृष्ण युगल ने यहाँ झूला झूलने और विविध प्रकार की क्रीड़ा करी ही। यही के पास में नील पर्वत और आनंदरादी घाटी है। देवराज इंद्र ने अपने अपराध को दूर करवे के काजे जा स्थान पे भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीनी, वह स्थान को नाम है इंद्रौली और यह गांव इंदुलेखा सखी को भी काम है। यही कारण यह स्थान को इंद्रौली नाम दियो गयो। यहाँ इंदुलेखा को कुंज, इंद्रकुंड और इंद्रकूप दर्शनीय हैं।

ब्रज भूमि के तो हर कण कण पे श्री कृष्ण और श्री राधा जी को नाम लिखो गया है। हर स्थान को अलग महत्व है। कहूँ भगवान ने गोचारण लीला की नहीं है, तो कहूँ बंसी की टेर सुनाई है, कहूँ गोपीन के संग अन्य लीला करी है, और कहूँ श्री राधा जी संग कोई न कोई लीला अवश्य कीनी है। ऐसा ही एक स्थान है गुहाना, जाको नाम गोदृष्टि वन है। यह श्री कृष्ण के गोचारण को स्थान है। कृष्ण ऊंचे टीले पे खड़े होई के यहाँ ते गौन को देखे है कि गैया कहाँ है, और यहीं ते बिनकु श्यामली धवली कालिंदी आदि नामन से बंसी के द्वारा टेर लगायो करते, जैसे भी दौड़ के बिनके समीप आ जाती। श्री कृष्ण अपने मणिमाला पे गौन की संख्या गिन के उनको अपने गोष्ठ में लेके लौट जावे है। यही श्याम कुंड और गोपाल कुंड है। यहाँ श्री कृष्ण के सखा सुदामा को यह जन्म स्थान है। यहाँ से यात्रा आगे बढ़ चली है कनोवारो की ओर। यह श्री कृष्ण को गोचारण स्थल तथा कण्व मुनि की प्रसिद्ध आराधना स्थलियु है। यही कारण या स्थान को नाम कनोवारो भयो। पासे में सुनेरा की कदम्ब खंडी, पनिहारी कुंड, कृष्ण कुंड आदि दर्शनीय स्थान हैं।

0: और अब यात्रा पहुंच चुकी है श्री राधा जी की माता मही वृद्धा मुखरा जी के निवास स्थान यानी मुखराई। यशोदा जी बाल्यावस्था में इन्हीं के स्तनपान से पली बड़ी और माता मही मुखरा कौतुक व श्री राधा कृष्ण युगल किशोर किशोरी को अलक्षित रूप में मिलन कराए के बड़ी प्रसन्न हो मई। ये महाराज वृषभानु की सास और कीर्ति मैया की माता है और ब्रजवासी इनको बड़े ही नाम से पुकारो करते। ये प्रतिदिन प्रातः काल बड़ी उत्कंठा सो श्री राधा और कृष्ण को दर्शन करने आयो करती। यहाँ मुखरा देवी को मंदिर है जहाँ मुखरा देवी यशोदा मैया और श्री राधा जी विराजमान हैं और यही के समीप एक कुंड भी है।
1: तो ये राधा रानी की ननिहाल गांव मुखराई, नानी का नाम मुखरा देवी है और उन्हीं के नाम से गांव का नाम है मुखराई। देखो बीच वाली राधा रानी है, बीच में राधा रानी है और एक साइड में राधा रानी की नानी है, इनका नाम है मुखरा देवी। और एक साइड में राधा रानी की माता जी हैं जो हैं कीर्ति रानी। ब्रज 84 कोश में तीनों पीढ़ियों के दर्शन यहाँ के अलावा कहीं नहीं है। देखो राधा रानी को एक बार जन्म भयो तो यहाँ पे नानी को पता चली कि मेरी बेटी पे बेटी प्राप्त हुई है, तो बड़ी प्रसन्नता से और नाचते घूमते फिरते यहीं पे, तो उनको एक रथ का पहिया मिल जाता है। रथ चलते थे पहले बहुत सारे, तो रथ का पहिया मिल जाता है। रथ के पहिए पे उन्होंने 108 दीपक जला के और उन्होंने नृत्य किया था राधा रानी की जन्म की खुशी में। अच्छा। और वो नृत्य यहाँ पे अभी भी चलता है, काफी दूर से लोग आते हैं, देश विदेशों में जा चुका है ये चरखोला नृत्य। अच्छा। और यहाँ पे भी बहुत बहुत दर्शन करने वाले आते हैं, यहाँ की माताएं बहने करती हैं।

काफ़ी भजन होता है उसमें और हाथ छोड़ के नृत्य करती हैं वो। तो एक बार राधा रानी बोली, मैया वो तो अपनी मैया नानी के यहाँ पे मिलने जानो हैं, तो मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो तीनों मैयान के दर्शन हैं यहाँ पे, नानी, राधा रानी और माँ, तीनों पीढ़ियों के दर्शन हैं जो ब्रज 84 कोस में यहीं पर हैं। देखो राधा रानी का कुंड है मुखर कुंड, नानी के नाम से कुंड का नाम है। देखो बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उसमें राधा रानी स्नान वगैरह करती थी, तो उसकी एक बार सफाई हुई थी तो स्वयं गिरिराज जी की शिला कुंड से निकली थी, वो आपको दर्शन करा देंगे, यहीं पर साइड में रखी हुई हैं। देखो राधा रानी का कुंड है मुखर कुंड, नानी के नाम से कुंड का नाम है मुखर कुंड, तो इसकी एक बार सबसे पहले सफाई हुई थी तो स्वयं गिरिराज जी की शिला इसमें से निकली थी, गिरिराज जी की शिला स्वयं प्रकट हुई थी अभी।

0: श्री राधे राधे। ये बहुत प्राचीन तीर्थ स्थल है और ये राधा रानी की ननिहाल माना जाता है, और राधा रानी की नानी थी मुखड़ा देवी, उनके ही नाम से ये मुखराई ग्राम पड़ा है। और एक हमारा मुखर कुंड है बगल में, धन्य मुखराई ग्राम है। राधा की ननिहाल परसत मुखरा कुंड जल मेटत सब दुख जाल, ऐसा दिव्य सरोवर है। आज उस सरोवर का भी संस्कार होने जा रहा है, पानी को आज खिलाने में लोग लग गए, सफाई होगी। सब बड़े बड़े बाहर से भी सब तीर्थ यात्री लोग यहाँ पधारते हैं। और जब राधा रानी जब छोटी थी तो नानी के घर आती थी, और राधा रानी का प्राकट्य जब हुआ तो नानी को मालूम हुई मेरी बेटी कीर्ति पे लाली हुई है, तो बड़े ही प्रेम मग्न से खुशी होकर वे एक परात में दीपक रख के नृत्य करने लगी। उसी के भ्रंश में 108 दीपक का चरखुला नृत्य बोला जाता है, जो कि देश विदेशों तक भी जाता है। और आज भी हमारे यहाँ होली के बाद दोज को वो चरखुला नृत्य के दर्शन होते हैं। और पहले तो करीब 1 क्विंटल का वजन होता था, माताएं बलिष्ठ रहती थी तो वो नाचती थी नगाड़े से। उससे अभी भी उसमें 50 किलो वजन रहता है। 108 दीपक रहते हैं, 5 मंजिल का होता है। उसके दर्शन यहाँ पे गाँव में एक ही दिन निकलता है वो होली के बाद दोज को। और जब
1: अच्छा
0: राधा रानी जब छोटी थी, नानी घर आती, जैसे नानी ठाकुर जी सेवा कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, तो बच्चों को सुबह माताएं गोदी में दौड़ना, तो जैसे खिलाती हैं माता भाई तुम यहाँ खेलो, जैसे खिलौना से खिलाती हैं, ऐसे ही नानी दिव्य शिला से खिलाती थी। तो इस शिला से स्पर्श होते ही राधा रानी को इस शिला में से अनेक वाद्य निकलने लगे। आज भी इसमें अनेक वाद्य पर वो राधा रानी निकालेंगी, पर देखने में आप देखोगे तो इसमें हर जगह अलग अलग वाद्य आज भी
2: भैया हो। अब भैया आप सुन रहे हैं यात्रा ब्रज 84 कोस में डीग पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, प्रस्तुति रश्मि शर्मा की हती। और भैया लियोआनंद हवेली संगीत को कलाकार रमेश चंद्र राजा चौबे प्रति आप सुनो पद गायन, रचना बल्लभ गिरधर की जो राग वृंदावनी सारंग में निबद्ध हते।

भैया अब भैया आपने सुनो, हवेली संगीत क्रम में रमेश चंद्र राजा चौबे पैती श्री बल्लभ दास को जे पद बैठी हरे राधा संग जो राग वृंदावनी सारंग में निबद्ध हतो। और यही के साथ आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए हैं। सभी भैया बहनों को हमारी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व सरमा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरिनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह

0: के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
2: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
6: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
7: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
8: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।

0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारण

0: from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम में ये पहला गीत फिल्म रेशमा और शेरा से। आवाज इस गीत में लता मंगेशकर की, संगीत जयदेव का।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म रेशमा और शेरा में, संगीत जयदेव का। और आइए सुनते हैं इस संदेश को।

और आइए सुनते हैं फिल्म सुहाग से ये गीत FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम में फिल्म सुहाग से ये गीत आवाज़, इस गीत में आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
7: आई एम हियर। तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
8: दिमाग चार्ज कर अपना।
9: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
8: देखा
7: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
9: अब क्या करोगे?
7: फ्री वाईफाई है ना,
8: बुद्धू सुधर जा।
9: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
7: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
9: आरबीआई कहता है
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतांजलि में महालक्ष्मी को। फिल्म सुर के इस गीत को लिखा निदा फाजली ने, संगीत दिया MM करीम ने।

अभी आप सुन रहे थे महालक्ष्मी को फिल्म सुर में, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत। इस गीत को लिया फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम, इस फिल्म से ये नगमा। आवाज इस गीत में सोनू निगम और साथियों की।

0: अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और साथियों को फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम, इस फिल्म से था ये नगमा। और इसके साथ ही आज का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हिंदी वार्ता क्रम में आज का विषय भारतीय अस्मिता का अदम्य जय घोष वंदे मातरम। वार्ताकार डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा।
1: भारत की राष्ट्रीय अस्मिता किसी एक कालखंड में निर्मित नहीं हुई है, यह हजारों वर्षों में विकसित सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक विरासत, सामूहिक स्मृति और स्वतंत्रता संग्राम की अमर धारा से निर्मित हुई है। भारतीय अस्मिता अर्थात भारतीयता का मूल तत्व केवल भूगोल या राजनीतिक सीमाओं से परिभाषित नहीं होती, यह उन आध्यात्मिक मूल्यों, बहुलतावादी परंपराओं, मातृभूमि भक्ति और मानवीय समन्वय की भावना से सिंचित है जो भारत को विशिष्ट बनाती है। इसी अस्मिता का सर्वाधिक प्रभावशाली, भावनात्मक और प्रेरणादायक उद्गम स्थल है राष्ट्रगीत वंदे मातरम। यह गीत केवल साहित्यिक रचना नहीं, न केवल स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान, बल्कि

भारतीय आत्मा की वह ध्वनि है जिसने जनता के हृदय में स्वाधीनता का ज्वार उत्पन्न किया। वंदे मातरम, मातृभूमि को वंदन, आदर, समर्पण और प्रेम की अद्वितीय अभिव्यक्ति भारतीय अस्मिता का सबसे प्रखर जयघोष है। यह जयघोष राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गौरव, प्रकृति पूजा और आत्मिक उन्नयन का प्रतिफल है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना 1870 के आसपास वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। बाद में यह गीत उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। यह वह काल था जब भारत में राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा था, अंग्रेजी सत्ता अपने चरम अहंकार पर थी और भारतीय समाज में नई राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण हो रहा था। ऐसे अस्थिर समय में वंदे मातरम मातृभूमि की शक्ति और सौंदर्य का वह गायन बना जिसने भारतीय हृदय को अद्भुत उत्साह और आशा से भर दिया। आनंद मठ एक आध्यात्मिक राष्ट्रवादी ग्रंथ है। इसमें मातृभूमि को तीन रूपों में दर्शाया गया है। शोषिता माता, जो दुख में है, गुलामी में जकड़ी है। संघर्षरत माता, जो उठना चाहती है पर बाधाएं हैं। उद्भासिता माता, जो समृद्ध, पराक्रमी और विजयी है। वंदे मातरम इन तीनों अवस्थाओं के बीच आशा की किरण है। यह उस मुक्त, समृद्ध और सुशोभित भारत की कल्पना का गीत है जिसके लिए संघर्ष करना हर भारतीय का धर्म है। वंदे मातरम की भारत को आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि औपनिवेशिक दमन के दौर में देशवासियों को एक ऐसे सांस्कृतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सूत्र की जरूरत थी जो उन्हें पराधीनता की बेड़ियों से बाहर निकलने की प्रेरणा दे सके। उस समय अंग्रेजी शासन केवल राजनीतिक नियंत्रण नहीं था बल्कि भारतीय अस्मिता, स्वाभिमान और संस्कृति पर भी गहरी चोट पहुंचा रहा था। ऐसे में वंदे मातरम मातृभूमि को देवी स्वरूप में स्थापित कर राष्ट्रभक्ति की अदम्य चेतना जगाने वाला मंत्र बनकर उभरा। इस गीत ने भारत माता को केवल भौगोलिक सत्ता नहीं बल्कि जीवंत शक्ति के रूप में अनुभव कराया जिससे भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की आकांक्षा और भी तीव्र हुई। वंदे मातरम ने बंगाल विभाजन जैसे आंदोलनों में जन एकता का अप्रतिम साधन बनकर लाखों लोगों को एक भावनात्मक ध्वज तले संगठित किया और अंग्रेज शासन के विरुद्ध निर्भीकता से खड़े होने का साहस दिया। यह गीत किसी जाति, भाषा या क्षेत्र विशेष का प्रतीक नहीं बल्कि राष्ट्र की सामूहिक चेतना को स्वर बना। भारत को इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि स्वतंत्रता के संघर्ष में केवल हथियारों से नहीं बल्कि मनोबल, सांस्कृतिक गर्व और अंतःकरण की शक्ति से भी लड़ाई लड़ी जा रही थी और वंदे मातरम वह प्रेरणा बनी जिसने भारतीयों को अपने राष्ट्र और उसकी गरिमा के लिए समर्पित रहने का संकल्प दिया। वंदे मातरम क्रांतिकारियों के लिए कंठहार बना क्योंकि यह गीत मातृभूमि के प्रति अतुलित प्रेम, समर्पण और स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित करता था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत अंग्रेजी दमन के विरुद्ध संघर्षरत युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसकी पंक्तियों में निहित स्वदेश प्रेम ने क्रांतिकारियों के मन में जोश, त्याग और बलिदान की भावना को प्रबल किया। जब वे गुप्त सभाओं, आंदोलनों या संघर्ष की राह पर बढ़ते थे तो वंदे मातरम उनके भीतर अटूट आत्मविश्वास भर देता था। यह केवल एक गीत नहीं रहा बल्कि स्वतंत्रता के लिए जीवन न्योछावर करने की चेतना का मंत्र बन गया। अनेक क्रांतिकारी इस जयघोष को अपना संकल्प सूत्र मानकर मृत्यु तक अविचल रहे। पुलिस और शासन की कठोरता के बावजूद यह गीत उनके होठों पर बना रहता था और उन्हें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति देता था। वंदे मातरम ने संघर्ष को वैचारिक और भावनात्मक आधार दिया जिसने विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के वीर युवाओं को एक सूत्र में पिरोया। यही कारण था कि यह गीत
भारत की स्वतंत्रता

आंदोलन का प्रतीक बनकर क्रांतिकारियों के हृदय में कंठहार की तरह स्थायी स्थान प्राप्त कर गया। क्रांति का अभियान वंदे मातरम भारत के स्वाधीनता संग्राम में एक सशक्त प्रेरक ध्वनि के रूप में उभरा, जिसने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जनमानस में अदम्य साहस और संघर्ष की चेतना जगाई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत मातृभूमि को देवी स्वरूप में प्रतिष्ठित कर राष्ट्रीय अस्मिता, गौरव और स्वाधीनता की भावना को चरम पर ले जाता है। अंग्रेजी दमन, अत्याचार और विभाजनकारी नीतियों से त्रस्त भारतीयों के लिए वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं था, बल्कि यह क्रांति का मंत्र, संघर्ष का आह्वान और आत्मबल का स्रोत बन गया। 1905 के बंग भंग आंदोलन से लेकर स्वदेशी आंदोलन, असहयोग और क्रांतिकारी गतिविधियों तक यह गीत हर मोड़ पर स्वतंत्रता सेनानियों की धड़कन में बस गया। आजादी के जीवन दीवानों जैसे अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, खुदीराम बोस, भगत सिंह और तमाम क्रांतिकारी दलों ने वंदे मातरम को शक्ति का मूल आधार माना, क्योंकि यह गीत प्रतिरोध, त्याग और मातृशक्ति की भावना को एक साथ जगाता था। इसके उच्चारण मात्र से युवाओं में जोश, ऊर्जा और मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने का संकल्प प्रकट होता था। वंदे मातरम ने क्रांति को जनांदोलन का स्वरूप देकर स्वतंत्रता की लौ को तेज किया और भारतवासियों के भीतर स्वतंत्र, गौरवशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण की अटूट आकांक्षा को जन्म दिया। वंदे मातरम केवल दो शब्द नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता, राष्ट्रभाव, त्याग, बलिदान और स्वाधीनता की सामूहिक चेतना का अद्वितीय उद्घोष है, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नवीन ऊर्जा प्रदान की। वंदे मातरम का अर्थ है माता को प्रणाम, अर्थात भारत भूमि के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह जयघोष क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत बना, क्योंकि इसमें मातृभूमि के प्रति भक्ति, साहस और त्याग की भावना संचारित होती है। लाठी गोली की बारिश झेलते हुए भी सत्याग्रहियों के मुख से वंदे मातरम के स्वर थमते नहीं थे। यह नारा उन्हें निर्भीक बनाता था और राष्ट्रहित के लिए निस्वार्थ संघर्ष करने की शक्ति देता था। यह केवल गीत नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति भावनात्मक एकता, सांस्कृतिक गौरव और स्वतंत्रता की आकांक्षा का प्रतीक है। आज भी वंदे मातरम हर भारतीय के भीतर देशभक्ति, सम्मान और राष्ट्रनिष्ठा का भाव जगाता है। वर्तमान समय में वंदे मातरम की आवश्यकता और महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह केवल एक राष्ट्रगीत नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय अस्मिता और एकता का प्रतीक है, जो आज के विभाजित, प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश में साझा राष्ट्रीय भावना को मजबूत करता है। वैश्वीकरण के युग में जब स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत पर बाहरी प्रभाव बढ़ रहे हैं, वंदे मातरम मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य बोध को पुनर्जीवित करता है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि भारत की विविधता ही उसकी शक्ति है और इस विविधता को एक सूत्र में पिरोने वाली भावना राष्ट्रभक्ति है। सामाजिक तनाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण और व्यक्तिगत हितों के बढ़ते दबाव के बीच वंदे मातरम राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश देकर समाज में सामंजस्य पैदा करता है। यह युवाओं में देश के प्रति उत्तरदायित्व, सेवा और योगदान की प्रेरणा जगाता है तथा उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़कर राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति कराता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिस गीत ने भारतीयों के भीतर त्याग और संघर्ष की शक्ति भरी, वही आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने का भाव पैदा करता है। इस प्रकार वंदे मातरम वर्तमान समय में नैतिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को जागृत कर भारत को आत्मविश्वासी, एकजुट और प्रगतिशील बनाने वाली प्रेरक शक्ति के रूप में अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय चेतना

0: चेतना का वह अमिट स्वर है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में करोड़ों लोगों के मन में आत्मबल, त्याग और राष्ट्रभक्ति की अलौकिक ऊर्जा भर दी। यह गीत मात्र शब्दों का समूह नहीं बल्कि मातृभूमि के प्रति गहन श्रद्धा, सांस्कृतिक गौरव और भारतीय अस्मिता का समग्र प्रतीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह अमर राष्ट्रगीत स्वतंत्रता संघर्ष के प्रत्येक चरण में प्रेरक शक्ति बनकर उभरा और जनमानस में स्वाभिमान का दीपक प्रज्वलित करता रहा। वंदे मातरम ने भारतीय समाज को यह बोध कराया कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं और राष्ट्रीय एकता का सूत्र कितना सुदृढ़ है। यही कारण है कि यह गीत आज भी भारतीय पहचान, गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान का अनन्य प्रतीक बनकर हमें एक सूत्र में बांधता है। वंदे मातरम का जय घोष भारतीय अस्मिता की निरंतर यात्रा को शक्ति प्रदान करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी राष्ट्रभक्ति, समर्पण और सांस्कृतिक चेतना का अविनाशी संदेश बनकर सदैव प्रेरित करता रहेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता क्रम में वार्ता। आज का विषय था भारतीय अस्मिता का अदम्य जय घोष, वंदे मातरम। वार्ताकार थे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। किसान भाइयों, आज मंगलवार दिनांक 12 मई को शाम 6:15 से 30 मिनट अवधि के हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है नए बाग लगाते समय सावधानी एवं तैयारी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, घर परिवार की आय बढ़ाने के लिए यदि हम बागवानी वाली फसलों का उत्पादन करते हैं तो कम जमीन से भी अधिक उत्पादन एवं मुनाफा कमा सकते हैं। ज्येष्ठ मास नए बागों की स्थापना के लिए उचित समय है। बाग लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां एवं खेतों की तैयारी कैसे करें, जैसे कौन कौन से पौधे एवं कौन सी किस्में लगाएं, ऐसे बागों का लेआउट कैसा हो, इन विषयों पर जानकारी देने हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फ़ोन करके या मोबाइल नंबर 9412255575, जी हाँ, मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर उदय भान सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक से। कार्यक्रम का समय रहेगा 6:15। सूचना समाप्त हुई।

0: थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
2: जिले में स्वगणना प्रक्रिया को नागरिकों का उत्साहपूर्ण समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार की

0: की ओर से शुरू की गई इस ऑनलाइन सुविधा के तहत लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से खुद ही जनगणना कर रहे हैं। अभियान के दूसरे दिन 2400 से ज्यादा नागरिकों ने ऑनलाइन स्वगणना पूरी की, जिससे कुल संख्या बढ़कर लगभग 3200 तक पहुंच गई है, जबकि पहले दिन जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों समेत 762 लोगों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की थी। ये ऑनलाइन व्यवस्था सरल, सुरक्षित और समय की बचत करने वाली है। नागरिक अपने मोबाइल नंबर के ओटीपी सत्यापन के बाद निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण कर परिवार से जुड़ी जानकारी भर सकते हैं। फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें आवास, परिवार और सामाजिक स्थिति से जुड़े लगभग 33 बिंदुओं की जानकारी मांगी जाती है। फॉर्म जमा होने के बाद नागरिकों को एक विशेष SEID प्राप्त होती है, जिसे बाद में सत्यापन के दौरान जनगणना अधिकारी को दिखाना होगा। ये प्रक्रिया 21 मई तक जारी रहेगी और प्रशासन लगातार लोगों को स्वगणना के लिए प्रेरित कर रहा है। बेहतर शिक्षा और उन्नत भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरचंदपुर कला में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों के चेहरे उस समय खुशी से खिल उठे जब उनके मानदेय को बढ़ाकर 18,000 रुपए किए जाने की घोषणा का जिक्र हुआ। समारोह का शुभारंभ मारेरा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम में गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे शिक्षा मित्रों और अधिकारियों ने ध्यान पूर्वक सुना। विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय के प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए। जिले में पोषण और बाल विकास सेवाओं को मजबूत करने के लिए 3 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की तैयारी तेज कर दी गई है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को बेहतर वातावरण और सुविधाएं मिल सकें। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि जलेसर क्षेत्र के कोसमा, बिचपुर और अवागढ़ के पुनहरा में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। जलेसर के दोनों केंद्रों पर लगभग 27,80,000 रुपए की लागत आएगी, जबकि पुनहरा केंद्र पर करीब 30,22,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र के लिए पहली किस्त के रूप में 10-10 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। इन केंद्रों में बेबी टॉयलेट, बाल अनुकूल शौचालय, मल्टीपर्पज हॉल, किचन शेड, स्टोर रूम और विस्तृत बरामदा जैसी सुविधाएं होंगी। बच्चों के खेलने और गतिविधियों के लिए आकर्षक लॉन भी विकसित किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इन मॉडल केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण, प्री स्कूल शिक्षा, महिलाओं में जागरूकता और किशोरियों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। खरीफ सीजन से पहले किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग इस बार किसानों को धान की उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाली कई किस्मों के साथ उड़द का बीज भी 50% अनुदान पर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन बुकिंग और फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मनवीर सिंह ने बताया कि जिले के लिए 1,540 क्विंटल धान बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 552 क्विंटल धान बीज प्राप्त हो चुका है और बाकी बीज जल्द ही पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि उपलब्ध कराई जा रही धान की किस्में अधिक उत्पादन देने वाली, रोग प्रतिरोधी और बेहतर गुणवत्ता वाली हैं। विभाग ने किसानों से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की है, जिससे कि उन्हें योजना का लाभ आसानी से मिल सके। वीरंगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की साइटोपैथोलॉजी लैब ने चिकित्सा क्षेत्र में एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। पैथोलॉजी टीम ने मरीज के हाथ में बनी सामान्य दिखाई देने वाली गांठ की जांच के दौरान फाइलेरिया के जीवित माइक्रो फाइलेरिया की पहचान की है। जांच के दौरान FNC तकनीक के माध्यम से फाइलेरिया के परजीवी की पुष्टि की गई। गौरतलब है कि भारत सरकार ने वर्ष 2027 तक देश से फाइलेरिया समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साइटो लैब इंचार्ज डॉक्टर अंकिता शर्मा ने कहा,
1: जब मरीज को सिम्टम आना शुरू होते हैं तो उसके कॉमन जो लक्षण है वो है बुखार आना, दर्द होना, तो लसिका तंत्र को ब्लॉक कर देता है, उसको खराब कर देता है। तो पैरों में सूजन आना, जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं, तो हाथी पांव नामक

0: बीमारी हो सकती है। फाइलेरिया लाइलाज बीमारी नहीं है जब तक वो लेट ना हो।
1: एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का।
2: कौशाम्बी जिले में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला होमगार्ड कार्यालय का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 284 करोड़ की लागत यह भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। उन्होंने कहा कि
3: सन 1962 में होमगार्ड के विभाग का गठन हुआ। 1962 के बाद 1970 तक के और 1970 से अब तक के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक होमगार्ड विभाग के लिए है, मैं कह सकता हूँ ये कीर्तिमान है। वर्दी भत्ता हो चाहे दैनिक भत्ता हो, उसको माननीय मुख्यमंत्री दैनिक भत्ता एक किया, 42 दिन की ट्रेनिंग को 90 दिन की किया कि हमारा होमगार्ड का जवान दक्ष हो और शारीरिक क्षमता उसकी बढ़े। 1970 से पहले कोई होमगार्ड का जवान किसी दुर्घटना का शिकार होकर आता तो 3 लाख रुपए की बीमा राशि होती थी, लेकिन आज होमगार्ड का जवान ड्यूटी पे है, घर पे है, रास्ते में है, कहीं भी है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, साथ साथ हमने जो बैंकों से टाई अप किया है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 35 लाख रुपए बैंक देगी। तो 40 लाख रुपए जब उस परिवार को मिलते हैं तो हम लोगों को कुछ संतुष्टि होती है कि उस परिवार के लिए हम कुछ कर पाए।
2: कौशाम्बी जिले में जनगणना 2027 का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। जिला अधिकारी अमित पाल शर्मा ने बताया कि 7 मई से 21 मई तक स्वगणना हो रही है। इस अवधि में नागरिक स्वयं एवं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से जनगणना वेबसाइट SCS पर दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े विश्वसनीय होंगे जिससे शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय अभियान में अधिक से अधिक जनगणना ऐप का प्रयोग कर अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। कौशाम्बी जिले में जिला न्यायालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 30,000 से अधिक शमनी वादों का निस्तारण किया गया। कौशाम्बी जिले में समाधान अभियान के अंतर्गत कई ग्राम सभाओं में भूमि विवादों की सुनवाई कर अवैध कब्जे खाली कराए गए। अपर जिला अधिकारी राजस्व ने बताया कि टॉप 10 भूमि विवादों का मौके पर समाधान के अंतर्गत भीती, देहमाफी, कोरीपुर सहित दर्जनों गांव में अधिकारियों द्वारा संयुक्त टीम के साथ विवादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पुलिस और राजस्व टीम अवैध भूमि खाली कराई गई। कौशाम्बी जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत 192 कार्यों को पूर्ण किया गया। जल निगम एवं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि 275 पेयजल परियोजनाओं में 192 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 78 परियोजनाओं पर कार्य जारी है, 114 परियोजनाओं में टेस्टिंग और ट्रायल का कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल पहुंचाने की योजना कई गांवों में चल रही है। गर्मी के मौसम में 130 तालाबों के सापेक्ष 40 तालाबों में पानी भरा दिया गया, शेष तालाबों में कार्रवाई जारी है। कौशाम्बी जिले में नई बैरिक का निर्माण होने से बंदियों को जिला कारागार में सुविधा मिल रही है। जेल अधीक्षक अजितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला कारागार में क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध होने के कारण बंदियों को रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पत्राचार के माध्यम से ADG कारागार द्वारा जेल के अंदर बैरिक निर्माण की अनुमति दी गई, जो करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हो गई। बंदियों को गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा। जिला कारागार में बंदियों को शुद्ध भोजन और शीतल जल की सुविधा उपलब्ध है। कौशाम्बी जिले में लक्ष्य के सापेक्ष किसानों से गेहूं खरीद सरकारी संस्थानों द्वारा की गई। जिला विपणन अधिकारी सुशेखर चौबे ने बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष 75% किसानों से गेहूं खरीद की गई। किसानों को समय से समर्थन मूल्य का भुगतान बैंक खातों में DBT के माध्यम से किया जा रहा है। जिले में लगभग 2 दर्जन से अधिक क्रय केंद्र संचालित है, जहां पर किसानों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कौशाम्बी जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निरीक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि जिले में 1 दर्जन से अधिक थानों और चौकियों पर काफी समय से तैनात पुलिस कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर 1 दर्जन से अधिक जेल की सलाखों में भेजा गया। 2 दर्जन से अधिक पारिवारिक विवादों का सुलह समझौता के आधार पर पत्नी को राजी कराकर नया जीवन व्यतीत करने के लिए पहल की गई। गंभीर आपराधिक मामलों में पैरवी कर न्यायालय में 3 दर्जन से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई गई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आबोहवा। आज का विषय है समुद्र और पर्यावरण। आलेख वाचन इस विषय पर चंद्रशेखर सिंह का।
5: जिस तरह हम कहते हैं कि जमीन पे सारा हार्ड मास यहाँ पर मौजूद घास है, उसी तरह समुद्र के बारे में हम कह सकते हैं कि सभी मछलियाँ शैवाल हैं। शैवाल में वो सभी सूक्ष्म तैरते हुए जीवन हरी काई

जैसी परतें लंबी विषम रूपरेखा वाली आर्द्र वनस्पतियां होती हैं जो समुद्र के उथले भागों में पाई जाती हैं तथा जो आर्द्र व शुष्क सीमाओं के बीच आते हैं। यही वह मूल भोजन है जिसके कारण वेल के साथ साथ अन्य सभी छोटी बड़ी मछलियां जीवित रहती हैं। हम मनुष्यों ने भी ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनके द्वारा शैवालों से कुछ लाभ उठाया जा सकता है। समुद्री शैवाल से प्राप्त एक पदार्थ जिसे एल्गिन कहते हैं के कई व्यावसायिक उपयोग हैं। इसका उपयोग कपड़ा उद्योग, कागज, पैंट, दवाइयों, कीटनाशकों, सौंदर्य प्रसाधनों और यहाँ तक कि आइसक्रीम बनाने में भी होता है। आयोडीन तथा अन्य रसायनों का उत्पादन भी समुद्री शैवाल व समुद्री घास से होता है। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि अभी भी पानी में हजारों प्रकार के ऐसे शैवाल हैं जिनमें से उपयोगी पदार्थों की खोज की जानी बाकी है। जिस तरह जंगल जमीनी वनस्पतियों के अनुवांशिक भंडार हैं और विविध प्रकार की असीमित वनस्पतियों को जीवित रखने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार समुद्री वनस्पतियों का भी संरक्षण किया जाना चाहिए। तटीय पदार्थों के दोहन के विषय में बात करते हुए हमें अपनी सूची में तटों से दूर गहरे समुद्र में पाए जाने वाले तेल, प्रवाल तथा मोतियों को भी शामिल करना चाहिए और हमें नारियल को भी इस सूची में रखना चाहिए। नारियल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाने के अलावा हमें छत के लिए छप्पर, रस्सी, झाड़ू, लकड़ी इत्यादि भी देता है। नारियल मैंग्रोव की तरह हमारे तटों की तेज हवाओं और पानी से मजबूती के साथ रक्षा करता है। इसी तरह यदि हम ऊर्जा के संदर्भ में बात करें तो हम पाएंगे कि वर्तमान समय में बिजली के कुछ संभावित वैकल्पिक स्रोतों में समुद्र की ज्वारीय ऊर्जा को बार बार एक विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया है जिस पर शोध होना चाहिए। ज्वारीय क्रियाएं नियमित व शक्तिशाली होती है और यह विचार तर्कसंगत भी है कि बिजली उत्पादन के लिए इसका संचय किया जा सकता है। भारत के कई तटों के कुछ हिस्सों में ज्वार बहुत ऊंचाई तक जाता है। उत्तर पश्चिमी तट भावनगर गुजरात में ज्वार 35 फुट यानी लगभग 10 मीटर तक ऊपर उठता है। हमारे वैज्ञानिकों की चमत्कारी खोजों की तुलना में इन ज्वारीय क्रियाओं को पकड़ पाना और इन्हें अपने उपयोग में लाना अपेक्षाकृत आसान होता है। समुद्र मौसम को स्थिर रखता है तथा अत्यधिक सर्दी और गर्मी पड़ने से रोकता है। हमने यह पाया है कि हर प्राकृतिक वातावरण जैसे पहाड़, जंगल या नदियों में इंसान के भीतर आनंद व जोश प्रदान करने की क्षमता है। समुद्र और इसके तट भी इसमें कोई अपवाद नहीं है। जिस तरह ऊंचे पहाड़ बहुत लोगों पर एक विशेष जोशपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं, उसी तरह समुद्र भी लोगों को प्रभावित करते हैं। समुद्र की ओर तीव्र आकर्षण अक्सर तर्कहीन होता है। उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह बहुत से लोगों के जीवन व भाग्य को प्रभावित करता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। आज का विषय था भारतीय अस्मिता का। जी, आज कार्यक्रम आबोहवा में विषय समुद्र और पर्यावरण। आलेख वाचन इस विषय पर था चंद्रशेखर सिंह का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए परिचर्चा। आज का विषय जिले में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम और इसमें जन सहभागिता। प्रतिभागी हैं डॉक्टर संजीव यादव, डॉक्टर आर चंद्रवली, लक्ष्मीकांत गौड़। आपसे बातचीत कर रहे हैं परिचर्चा में ओपी सिंह।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य सबसे बड़ी नियामत है। समाज में जब हम धन की बात करते हैं तो जो व्यक्ति स्वस्थ है वो सबसे बड़ा धनी है, ऐसा भारतीय समाज कहता रहा है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत आदि समय से व्यक्ति के साथ रही, उनका समाज में एक भय और खौफ आज भी है। उनमें से टीवी एक ऐसी बीमारी है जो कालांतर से हमारे साथ चली आ रही है। बहुत सारे समय समय पर प्रयास हुए लेकिन आज भी टीवी किसी न किसी रूप में हमारे आपके बीच में है। टीवी उन्मूलन को लेकर के प्रधानमंत्री महोदय का एक

0: स्वप्न है, इसको निकालने के लिए समय समय पर काफ़ी मूल्यांकन भी होते रहे, लेकिन आज भी बहुत बड़े टास्क की और बहुत बड़े कार्यक्रम की ज़रूरत है। इसमें समाज की सहभागिता के बिना इसको हम समाज से बाहर नहीं कर सकते। तो आज हम एक चर्चा करेंगे जिसमें टीवी उन्मूलन का जो कार्यक्रम है मथुरा ज़िले में, उसकी वस्तु स्थिति क्या है, उसको हम किस तरह से कार्यान्वित कर रहे हैं, और उसमें जन सहभागिता और एनजीओ की जो भागीदारी है वो किस तरह महत्वपूर्ण है, ये पक्ष हम लेकर के चल रहे हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव यादव साहब, डॉक्टर आर चंद्रावली जी हैं, और श्री लक्ष्मीकांत गौर साहब हैं जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं और इस नेक काम में लगे हुए हैं। मथुरा के 3 जो ब्लॉक हैं उनमें उनका कार्यकाल चल रहा है। एक एनजीओ जो मंडोना रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन है उसके माध्यम से वो कार्य कर रहे हैं, तो इस पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से। जाए सबसे पहले संजीव यादव साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ज़िले में जो वस्तु स्थिति है टीवी की वो क्या है, क्योंकि कई बार अब चर्चा तो नहीं होती लेकिन टीवी अभी समाज में है और जो लोग इसका शिकार हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित भी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा एक वस्तु स्थिति को बताने की कोशिश करें कि इस समय क्या स्थिति चल रही है इसमें।
1: देखिए, टीवी उन्मूलन कार्यक्रम में जो सबसे मुख्य चीज़ है वो टीवी का नोटिफिकेशन है, जिसको हम कहते हैं कि नया मरीज हमारा डायग्नोस होकर के हमारे सिस्टम में रजिस्टर हुआ, जिसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट में रखेंगे। तो ये एक अच्छा प्रयास हमारे यहाँ मथुरा में हो रहा है कि हमारा नोटिफिकेशन टारगेट मतलब अचीव भी हो जाएगा और शायद उसके आगे भी हम जा पाएँ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बैकबोन है टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम की।
0: कि पता तो लग जाए कि टीवी का मरीज कौन है
1: जी
0: उसमें। इसमें तो समाज में अगर हम जानना चाहें कि समय समय पर मूल्यांकन भी होते रहे, आपसे भी कई बार चर्चा होती रहती है कि इस मूल्यांकन में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी बहुत कार्य करने की ज़रूरत है, जहां बहुत अभी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, जैसे आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, समाज में लोग बाहर निकल के नहीं आते, झिझक है अभी लोगों में, बताना नहीं चाहते, उस रोग के साथ ही समाज में रहना चाहते हैं, पड़े रहना चाहते हैं, जबकि आज इलाज है, साधन है, सब कुछ है, लेकिन लोगों की झिझक नहीं टूट रही है इसमें।
1: देखिए, कंडीशंस पहले से तो काफ़ी चेंज हुई हैं।
0: जी
1: जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो अगर उनको 1 हफ्ते की 10 दिन की भी खांसी हो रही है तो वो अपना जाकर के चेकअप करा रहे हैं, लेकिन जो आपके दूरस्थ इलाके हैं या जहाँ स्लम एरिया है या जहाँ अनएजुकेटेड मतलब लोग रह रहे हैं और जहाँ एक ही मतलब ओवर क्राउडिंग है, तो वहाँ इस बीमारी के फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो साधारण तौर पर इस खांसी या बुखार जो उनको आता है वो समझते रहते हैं कि ये जैसे मौसमी होता है वैसे ही उन्होंने दवा ले ली, कोई सीरप ले लिया, उससे वो खांसी दब गई, लेकिन बीमारी बनी रहती है। और अगर एक बार प्रॉपर डायग्नोसिस होकर मरीज टीवी का ट्रीटमेंट पर नहीं आता है तो अपने जैसे 10 से 12 मरीज साल भर में और पैदा कर देता है।
0: जी, और ये सबसे बड़ी समस्या टीवी के साथ है कि वो जो जहाँ है मरीज अगर वो आइडेंटिफाई नहीं है तो अपने आसपास उस रोग को फैलाने का कार्य करता रहता
1: जी
0: है
1: बिल्कुल,
0: इसमें।
1: वो अपने आसपास भी रोग को फैलाता रहेगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टीवी के मरीज का नोटिफिकेशन। अगर सारे मरीज निकल करके बाहर आ जाएं, डायग्नोज हो जाएं, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, और जो भी पब्लिक हेल्थ एक्शन उनके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं सरकार की तरफ से वो उनको दे दिए जाएँ, तो बीमारी के एलिमिनेशन के चांसेस, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है टीवी मुक्त भारत बनाने का, तो हम उसके काफ़ी नज़दीक पहुँच सकेंगे।
0: जी, तो आपको क्या लगता है कि सरकार तो और सिस्टम तो बहुत पहले से प्रयासरत है, उसमें हम कार्यक्रम भी लेके आ रहे हैं, कार्यान्वयन भी हो रहा है, लेकिन अभी चूंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए, तो वहाँ आपको लगता है कि कुछ स्वयंसेवी संगठनों की, एनजीओ की, कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं की जो स्वेच्छा से और सहयोग समाज में जा कर के उन रूट लेवल्स पर काम कर सकें जहाँ वो वास्तव में काम किए जाने की ज़रूरत है, तो एनजीओ की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है इसमें।
1: देखिए, जन सहभागिता और एनजीओ की भूमिका टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं उनके द्वारा को एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसको प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान के नाम से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था।
0: जी,
1: तो इस प्रोग्राम में राष्ट्रपति महोदय द्वारा यही अपील की गई थी कि जो भी एनजीओज हैं या कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो टीवी पेशेंट को एडॉप्ट करें। और एडॉप्शन का मतलब इसमें ये नहीं है जैसे कि बच्चे को गोद लेते हैं, एडॉप्शन का मतलब इसमें ये है कि उनके द्वारा हर 6 रोगी को जिसको वो एडॉप्ट करेंगे एक फूड बास्केट प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें कि हाई प्रोटीन डाइट होगी और उसके अलावा वो समय समय पर मरीज का फॉलोअप लेते रहें कि वो रेगुलर दवा खा रहा है या नहीं खा रहा है।

0: एक टच भी बनता है मरीज के साथ उनका, और जन सहभागिता के द्वारा जो है आपने आसपास भी, जैसे कोई अगर सिम्टोमेटिक आदमी है तो उसको हम जांच कराने के लिए प्रेरित करें, तो ये जन सहभागिता एनजीओ का बहुत बड़ा रोल है।
1: जी, लक्ष्मीकांत जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा कि भूमिका में डॉक्टर साहब ने काफ़ी कुछ चीज़ें रख दी हैं और इस बात को प्रासंगिक मान लिया है कि बिना जन सहयोग के, बिना एनजीओ की भूमिका के, बिना लोगों को संगठित किए हम इस टीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते। तो आप तो चूँकि एक ऐसे फील्ड में रहे जहाँ चीज़ों को न्याय की दृष्टि से देखते रहे, उसको न्याय प्रोवाइड करते रहे, तो एक व्यक्ति को स्वास्थ्य जैसी चीज हम प्रोवाइड करवा पाए ये सबसे बड़ा न्याय हो सकता है उसके लिए।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: आप व्यावहारिक तौर पर देख रहे हैं, मथुरा में काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब की बात को आप किस तरह से रखेंगे, किस तरह से प्रासंगिकता मानते हैं इसकी?
2: मैं कह रहा हूँ जो डॉक्टर साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। उस दृष्टि से
1: जी
2: उन्होंने एक शब्द उन्होंने कहा कि समाज से बाहर लोग निकल कर नहीं आ रहे हैं, और आपने ये भी कहा कि अगर जो सभी लोग बाहर निकल के आ जाएं तो टीबी को कंट्रोल करने के अंदर बेहद मदद मिलेगी।
1: जी,
2: तो जब हम बात कर रहे हैं जन भागीदारी की, तो मुझे लगता है कि जन भागीदारी का सबसे पहला पहलू तो यही है कि वो समाज में जागरूकता फैलाएं और इस बात को समाज में लेकर के जाएं, जिन लोगों के पास में रोगी होने के लक्षण हैं वो उन तक पहुँचें, उनसे कहें कि आपके ये लक्षण हैं, आप जाएं जांच कराएं, प्रोग्राम के साथ में जुड़ें। और एक बार ये प्रोग्राम में जुड़ने के बाद में, मैं अभी हमारे पास में जो संसाधन है बहुत हैं, काम करने वाले भी बहुत हैं, तो एक बार ही उससे जुड़ जाएं प्रोग्राम के साथ में, तो उनके इस बीमारी से ठीक होने के चांसेस समझिए लगभग 100% है। एक बार प्रोग्राम से जुड़ जाएं,
1: सिस्टम में अगर आ जाते हैं तो क्योर 100% है,
2: क्योंकि दवाई लेते रहें, पोषण लेते रहें, ठीक हो जाएंगे। इसका दूसरा एक जो पक्ष जो मुझे लगता है वो ये है कि लोग बाग समाज के अंदर सामने आए, इसी जो प्रधानमंत्री उन्मूलन जो टीबी उन्मूलन का जो प्रोग्राम है इसके अंदर एक निक्षय मित्र की बात की गई है। तो निक्षय मित्र के लिए एक अलग से पोर्टल भी बना हुआ है जिससे आम जो लोग हैं जो इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, टीबी के मरीजों की मदद करना चाहते हैं, वो निक्षय पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो टीबी के मरीज है वो भी वहाँ रजिस्टर्ड है, तो दोनों का जुड़ाव हो सकता है और वो जो प्रोग्राम है उसके अंदर वो शामिल होकर अनेक प्रकार से उनकी सहायता कर सकते हैं, जिसमें कि आप समझ लीजिए पोषण भी हो गया और समझिए
1: दवाई भी हो गई।
2: दवाई तो डॉक्टर्स जो टीबी वाला जो प्रोग्राम है वो उसका ध्यान रखते ही हैं, उसके अलावा और भी कई चीजें रहती हैं जो उनको हाथ पकड़ने का जरूरत है, वो भी सबको काम कर सकते हैं। जो तीसरा जो पक्ष है जो मुझे नजर आता है जिस पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है सोचने की, वो ये है पड़ोसी होने का धर्म, जो मुझे लगता है कि ना तो कोई एनजीओ कर सकती है ना कोई सरकार कर सकती है। हमारे गांव हैं, मोहल्ले हैं, गलियां हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं, जो पहले से परंपराएं चली जा रही हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, वो इस दिशा में भी मुड़नी चाहिए,
1: कामगर हो सकती है,
2: वो बहुत कामगर हो सकती है, क्योंकि जो पड़ोसी आपकी मदद कर सकता है, डॉक्टर को आने में लगेगा समय, एनजीओ को आने में लगेगा समय, लेकिन अगर जो आपके बगल में एक मरीज है जो गरीब है, कम पढ़ा लिखा है, उसका हाथ थामिए, अगर जो उसको जरूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल लेकर जाइए, अगर जो उसे खान पान की कमी है तो उसके खान पान देखिए, अनेक प्रकार से
1: जी
2: जो उनके साथ में खड़े होकर के उनके रोजमर्रा की जिंदगी में उनको रोज मदद कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा एक सुझाव और भी इसके साथ में, वो ये है कि जो निक्षय मित्र का जो सरकार का प्रोग्राम है ये बेहद ही अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इसको लिमिट ना किया जाए, इसको थोड़ा सा और बृहद बनाया जाए, जिससे कि ये जो निक्षय मित्र सही मायने में मित्र हो सके और वन टू वन समाज में जाके उनसे बात कर सके। देखिए ये जो मर्ज है ना ये दूसरे मर्जों से भिन्न है, ये मर्ज ऐसा है जिसमें जो कि 6 महीने तक चलता है, एक दिन नहीं चलता,
1: बड़े पेशेंस की जरूरत,
2: बहुत पेशेंस की जरूरत है, इसको 6 महीने तक चलता है प्रोग्राम, तो इसको 6 महीने तक उस व्यक्ति को सब चीज की जरूरत है और उसको अंदर उसके साथ में कोई खड़ा हुआ है जो वो मानसिक जो तनाव से जो गुजर रहा है, अगर जो पड़ोसी उसको लगता है उसके साथ में खड़ा हुआ है, ये भी उसकी बहुत बड़ी मदद है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ये सब पक्ष हैं जो कि मुझे लगता है जन भागीदारी के अंदर बहुत जरूरी है, लोगों को सामने आना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए।
1: मतलब आप ये कह रहे हैं कि चीजें हमारे समाज में है, पहले से है, उनको दोबारा से देखने की जरूरत है।

0: इसको दोबारा से रोपित करने की जरूरत है और फिर से स्थापित करने की जरूरत है।
1: एक और बात है, क्या आता है कि 6 महीने में गरीब आदमी है, जैसे लेबर का फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी जगह काम कर रहा है, 6 महीने तक अगर जो नौकरी से गायब रहता है तो नौकरी से गया, तो यहाँ पर भी समाज की भूमिका है कि जो व्यक्ति ऐसा है जिसकी किसी वजह से रोजगार छूट गया है वो साथ में आए, उसकी मदद करें, दोबारा से उसको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मदद करें, इस प्रकार से उस समाज में वापस स्थापित भी हो पाएगा।
0: जी जी जी, मतलब जी। उसको न सिर्फ ठीक करना है बल्कि उसे समाज में पुनर्स्थापित करना है, उसका आर्थिक पक्ष भी देखना है और उसको सहयोग देखना है। आर चंद्रावली जी, आप से मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आप व्यावहारिक तौर पर जुड़ी हुई हैं, इस काम को देख रही हैं, उसमें डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि समाज की जो जन सहभागिता तो है ही, लेकिन वो पक्ष

0: करें, दोबारा से उसको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मदद करें, इस प्रकार से उस समाज में वापस स्थापित भी हो पाएगा।
1: जी जी जी मतलब
0: जी
1: उसको न सिर्फ ठीक करना है बल्कि उसे समाज में पुनर्स्थापित करना है, उसका आर्थिक पक्ष
0: जी
1: भी देखना है और उसको सहयोग देखना है। आर चंद्रावली जी, आप से मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आप व्यावहारिक तौर पर जुड़ी हुई हैं, इस काम को देख रही हैं उसमें। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि समाज की जो जन सहभागिता तो है ही, लेकिन वो पक्ष जो भावनात्मक है, जो आर्थिक है, जो सामाजिक है, एक संपूर्ण कार्यक्रम ये बन करके जब तक नहीं होगा तब तक शायद हम सफलता की बात नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो जिन चीज़ों को दोबारा से जोड़ना है, लोगों को समझाना है, क्योंकि आज आर्थिक पक्ष बड़ा है, हर व्यक्ति अपने काम में, अपने एजेंडा में, अपने आसपास के दायरे में इतना वो है कि उसको 6 महीने तक उससे जोड़ के रखना, लोगों को सहयोग की बात करना और उस व्यक्ति को भी ये ढाढ़स दिखाना कि 6 महीने बाद तम ठीक हो जाओगे, समाज के लिए उपयोगी होगे, तो आप आइए जुड़िए, सब चीज़ें हैं। तो एक बड़ा पैकेज है, बड़ा कार्यक्रम है, इसमें आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक सारे पक्ष जुड़े हुए हैं, आप इसको देख रही हैं, तो कैसे आपको लगता है कि व्यक्तियों को किस तरह मोटिवेट करने की आवश्यकता है यहाँ पर?
2: मैं एनजीओ की तरफ से बताती हूँ कि जो एनजीओ का भूमिका क्या है इसमें।
1: जी,
2: जो एनजीओ है, क्योंकि इतना बड़ा व्यापक एक प्रोग्राम सरकार ने चलाई है, उनको हर तरह की मदद चाहिए, और सरकार के जो प्रोग्राम है उसको एनजीओ अगर बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो भी एनजीओ निक्षय मित्र बन के रजिस्टर करे हैं उनको ये है कि उनको जो टीबी, जो लोकल टीबी सेंटर से जुड़ना चाहिए, उनसे समय समय पे जो भी मदद की ज़रूरत है उनको उस दिशा में उनको काम करना चाहिए, और ये सबसे बढ़िया रिजल्ट तभी आएगा जब ये कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी एनजीओस की और गवर्नमेंट एजेंसी की
1: और लोगों की।
2: हाँ जी,
1: जी
2: लोगों की
1: जी, जी, जी,
2: और जो एनजीओस का जो कहीं बिंदुओं पे टीबी में, एक तो सबसे बड़ा जो सरकार ने जो प्रोग्राम निकाली है पोषण का, पोषण वितरण जो हमारा एनजीओ है मंडोना रूरल फाउंडेशन कर रही है, उसमें भी हमारी सारा जो कोऑर्डिनेशन है लोकल टीबी सेंटर के साथ है कि ऐसे कौन से मरीज है जो हमारे निक्षय आईडी वाले, उनको हमने कोऑर्डिनेट करना, जिसको पोषण देना है। ये सब एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करेंगे तो कभी भी ये प्रोग्राम का हमारा कोई मदद इम्पोर्टेंट नहीं है।
1: जी जी, अच्छा इसमें थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जैसे सरकार कोई कार्यक्रम लेके जाती है तो लोगों को लगता है कि अरे सरकार का ये काम है, कोई एनजीओ आती है उसको थीम को लेकर के, किसी कार्य को लेकर के, तो लोगों को लगता है कि इनका भी कोई हित होगा। तो लोगों को ये समझाना कि हम अपने हित और सरकार के काम के लिए नहीं आए, इसमें आपका हित भी समाहित है। दूसरे टीवी जैसे कार्यक्रम के साथ, जैसे टीवी हुआ, कुष्ठ हुआ, कुछ लोग ऐसे थे जिनके साथ एक बड़ी झिझक थी, लोग जैसे किसी को अगर टीवी है तो वो एक छुआछूत जैसी समाज में वो चली जाती है, तो आज उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी टीवी हो जाने का मतलब समाज से दूर हो जाने का एक पक्ष भी है। अब उसमें लोगों को जोड़ना, लोगों को सहयोग करना, जैसा डॉक्टर गौड़ ने बात कही कि भाई लोगों को जोड़ना है, हाथ पकड़ना है, पड़ोसी सबसे पहले मदद के लिए आए तब काम बनेगा इसमें, तो वो जो कई सारी चीज़ें हैं जो भावनात्मक भी हैं और जिनको जो झिझक पैदा कर रही हैं समाज में, एक जो है थोड़ा सा अलगाव पैदा कर रही हैं, तो वहाँ बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। तो आपको क्या लगता है, जब व्यावहारिक तौर पर यहाँ कर रही हैं ब्रज जैसी स्थिति में, तो क्या चीज़ें बदली हैं या अभी भी उसी रूप में?
2: काफ़ी बदली है
1: जी,
2: क्योंकि हमारे जो पेशेंट के साथ जो है उनको कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी
1: जी,
2: है
1: जी, जी।
2: जो भी हम कार्य कर रहे हैं ये हमारा दायित्व है, ये हम उनको समझाते हैं, ये हम जैसे जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको मनोबल देना, बार बार उन्हें टेलीफोन पे हर एक पेशेंट जो हमारे से पोषण देता है उससे पूछा जाता है, आपको जो पोषण मिल रहा है उसमें क्या आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, और उनकी तबीयत के बारे में पूछा जाता है, उनकी वजन के बारे में पूछा जाता है, उनसे कहा जाता है कि आपका जो वजन बढ़ना चाहिए ये एक इंडिकेशन है कि आपका बीमारी ठीक हो रही है, ये जो उनकी जो मनोबल बनाए रखना 6 महीने तक, ये एनजीओ इसमें बहुत कुछ
1: मदद कर सकता है इसमें।
2: और जो ये एक ऐसी बीमारी है

0: लोग उसे भागना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, इसकी सेंसिटाइजेशन हम लगातार करते हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ता है।
1: जैसा डॉक्टर गौर साहब ने कहा कि भाई इसमें लंबे समय तक पेशेंस की आवश्यकता है। डॉक्टर यादव, इसमें जैसे पोषण को प्रधानमंत्री कार्यक्रम के तहत लेके आए, पहले दवा थी, एक कार्यक्रम था 6 महीने तक चलेगा, डॉट्स के माध्यम से उसको हम लेकर के समाज में जा रहे थे, लेकिन इसमें पोषण को भी जोड़ा है, क्योंकि ये लंबी बीमारी और क्षय की बीमारी होने के कारण यहाँ पोषण भी बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम में समायोजन किए जाते हैं समय समय पर, इनकी जो व्यावहारिकता है, इनकी जो आवश्यकता है, उनको जो है समय समय पर मूल्यांकन के माध्यम से इसमें डाला जाता है, तो ये पोषण वाला जो वो है, ये इसके उन्मूलन में काफ़ी सिद्ध होगा, कारगर?
2: जी, ये बिल्कुल इसके टीबी के उन्मूलन में बिल्कुल कारगर होगा, क्योंकि रिसर्च के द्वारा ये देखा गया है कि अगर प्रोटीन रिच डाइट अगर पेशेंट लेता है दवा के साथ, तो उसकी रिकवरी भी ज़्यादा होती है और डेथ रेट काफ़ी कम हो जाती है। ये कई स्टडीज के द्वारा जो है देखा गया है,
1: इसलिए
2: इस प्रोग्राम में इसको रखा गया है कि पोषण सामग्री का वितरण हो जो कि मेनली प्रोटीन रिच होती है।
1: जी जी, तो गौर साहब, इसमें अब जैसे मैं जानना चाहूँगा कि इसमें आपने जिक्र किया था कि इस जो पोषण वाला जो पक्ष जोड़ा गया है इसमें, तो अब जैसे हर परिस्थिति में लोकल चीज़ें अलग होती हैं, अब ब्रज का जैसे खान पान अलग है, यहाँ की कल्चर है, यहाँ की एक जीवन शैली है, तो वहाँ उन्हीं जीवन शैली में उसको पोषण बनाया जा सकता है, अलग से कुछ अलग से भी कुछ खाने पीने चीजें डाली जा रही
3: है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि हमारे देश के अंदर अलग अलग इलाकों में लोगों के खाने की आदतें अलग अलग है। अगर जो आप इस वाले वेस्टर्न यूपी में देख रहे हैं तो आदतें अलग हैं, अगर जो आप ईस्टर्न यूपी में चले जाएं तो अलग है। तो जब हमने इस बारे में सोचना शुरू किया, तो हमने सोचना ये शुरू किया, भाई पूछते लें कि वो खाते क्या। अब आपको एक मजे की बात बताएं, जब शुरू में हमने पूछने लगे वहां पे, हम बलदेव में थे, तो पूछने लगे भाई बताइए क्या खाना पसंद करते हैं, कह रहे जी हमारे तो कचौड़ी चलती है। तो भाई कचौड़ी तो कोई समाधान नहीं है, तो आप खाइए, स्वाद से खाइए। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि लोगों की फूड हैबिट्स क्या है। और हमें ये लगता है कि इस इलाके में जो खाने वाले लोग हैं, ज़्यादातर रोटी खाने वाले लोग हैं, दाल खाने वाले लोग हैं। तो रोटी है तो जो हमारे पास जो हम दे रहे हैं, रोटी हम मान के चलते हैं कि कहीं से उसका इंतजाम है, तो हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रोटीन देना का। तो इसमें जो पैकेट में 4-5 दालें रहती हैं, जिसमें सोया दाल भी उसमें इंक्लूडेड है। एक और मजेदार बात बताएं, यहाँ के इस इलाके में सोया दाल कम खाया जाता है, सोयाबीन कम खाते हैं, तो इसलिए बार बार ये प्रश्न आते हैं कि इसको खाएं कैसे,
1: ऐसे ही
3: तो उसमें अब ये हमारे पास में डॉक्टर चंद्रवेली हैं, तो उनका एक काम ये भी रहता है कि ये बताना
1: कि किस कैसे खाना है,
3: कैसे खाना है इसको, भाई इसको बनाए। उसके लिए हमने एक पुस्तिका भी बनाई, तो पुस्तिका में क्योंकि जो मरीज रहता है ये, इसका थोड़े दिनों में टेस्ट भी चला जाता है, तो खाने की जरूरत भी है, खाने की इच्छा भी नहीं है और टेस्ट भी नहीं है। तो जब उनसे ये फीडबैक मिला, तो हमने कहा भाई चना है तो कितनी बार एक तरह से खा सकते हो आप, तो इसलिए अलग 7 तरीके से आप किस तरह से सेम चने को खा सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग से पुस्तिका निकाले
1: पूरा,
3: हाँ, जिसमें डॉक्टर हमारे चंद्रवेली उन्होंने बहुत मदद
1: की। मैं उन्हीं के पास आ रहा हूँ कि इसमें जैसे फूड हैबिट्स की बात डॉक्टर साहब से हो रही है, गौर साहब से वो हुई, तो अब इसमें लोकल बहुत हो जाता है। अब इसमें ब्रज को मथुरा की बात अगर मैं करूँ थोड़ा सा, या जान लें कि उसमें मथुरा के भी 3 पार्ट अगर हम कर लेते हैं, एक गोवर्धन और ये वाला जो एरिया है ब्रज का, ये वाला पक्ष ये राजस्थान से प्रभावित है, यहाँ दूध दलिया और ज्वार बाजरे का ज़्यादा वो हो जाता है। जब हम जमुना जी के इधर पार चले जाते हैं जो अलीगढ़ की तरफ है, तो यहाँ मिस्सी रोटी मठा और गुड़ का जो प्रयोग है वो ज़्यादा हो जाता है। बलदेव की जैसे आपने बात की, वो आगरा की तरफ चला जाता है, तो उसका थोड़ा फर्क और उधर उसका खान पान अलग है। तो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में ही खान पान का इतना बदल जाता है, जब हम पूरे देश में कोई कार्यक्रम लेके आते हैं तो वहाँ तो बहुत विविधता होती है। तो चंद्रवली जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस चीज़ को लोगों को किस तरह से आप समझा रहे हैं कि भाई लेना भी है, इस तरह से लेना है और अपनी परिस्थितियों में लेना है, तो ये चीज़ बड़ी मतलब आवश्यक हो जाती है लोगों को जानने के लिए कि आप अपनी फूड हैबिट के साथ इस चीज़ को इस तरह से लें।
0: अक्सर जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको हम यही कहा जाता है कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तो जितने भी हम मान करके चलते हैं जो गरीब आदमी नॉन वेजिटेरियन खाना उनको कम नसीब है, तो

0: हमारा ये होता है कि प्रोटीन की मात्रा मैक्सिमम दालों में होती है, जो हम लोग जो खाना इंडियन स्टाइल खाना खाते हैं उसमें दालों में होती है। तो हम और दालें महंगी भी होती है, तो पोषण में जो हम पोषण सामग्री जो बांटते हैं तो अक्सर फोकस दालों में ही होती है, और ताकि मैक्सिमम उनको प्रोटीन मिले। गेहूं और चावल तो अक्सर उनके पास होता
1: लोगों के
0: ही
1: पास
0: है,
1: रहता
0: तो
1: है।
0: जो एडेड चीज़ें जो उन्हें चाहिए ये, और एक प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेट, जिस मसलन से हम कोई प्रोटीन का पाउडर एक देते हैं, जिस वजह से हम उनको बोलते हैं इसका सेवन करो तो दूध में डाल के लेना है, तो इसमें दूध का प्रोटीन भी चला जाता है और वो जो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है
1: एक्स्ट्रा
0: वो
1: प्रोटीन है
0: एक्स्ट्रा भी
1: वो
0: चला
1: भी
0: जाता
1: पहुंच
0: है।
1: जाती है। तो डॉक्टर साहब, अब इसमें मैं जानना चाहूँगा कि इस पे बातें तो बहुत की जा सकती हैं, लेकिन संक्षेप में और सार तौर पे अगर क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आप अपना कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, उसमें एनजीओ की भूमिका भी है, एनजीओ साथ में आ भी रहे हैं, लेकिन जन सहभागीदारी को और इफेक्टिव और इंटेंसिव करने के लिए, उन तक पहुंच करने के लिए और उनका विश्वास अपने आप में, अपने कार्यक्रम में जागृत करने के लिए, अभी बहुत कुछ समाज के लोगों से जो एक अपील के तौर पे कहना चाहेंगे, क्योंकि जरूरत तो सबकी है, जो प्रभावित है वो तो है ही, लेकिन जो नहीं भी है, जो गौर साहब ने बड़ी मार्मिक बात कही कि जब तक पड़ोसी उसमें शामिल नहीं होगा, उसकी बाह नहीं पकड़ेगा, कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। तो एक ज़रूरत तो हमेशा बनी रहेगी, चाहे टीवी हो चाहे कोई अन्य कार्यक्रम हो, सफल बनाने के लिए समाज की तो ज़रूरत हमेशा रही है। तो अपील के तौर पे क्या कहना चाहेंगे कि लोग आगे आए थोड़ा सा?
2: जी बिल्कुल, लोगों को आगे आना चाहिए। हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय जो गवर्नर महोदया हैं, सबके द्वारा जो है ये अपील की जाती है कि एनजीओस वगैरह को इसमें आगे आकर के और जन सहभागिता करनी चाहिए। इसमें कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर जाकर अपना निश्चय मित्र के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और रजिस्ट्रेशन जब उसका एक बार हो जाता है तो हमारे विभाग से संपर्क करके जितने मरीज और जहाँ जिस क्षेत्र के मरीज को वो एडॉप्ट करना चाहता है कर सकता है, उनका फॉलोअप कर सकता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम की तरफ।
1: जी, गौर साहब क्या कहेंगे अंत में, जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और टीवी उन्मूलन के इस नेक कार्य के साथ, जो देश का कार्यक्रम है, बल्कि
0: जी जी
1: देश के
0: जी
1: साथ अगर
0: देश
1: हम
0: का भी
1: समाज
0: कार्यक्रम।
1: और विश्व के
0: जी
1: कार्यक्रम,
0: जी
1: क्योंकि भारतीय संस्कृति तो हर चीज़ को वसुधैव कुटुंबकम के साथ ले
0: जी जी
1: जाती है,
0: जी
1: तो ये सिर्फ समाज
0: जी
1: का, देश का नहीं बल्कि पूरे उसका कार्यक्रम
0: जी
1: है, लोगों का कार्यक्रम है, तो कैसे आप कहेंगे इसको?
3: एक तो बात ये कि जो ये प्रोग्राम है ये विश्व का प्रोग्राम भी
1: जी
3: है,
1: जी जी
3: जो WHO ने जो इसको गाइडलाइंस बोला कि 2030 तक हम इसको ख़त्म कर देंगे,
1: जी जी
3: लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम इसको 2025 तक ख़त्म कर देंगे।
1: खत्म
3: तो आप
1: करेंगे।
3: समझ लीजिए कितना बड़ा चैलेंज है, और
1: जी।
3: इस चैलेंज को बिना लोगों की मदद किए नहीं हो सकता। तो वो अभी कोई ऐसे बाई स्टैंडर नहीं रह सकते कि भाई मैं सड़क पे खड़ा हुआ हूँ, वो मरीज है तो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। उनको आगे आना चाहिए, प्रोएक्टिवली आना चाहिए, इसमें अपनी भूमिका अदा करना चाहिए। और ये कोई बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन नहीं है दुनिया के लिए कि पूरी दुनिया के लगभग 25% मरीज हिंदुस्तान में रहते हैं, ये क्या बात हुई?
1: सही बात
3: तो
1: है,
3: ये एक हमारे गौरव का विषय भी
1: गौरव।
3: है,
1: जी
3: तो
1: जी
3: उसका भी
1: जी
3: विषय है, हमें सामने आना चाहिए
1: जी
3: और
1: जी
3: कहना चाहिए कि ये दाग हम अपने पास नहीं रहने
1: नहीं
3: देंगे,
1: रहने देंगे,
3: आगे बढ़ेंगे, इसको निपटा
1: ये
3: खत्म
1: इनके इन
3: करेंगे।
1: प्रकारे हम समाज से इसको
3: जी जी
1: निकालेंगे।
3: जी जी
1: चंद्रावली जी क्या कहना चाहेंगे कि लोग जुड़े इसके नेक काम के साथ अपना?
0: NGOs के बारे में ये है कि जितने भी निक्षय मित्र जो रजिस्टर हुए हैं उनका भी कोई मीटिंग होना चाहिए
1: जी जी
0: कि वो कौन से बिंदुओं में काम कर सकते हैं, कि
1: अपना
0: सबके,
1: फीडबैक दे
0: हाँ
1: सकते
0: जी,
1: हैं, अपने
0: फीडबैक
1: अपने
0: दे सकते हैं,
1: लोगों से जो
0: कोई
1: अनुभव आ रहे हैं।
0: इसमें ट्रेनिंग में मदद कर सकते हैं। NGOs ये इसके बारे में, बीमारी के बारे में इन्फॉर्मेशन फैलाने में
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: मदद कर
1: जी
0: सकते हैं, और कुछ डाटा जनरेट करने के लिए भी और उसकी एनालिसिस करने में भी मदद कर सकते हैं, जो हमें आगे प्रोग्राम्स में डिसाइड करने के लिए काम आएगा।
1: निश्चित तौर
0: हाँ
1: पर
0: जी,
1: श्रोताओं, ये जो चर्चा थी हम टीबी उन्मूलन के संदर्भ में, मथुरा जिले में जो वस्तु स्थिति है उस पर, जो कार्यक्रम चल रहे हैं उस पर, और जो एनजीओ की और समाज के जो ऐसे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो स्वयं तो प्रभावित नहीं है लेकिन समाज की उस पीड़ा को देख करके द्रवित हैं, तो किसी न किसी रूप में हमारे और आपके बीच में आ रहे हैं। तो ये हमारा और आपका भी उत्तरदायित्व बन जाता है कि इस राष्ट्र के कार्यक्रम को, समाज के कार्यक्रम को, बल्कि उस जनमानस के और विश्व के कार्यक्रम को जिसमें लक्ष्य 2030 रखा गया है, लेकिन देश का जो लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे सब

0: में एक्टिव रहते हैं और हर चीज़ को छोटा कर कर उसको रख देते हैं, अगर हम इस नेक काम में अपना सहयोग दे सकते हैं तो बहुत बड़ी भूमिका होगी। डॉक्टर संजीव यादव, आप गौर साहब, आप हमारे साथ आए, मैडम चंद्रावली जी, आप सब लोग आए, अपने अनुभव और अपने जो विचार हैं अपनी वाणी के माध्यम से श्रोताओं तक पहुँचाए, इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा। आज का विषय था जिले में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम और जन सहभागिता। इसमें प्रतिभागी थे डॉक्टर संजीव यादव, डॉक्टर आर चंद्रावली, लक्ष्मीकांत गौड़। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे ओपी सिंह। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। किसान भाइयों, आज मंगलवार शाम 6:15 से 30 मिनट अवधि के हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है नए बाग लगाते समय सावधानी एवं तैयारी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, घर परिवार की आय बढ़ाने के लिए यदि हम बागवानी वाली फसलों का उत्पादन करते हैं तो कम जमीन में अधिक उत्पादन एवं मुनाफा कमा सकते हैं। ज्येष्ठ मास नए बागों की स्थापना के लिए उचित समय है। बाग लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां एवं खेतों की तैयारी कैसे करें, जैसे कौन कौन से पौधे एवं कौन सी किस्में लगाएं एवं बागों का लेआउट कैसा हो, इन विषयों पर जानकारी देने हेतु हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। हमारे टेलीफोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। फोन नंबर रहेगा 25301352530135। फोन करके या मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर रहेगा 9412225575। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर उदय भान सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। कार्यक्रम का समय संध्या 6:15 से 6:45 के बीच। सूचना समाप्त हुई। लीजिए सुनिए कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक

0: बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़, फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
1: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
1: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
1: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं, सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
1: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता है
1: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
1: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
1: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
1: जी,
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
1: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
1: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है
0: जी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।

0: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
1: क्यों?
0: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
1: अच्छा, तुमने खुद देखे?
0: हाँ।
1: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
0: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
1: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ,
0: आ चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे, इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन, और तेज दौड़ो। देखो, मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे, तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन, मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या, विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन, मोहन, मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं।
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई। हाँ। और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
2: हाँ।
3: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी,
3: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
2: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?

0: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
0: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है
0: भाई? तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
0: भाई, सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
0: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
2: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
1: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक
3: में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
7: इन्हें हमारा सलाम।
6: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
8: साथियों नमस्कार।
6: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
8: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
6: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
8: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
6: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक

0: पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
1: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
0: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
0: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
1: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तान

0: गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
1: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
0: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
1: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
0: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
1: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
0: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक अल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में

0: परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं,
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनिंकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक का अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये गीत फिल्म सुहाग से। आवाज़ें इस गीत में शशि कपूर और आशा भोसले की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे शशि कपूर और आशा भोसले को फिल्म सुहाग में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और आइए सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी को। जी हाँ, मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आवाज़ दे रहे हैं इस गीत में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह। फिल्म परवरिश से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह को फिल्म परवरिश में। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और ये सुनते हैं फिल्म अमर अकबर एंथोनी से ये अगला गीत। आवाज इस गीत में मोहम्मद रफी की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

तेरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म अमर अकबर एंथोनी से ये कव्वाली, स्वर दे रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथी। और लीजिए सुनिए फिल्म संगीत में ये गीत फिल्म राज से। आवाज़ दे रही है गीत को अलका याग्निक, समीर के गीत को संगीत दिया नदीम श्रवण ने।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक को फिल्म राज में। गीत समीर का था, संगीत नदीम श्रवण का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं संजय सारस्वत।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो।
1: हेलो, रोहतास मिस्त्री।
0: रोहतास मिस्त्री बोल रहे हैं?
1: हाँ जी,
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अड़िंग
0: अच्छा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: गानो सुनो सा
0: कार्यक्रम सुनते हैं आप
1: मोहरा।
0: हमारा?
1: हाँ सुने सा खूब।
0: अच्छा, कब से सुन रहे हैं?
1: अरे 2-3 साल है खूब सुन के रहे मैं।
0: अच्छा लगता है कार्यक्रम?
1: हाँ बढ़िया लगे। हेलो आकाशवाणी का
0: क्या फरमाइश है बताइए।
1: मोहरा फिल्म की एक चीज बड़ी है, मस्त मस्त गाने सुन लो।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
1: ठीक है।

0: हेलो,
1: हेलो आकाशवाणी सर।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर, मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र महेश चंद सदर बाजार से वार्तालाप कर रहा हूँ सर। सर
0: स्वागत है महेश जी कार्यक्रम में।
1: कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं, आपके
1: सब
0: हाल चाल
1: बढ़िया,
0: ठीक हैं?
1: सब अच्छे हैं सर, आपकी कृपा, बिहारी जी की कृपा, सब बढ़िया है, अच्छे हैं सर।
0: ऐसे
1: बहुत
0: ही स्वस्थ बने रहिए, कार्यक्रम सुनते रहिए, हमें फोन करते रहिए।
1: हम नियमित श्रोता है, आपके हर प्रोग्राम को बड़े प्यार से सुनते हैं सर।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। आज कार्यक्रम में
1: गाने
0: क्या फरमाइश रहेगी सर, बताइए।
1: के बोल है, इतना तो याद है।

0: मुझे।
1: महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना सुनना चाहते
0: अच्छा,
1: हैं।
0: आपको मेरी कॉल उठाने के लिए और इस फिल्म का गाना सुनाने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ सर आपका।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

0: हेलो,
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार। अच्छे
1: कैसे हैं सर?
0: हैं, आपका परिचय जानना चाहते हैं।
1: मैं चौधरी धर्मवीर सिंह नंगला बुबला कीठम आगरा से सर।
0: स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद
0: आज काफी दिनों बाद बात हो रही है आपसे।
1: जी। मेरा अंतिम निर्णय यही है कि मैं महीने में या 20 दिन में ही कॉल करता हूँ, ताकि अन्य लोगों को भी मौका मिल सके सर।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है सर। ये आपकी आज क्या फरमाइश है चौधरी साहब, बताइए।
1: आपकी पसंद का सुनेंगे सर। जी
0: हमारी पसंद का गाना सुनेंगे आज,
1: बिल्कुल सुनेंगे सर।
0: सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गाना।
1: वैसे सभी श्रोता को ये ध्यान रखना चाहिए, आपको चांद की पाबंदी है तो थोड़ा दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए सर, ये मेरा मानना है।
0: जी, बार बार हम भी यही निवेदन करते हैं कार्यक्रम
1: हाँ
0: में।
1: हाँ हाँ सर, ठीक है
0: ठीक
1: सर।
0: है, नमस्कार।
1: नमस्कार सर।

0: हेलो।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जांगड़े साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: शुक्रिया।
0: और सब अच्छा चल रहा है?
1: बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रहा है।
0: कार्यक्रम सुन ही रहे हैं हमारा।
1: हाँ जी बिल्कुल, उस समय तो वो चिपके रहते हैं मोबाइल ऐप से। जी,
0: अच्छी बात है।
1: धड़कन
0: आज क्या फरमाइश है सर, बताएं।
1: से सुनवा देंगे टाइटल, तुम दिल की धड़कन में रहती हो।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं योगेश भाई, आपकी फरमाइश का गाना। बहुत बहुत
1: बहुत बहुत
0: शुक्रिया, धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद।

0: तुम रहते हो।
1: हेलो।
2: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: आपका स्वागत है इंद्रभान जी कार्यक्रम में।
2: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। ड्यूटी परेड में हूँ सर, और नर्सरी के बीच में खड़ा हूँ। धूप तेज है और हवा भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सर। बातचीत हो रहा है, डबल खुशी बढ़ रहा है, और मनोरंजन के साथ में अपने पसंद के गीत अब बताता हूँ। फिल्म का नाम है निकाह।
1: जी
2: गीत ये बोल है, चेहरा छुपा लिया है किसी जनाब ने।
1: जी जी
2: और सबसे पहले गीत आपको, केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत रक्त श्रोता को, आकाशवाणी मथुरा में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, सभी लोगों को निवेदन करूँ सर।
1: सुनवाते हैं
2: धन्यवाद
1: इंद्रभान जी आपकी फरमाइश की ये कव्वाली। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
2: शामिल किए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार सर।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे संजय सारस्वत। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम के शुरुआत में आपको बता देते हैं कि आज हम ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक का आखिरी दिन मना रहे हैं। इस सप्ताह का आज ये आखिरी दिन है। आज हम इसी विषय पर आपसे बात करेंगे। श्रोताओं, ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक एक ऐसा शीर्षक है जो हमसे जुड़ा हुआ है, हम सभी के जीवन से सीधा इस बात का जुड़ाव है, क्योंकि श्रोताओं, सड़कें विकास की पहचान होती हैं। ये हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ती हैं, लोगों को करीब लाती हैं और देश की प्रगति को गति देती हैं। लेकिन जब सड़क पर सावधानी नहीं बरती जाती तो यही सड़कें दुर्घटनाओं का कारण बन जाती हैं। हर वर्ष दुनिया भर में लाखों लोग सड़क हादसों का शिकार होने लगते हैं। कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और हजारों परिवार हमेशा के लिए दुख में डूब जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग जल्दी पहुंचने की होड़ में ट्रैफिक नियमों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई तेज गति से वाहन चलाता है, कोई मोबाइल फोन

फोन पर बात करते करते हुए ड्राइव करता है तो कोई हेलमेट या सीट बेल्ट पहनना जरूरी नहीं समझता। छोटी सी लापरवाही कभी कभी बहुत बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेती है। श्रोताओं, हमें तो चलते जाना है और अपनी इस लापरवाही को सतर्कता में बरतना है, क्योंकि जीवन अनमोल है।

अभी आपने सुना गुलजार का लिखा गीत, राहुल देव बर्मन का संगीत, आवाज़ थी किशोर कुमार की और फिल्म का नाम था परिचय। श्रोताओं, जीवन बहुत अनमोल है, ईश्वर द्वारा दिया हुआ ये वरदान है। सड़क सुरक्षा का मतलब केवल अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि दूसरों की भी सुरक्षा है। जब हम नियमों का पालन करते हैं तो हम अपने परिवार, समाज व देश की प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि जीवन बचाने के लिए जरूरी है। इसी तरह चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना भी बेहद आवश्यक है। कई बार मामूली दुर्घटनाओं में सीट बेल्ट लोगों की जान बचा लेती है। सड़क पार करते समय जेवरा क्रॉसिंग का उपयोग करें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें और लाल बत्ती होने पर धैर्य रखें। कुछ मिनट की जल्दबाजी पूरी जिंदगी भर भारी पड़ सकती है। आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, लेकिन वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग अत्यंत खतरनाक है। एक क्षण का ध्यान भटकना भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए ड्राइविंग करते समय केवल सड़क पर ध्यान दें और जीवन को अच्छे से चलते चलते काटने की कोशिश करें।

माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही यातायात नियमों की जानकारी दें। स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाएं। यदि हम आज बच्चों को सही आदतें सिखाएंगे तो आने वाला कल अधिक सुरक्षित होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कई जगह

आवश्यकता है। कई जगह लोग बिना लाइट के वाहन चलाते हैं या सड़क के नियमों का पालन नहीं करते। हमें समझना होगा कि दुर्घटना शहर और गांव देखकर नहीं, सावधानी हर जगह पर हो सकती है। सरकार और प्रशासन लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। बेहतर सड़कें, ट्रैफिक संकेत, जागरूकता अभियान और कड़े नियम इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। लेकिन केवल कानून बना देने से समस्या खत्म नहीं होगी। जब तक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक सड़क सुरक्षा का लक्ष्य अधूरा रहेगा। क्योंकि श्रोताओं, हमें चारों ओर देखकर ही चलना है।

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के

0: खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये गीत। इस गीत को लिखा था नीरज ने, संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने, आवाज थी मन्ना डे की, फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। श्रोताओं, आइए इस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करेंगे, कभी भी शराब पीकर वाहन नहीं चलाएंगे और दूसरों को भी सड़क सुरक्षा के लिए प्रेरित करेंगे।

श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार को, फिल्म का नाम था अंदाज। मौत अवश्यंभावी है, वो एक दिन आनी ही है, ये बात सत्य है। लेकिन श्रोताओं, हमें जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जाना है, अपनी गाड़ी की स्पीड तेज नहीं करनी ही है, अपने सर पे हमेशा हेलमेट लगाना है। अगर हम गाड़ी में बैठे हैं तो हमें सीट बेल्ट का भी प्रयोग करना है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना ही होगा, तभी सही मायने में हम जो ये वीक मना रहे हैं, ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, इसका मायने तभी सही मायने में साकार होगा। याद रखिए, सुरक्षित जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं। और ये भी याद रखिए, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। चलते चलते अब आपको सुनवा देती हूँ कार्यक्रम का आखिरी नगमा। लता मंगेशकर की आवाज़ है, साथ में मुकेश हैं। फिल्म का नाम है मेरे हमसफर, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को धुन से संवारा है कल्याण जी, आनंद जी ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम को संपन्न करने की दुर्गेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS।

नादान मनुष्य ही जीवन के हर एक क्षण का आनंद ले सकता है। ज्यादा होशियार लोग तो हमेशा उलझे रहते हैं, इसीलिए हम तो बस श्रोताओं आपसे इतना ही कहेंगे कि नादान बने रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। इसी शुभ संदेश के साथ मैं दुर्गेश भास्कर करती हूँ आप सभी श्रोताओं का प्यार से अभिनंदन कार्यक्रम गीत बात और SMS में। कीजिए स्वीकार मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला संदेश हमें लिख भेजा है तेलंगाना से छोटू पाल कस्तूरी रामदू उमा देवी प्रभु देवी और नारायणा ने। और आइए कार्यक्रम के शुरुआत में ही हम आपको सुनवा देते हैं ये कार्यक्रम का पहला नगमा। कुमार सानू की आवाज है, फिल्म का नाम है दिलवाले, शब्द रचना समीर की है और इस गीत को धुन से संवारा है नदीम श्रवण ने।

0: तू सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है।
1: सपना
2: पानी कम था।

श्रोताओ, इस गीत को सुनना चाहा था नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहापकर, निर्मला नहापकर, विशाल मलकापुर से हमें इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी थी नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष महर्रेकर ने। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोधबड़े, अनीता, रमेश राव। आप हैं नेहरू चौक पैठर से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, पूजा, आरती प्रसाद, सोनल, बेबी सिया। जालना शहर से हमें संदेश लिख भेजा है सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता ने। आप हैं पाखुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, केशु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोड़ा कांची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का संदेश मिला। अगले संदेश करता है ऑरेंज सिटी नागपुर से बिट्ठल जाधव, अनसुईया, पनराजे। आप हैं आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग, सहारनपुर से। छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब, इरफान मोहम्मद। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी का संदेश मिला। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक। केथल हरियाणा से हमें संदेश लिख रहे हैं मधु नायक। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। दादरी गेट भिवानी से हमें संदेश लिख भेजा है कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल ने। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश, डॉक्टर दवीरुल हसन, बेगम शवनम अनवार, नजमा बेगम नाज, भाभी सरिता। चौलादा बागपत से संजय ढींगिया, नमन और अपार। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया का संदेश मिला। नागड़े नगर यमतवाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता, रेयांस और पुरा लोखंडे परिवार। और आइए आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये अगला गीत। गीत के बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म का नाम है रफू चक्कर और आवाजें हैं शैलेंद्र सिंह और कंचन की।

कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है गांव हाड़ी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा इंदिरा शर्मा ने। अगले संदेश करता है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना योगेश मैंडी सौरभ सायना और निवान। आप हैं मंचला रेडियो लिसनर क्लब अकोला से के शरद पाचपुर शोभा पाचपुर बेबी वेदेही विहान बाबू रश्मि अक्षय और अभिनव। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी सुशील बब्बू डब्बू राजू मिगलानी और बबीता का संदेश मिला। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन शहर उत्तर प्रदेश से हमें संदेश लिख रहे हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक आलौकिक। आप हैं राजनगर मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता विनीता रिविराज गौरव और उनके मित्रगण। छपरा दलदली बाजार से संजय कुमार संजीव सर्वजीत सुधांशु कुमार गुप्ता। अगले संदेश करता है मोहम्मद असीफ शेख मोहम्मद अजीम शेख मोहम्मद फातिमा मुन्नी सुलमानी शेख एम कलीम गंज डुंडवारा से। मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति भूमिका हमें संदेश लिख रही हैं श्री गंगानगर राजस्थान से। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा लक्ष्य लाड़ो कोयल नानक चंद्र शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डुग्गू भा

आप हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला विशाल और निशा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल दिसानी और निमित आहूजा। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम, आशीष। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेटा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। बीरमगाम गुजरात से अजीत भावसागर, प्रमिला भावे सैनी का संदेश मिला। पंजाब से हर्ष जिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिवेंद्रु, संस्कृति पौरुष। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कमल का संदेश मिला। ताजपुर मोरवा समस्ती बिहार से कारी राय, कारी मीनाकारी, पुंजराज, आरती आकर्षक, जयश्री। गांव खरकड़ा चौबसी से गोलू कांगड़ा, सागर सीताराम, अंशिक बोट और तमन्ना का संदेश मिला। आप हैं रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश राजस्थान से। पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता आरजू, हसमुखलाल, बुलबुल, संजीव बंटी, पूरा खुशदिल परिवार हमें लिख रहा है सामना शहर पंजाब से। पंजाब से गुरदर्शन शाह, लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनद और पोत्रा का संदेश मिला। अगले संदेश करता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा रानी, अमित कुमार राय, हैप्पी दुबिहा, नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल का संदेश प्राप्त हुआ। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये अगला गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजें हैं। फिल्म का नाम है दामिनी, शब्द रचना समीर की है और इस गीत को धुन से संवारा है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम में संदेश हमें लिख भेजा था इस गीत की फरमाइश का जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू निषाद और तरुण यादव ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे की थी डी अशोक कुमार, अविका जीविका सानू अर्चना ने श्रीरामपुर से। कौस्ते वस्ती पुनावले से हमें संदेश लिख भेजा है अजय सोनवा ने, करिश्मा अविका और सायशा ने। अगला संदेश हमें मिला है प्रकाश रामभाड़े, भारती जानवी, वैष्णवी हर्षल रामभाड़े का नागपुर से। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल ईशान और पूजा परिहार। अगले संदेश करता है दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र, उमेश और प्रमिला। आप हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला, राजेंद्र नेपानगर एमपी से। सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा असद हरहाम, साथ में मोहम्मद आलम हाशमी अजमेर शरीफ से। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहब राही, मेहराज जहां आजाद नगजर लक्सर हरिद्वार से। मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार हमें संदेश लिख भेज रहा है मुकेश भट्ट, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक वंश। अहमदनगर से नासिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल का संदेश मिला। आप हैं अडार नादगांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी और राहुल गोपी वर्मा। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, फिल्म का नाम है सौतन, शब्द रचना सावन कुमार की है और इस गीत को धुन से संवारा है उषा खन्ना ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम को संपन्न करने की मुझे दीजिए अनुमति। चलते चलते बस इतना ही कहूंगी, प्रशंसा को हमेशा विनम्रता से स्वीकार करें और आलोचना पर गंभीरता से विचार करें। किसी ने क्या खूब कहा है, शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में, शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में, आप नहीं होंगे तो मुझे तराशेगा कौन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज की कलाकार हैं नीरज।

0: प्लीज जल्दी।
1: दूसरा कोई मैच है क्या?
0: ऐसे ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
1: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
2: पर बैंकिंग में नहीं।
3: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
2: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं नीरज के गाए हुए ब्रज लोकगीतों का। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला ब्रज लोकगीत। आवाज है नीरज की।

0: कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीतों का। आज की कलाकार हैं नीरज, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला ब्रज लोक गीत इन्हीं के स्वर में।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीतों का। आज की कलाकार है नीरज, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम ब्रज लोक गीत नीरज के ही स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज की कलाकार थी नीरज। इसी के साथ ब्रज लोकगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लौ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए

0: कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपए नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी अपराह्न 1:15 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी नीतू सक्सेना। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। इसके अलावा चर्चा होगी गर्मियों में बच्चों की देखभाल विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता बच्चों के विकास में माता पिता की भूमिका। वार्ताकार होंगी छाया जैन। इसी कार्यक्रम में महिलाएं सुन सकेंगी फिल्म संगीत और जानेंगी कुछ घरेलू टिप्स। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे अपराह्न 1:45 पर और सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम का समय रहेगा अपराह्न 2:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस पर। इसके अलावा आज की बात होगी ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी विषय पर। इसी कार्यक्रम में युवा साथी सुन सकेंगे युवा वार्ता युवाओं की बढ़ती नशा प्रवृत्ति। वार्ताकार होंगी शिल्पा महाजन। इसी कार्यक्रम में हमारे श्रोता आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का।

फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी आप सुनेंगे संध्या 6:15 पर। हेलो किसानवाणी फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे इसी कार्यक्रम में, जिसका विषय होगा नए उत्थान लगाते समय सावधानियां। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर उदयवान सिंह। संध्या वंदन कार्यक्रम सुना जा सकेगा संध्या 6:45 पर। ब्रिज साहित्यिक कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:05 पर।

आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रज लोक कथा जाको मन पवित्र बाको ईश्वर मित्र। कथाकार होंगे नितिन अग्रवाल। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी सुना जा सकेगा संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे रात्रि 8:00। कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम News@9 का समय रहेगा रात्रि 9:00, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। चित्रपट संगीत सुहाने तराने का आनंद श्रोता ले सकेंगे रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम मनी टॉक का समय रहेगा रात्रि 9:30 पर और कार्यक्रम मंथन का समय रहेगा रात्रि 9:45 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण मथुरा केंद्र की प्रस्तुति होगी रात्रि 10:00। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी खेलों के संदर्भ में समसामयिक चर्चा पर, वो भी आधारित खिलाड़ियों के लिए जापाद में खेल सुविधाएं। जिला खेल अधिकारी राकेश यादव से भेंटवार्ता भी होगी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 10:30 पर। रमेश प्रेम का विचित्र वीणा वादन होगा आज। राग होगा वागेश्वरी, तबला पर संगत रहेगी शरीफ अहमद खां की। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना। तुम्हों का लगे ये तो गया वो है देशगान। इसमें अभी लास्ट में बजा दूँ, मुझे लगा था कि इंग्लिश में कुछ लिखाई नहीं चाहिए अभी ना।

0: प्रोमो काय में मिलेगा? डेढ़ मिनट का है? ऊपर वाला कौन सा है?
1: नीचे वाला है?
0: हाँ हाँ नीचे, ऊपर वाला कौन सा है फिर?
1: ऊपर वाला है ये
0: वो वेस्ट है, हाँ नीचे वाला, ठीक है
1: दो ये नहीं है, दूसरा वाला 90 सेकंड
0: वाला, वो भी तो 90 सेकंड है,
1: 30 है,
0: एट द रेट 90, अच्छा बजा के देखूँ पहले, 90 नहीं है, हाँ हो गए 90, ठीक है इसमें इसी में बजा दूँ यही, ठीक है डेढ़ दो मिनट के, दो मिनट हो गए।
1: ये तो मैं मैडम से पूछ रहा था, उस पर दे रहे थे ध्यान ज्यादा,
0: इंग्लिश में ऐसे ही है कुछ, नहीं इंग्लिश में मतलब हाँ लिखा तो है।

0: 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं नीतू सक्सेना।

कुछ गुनगुनाते चलिए, कुछ मुस्कुराते चलिए, राहें खुद ब खुद नजर आएंगी, बस एक दूसरे का हाथ थामते चलिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ वनिता लोक कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को नीतू सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार और आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में हमारी बहनों का बहुत बहुत स्वागत। बहनों आप कैसी हैं? हम तो चाहते हैं हमारी बहनें हमेशा स्वस्थ रहें। बहनों यह तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों पर ही हमारा जीवन आधारित है। पेड़ पौधों के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पेड़ पौधों से हमें खाद्य सामग्री के साथ स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल भी मिलता है, जो हमारे जीवन के लिए वरदान है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक हमारे जीवन में हरियाली है तभी तक हम सांस ले पा रहे हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम पौधों के जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कल तक जहां चारों ओर हरियाली थी वहीं आज बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं। इतना ही नहीं बहनों, गांव के किसान भी शहर की ओर आ रहे हैं, जिससे हमारी खेती पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी का नतीजा भी हम सभी लोग देख ही रहे हैं। नई नई बीमारियों ने अपने पैर पसार लिए हैं। चारों तरफ का वातावरण दूषित हो रहा है। आने वाले संकट से बचने के लिए और पेड़ पौधों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ताकि पौधों के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहन

मिल सके। बहनों, फसलों में बीमारियों और कीटों के कारण दुनिया भर में करीब 40% फसलों का नुकसान होता है। इस पर रोक लगाने के लिए उपायों को बढ़ावा देना है। खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और आर्थिक विकास में पौधों की अहम भूमिकाएं समझना है। फसल रोगों से मुक्त हो और कृषि व्यापार को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने के लिए जागरूक होना बेहद जरूरी है। स्वस्थ फसलें अधिक उत्पादन देती हैं, जिससे दुनिया भर में भुखमरी को कम करने में मदद मिलती है। पेड़ पौधे अनेक जीवों का घर हैं, उनकी रक्षा करने के लिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। बहनों, आज के दिन ही नहीं बल्कि हमें हमेशा अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूक रहना है, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। यदि पौधे स्वस्थ होंगे तो हमारा वातावरण, पर्यावरण, हमारे पशु और हमारा मानव स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए स्वस्थ पौधे सुरक्षित पृथ्वी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। बहनों, हम तो बस यही कहना चाहेंगे, नीला नभी है पहचान, साफ स्वच्छ हो अपना जहान, पेड़ों के महत्व को तू भी ले जान, इससे ही है जीवन दान।

0: बहनों, बच्चों के विकास में माता पिता की अहम भूमिका होती है। बच्चे माता पिता को देखकर ही अनेक व्यवहार अपनाते हैं। माता पिता बच्चों के पहले शिक्षक, मार्गदर्शक और आदर्श होते हैं। माता पिता का सही मार्गदर्शन बच्चों को सही रास्ते पर चलने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है। बहनों, जब बात बच्चों की कर ही रहे हैं तो आज इसी विषय पर आपको सुनवाते हैं वार्ता, बच्चों के विकास में माता पिता की अहम भूमिका। हमें जानकारी दे रही हैं छाया जैन।
1: बच्चों के विकास में माता पिता की अहम भूमिका होती है। कहा भी गया है कि माता पिता ही बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं। वे बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं और उन्हें आने वाले जीवन के लिए तैयार करते हैं। वे प्यार, मार्गदर्शन, प्यार और आवश्यक जीवन कौशल से पहला परिचय करके सीखने की नींव रखते हैं। परिवार का अच्छा वातावरण बच्चों को उत्तम गुणों के विकास में सहायक होता है। अच्छे संस्कारी परिवार द्वारा ही बालक में नैतिकता व व्यक्तिगत मूल्यों का विकास होता है। माता पिता द्वारा सिखाए हुए कार्यों को जीवन में उतारकर वे सफलता भी हासिल करते हैं। दरअसल माता पिता का व्यवहार और उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव सीधा बच्चों पर पड़ता है। बच्चों में अच्छी आदतें जैसे बड़ों का सम्मान, पर्सनल हाइजीन की आदतें भी बचपन में ही डाल दी जाती हैं। विद्यालय जाने पर बच्चों को अपने दोस्तों के साथ तालमेल रखना, गुरुओं का सम्मान करना, उनमें मानवीय संवेदना सिखाना जैसे हार जीत को कंट्रोल करना आदि, यही वे समय हैं जब माता पिता को उनकी रुचियों पर ध्यान देकर उन्हें सही दिशा प्रदान करनी चाहिए। बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें, जैसे यदि बच्चे में एकेडमिक की जगह उनका किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है तो उन्हें प्रोत्साहन दें, क्योंकि आजकल हर फील्ड में कैरियर बनाया जा सकता है। ये एज जिसे टीन एज कहते हैं, ये माता पिता के लिए भी बहुत चैलेंजिंग पीरियड होता है। इसी समय पेरेंट्स की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। वे ये समय बच्चों के लिए बहुत असमंजस का होता है। इस समय बच्चों में फिजिकल और इमोशनली चेंजेस आते हैं। इस समय उनके दोस्तों का, उनकी संगति का ध्यान रखना चाहिए। इस समय उनके खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यही वो समय है जिसमें उनके हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, तो इन्हें इस समय माता पिता का विशेष साथ चाहिए होता है। इस समय बच्चे कई परेशानियों में फंस जाते हैं, पर आप उन पर भरोसा रखें और उन्हें भी यकीन दिलाएं कि आप हमेशा उनके साथ हैं, ताकि वो किसी भी परेशानी में हों तो भी आपसे खुलकर साझा कर सकें। यह समय उन्हें थोड़ी आज़ादी दें, पर समय समय पर इसकी जानकारी भी लेते रहें कि इस समय आज़ादी का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। टीनेजर बच्चा मस्तिष्क विकास के एक महत्वपूर्ण चरण के बीच होता है। जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ता है, माता पिता को अपनी पेरेंटिंग शैली भी बदलनी होती है। माता पिता को इस समय बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, वे साथ भोजन करें ताकि एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। घर पर कुछ इस टाइप का नियम बनाएं ताकि उनमें आत्मनियंत्रण विकसित हो, जैसे होमवर्क पूरा न होने तक टीवी न देखें। यदि आप अपने बच्चों को स्कूल की शिक्षा के अलावा कोई बाहरी शिक्षा देना चाहते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि वह बच्चों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए, जिससे उनकी प्रतिभा विकसित हो। बच्चों को अपनी पसंद का खेल खेलना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे पढ़ाई संबंधित तनाव को खेल के जरिए दूर करते हैं। यदि बच्चे ऐसे प्रेरक वातावरण में समय बिताते हैं तो उनका दिमाग श्रेष्ठ गति में विकसित हो सकता है। ये सब बच्चों की संज्ञात्मक क्षमता, उनका स्वास्थ्य और खुशी, सीखने और सोचने की क्षमता और तनाव से निपटाने और रिश्ते बनाने की क्षमता निर्धारित करते हैं। बचपन में अच्छा पोषण, संरक्षण, खेल और प्यार बच्चों के दिमाग में अच्छे संबंधों को जन्म देता है। किशोर बच्चों को संभालने के लिए उन्हें यह समझना चाहिए कि वे जब भी किसी चुनौती या चिंता का सामना करें तो वे घर पर आपके पास आ सकते हैं। उनके साथ खुले दिल से बात करनी चाहिए। उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए कि आप उनकी बातों को बिना आलोचना के सुनने के लिए तैयार हैं। उनकी उपलब्धियां भी प्रशंसा करनी चाहिए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि हर कोई गलतियां करता है, तो गलतियां करना गलत नहीं है, वरन उससे सीख कर गलतियों को रिपीट ना करें।

उन्हें यह भी समझना चाहिए कि आप तब भी उनसे प्यार करते हैं जब आपको उनका व्यवहार पसंद ना हो। अगर वो कोई पुरस्कार जीतते हैं तो इसे एक बहुत बड़ी बात बनाएं, इसे सेलिब्रेट करें। ये प्रयास माता पिता और बच्चों के बीच आजीवन स्वस्थ संबंध को मजबूत करेगी। एक अभिभावक के तौर पर आप अपने बच्चों को सुधारने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आप अपने सुधारात्मक मार्गदर्शन को कैसे व्यक्त करते हैं, इससे बच्चे पे बहुत फर्क पड़ता है। अपने बच्चों में जो गुण आप देखना चाहते हैं उन्हें अपना आदर्श बनाएं, जैसे सम्मान, मित्रता, ईमानदारी, दयालुता, सहनशीलता, निस्वार्थ व्यवहार प्रदर्शित करें। इस उम्र के बच्चों के साथ रिश्ते मजबूत रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप उन्हें वीकेंड पर बाहर ले जाएं और उन्हें प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका दें। उन्हें खेल खेल में नई एक्टिविटीज से जोड़ें। किशोर अक्सर सही और गलत का फर्क नहीं पहचान पाते और वह कई सारी गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे में हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को सही और गलत के बारे में बताना चाहिए ताकि आगे चलकर बच्चा कोई भी गलत डिसीजन ना ले। सफलता और असफलता को एक समान समझने की कला विकसित करें जो भविष्य में बहुत ही कारगर साबित होगा। इस समय माता पिता को बच्चों के खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस उम्र में कैल्शियम और आयरन की कमी आम बात है। इस आयु में हड्डियों का विकास होता है। उन्हें हेल्दी स्नैक्स जैसे पनीर, स्प्राउट, काले चने, मक्का आदि की स्टफिंग से हेल्दी स्नैक्स तैयार करें। हालांकि इस उम्र में बच्चों को घर का खाना पसंद नहीं होता, पर इस स्थिति में माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों को कुछ अलग ढंग से इंटरेस्टिंग बनाकर दें। टीनेज के बच्चों के लिए एक बैलेंस डाइट मिलना बेहद ज़रूरी होता है। विटामिन से भरपूर चीज़ें इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं और बढ़ती उम्र में बच्चे बीमारियों से बचे रहते हैं जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी रहती है। वही इस उम्र में शरीर को माइक्रो कंपाउंड जिंक के अलावा मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन और कैल्शियम भी बेहद ज़रूरी होता है। इन सभी न्यूट्रिशन को फूड के जरिए पूरा किया जा सकता है। इसके लिए भरपूर मात्रा में फल, सीड्स और हरी सब्जियां डाइट में शामिल करें। बच्चों की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स में भरपूर चीज़ें शामिल करें, लेकिन कॉम्प्लेक्स करें, लेकिन सिंपल के मुकाबले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि ये धीरे धीरे एनर्जी देते हैं जो बच्चों की रोज़ाना फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। इसीलिए डाइट में साबुत अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी आदि शामिल करें। बढ़ती उम्र में बच्चों की डाइट में डेयरी प्रोडक्ट जैसे देशी घी, दूध, दही, मक्खन जरूर शामिल करना चाहिए। दूध से बनी चीज़ों में कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है जो दांतों, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इससे बच्चों की डाइट बढ़ने में भी हेल्प मिलती है। आज के दौर में माता पिता को अपने बच्चों के साथ मीडिया का कितना और क्या यूज़ करना है ये भी समझाना चाहिए। मीडिया के उपयोग से उन्होंने क्या सीखा, इन विषयों पर खुलकर बातचीत करनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि ऐसी आदतें विकसित की जाएं जो आपके परिवार को स्वस्थ संतुलन बनाने में मदद करें। आप तय कर सकते हैं कि बच्चों के लिए मीडिया का कौन सा उपयोग सबसे अच्छा है, क्योंकि आजकल बच्चे अत्यधिक व्यक्तिगत मीडिया उपयोग अनुभवों के दौर में बड़े हो रहे हैं। इसीलिए माता पिता के अपने बच्चों के लिए उनके आयु के हिसाब से यूज़ करने पर जोर देना चाहिए। जैसे सोने से 1 घंटे पहले डिवाइस या स्क्रीन का इस्तेमाल बंद कर दें। बच्चों को स्मार्टफोन जैसे डिवाइस के साथ सोने ना दें। होमवर्क करते समय मनोरंजन मीडिया से दूर रखें। अपने बच्चों के साथ मीडिया का चयन करें और उसे देखें ताकि वो मीडिया का उपयोग सीखने, रचनात्मक होने और अपने परिवार के साथ इन अनुभवों को साझा कर सके। बच्चों की परवरिश में उन्हें अच्छा इंसान बनाने से लेके खुद पैरों पर खड़े होने में भी उनका योगदान होता है। बच्चे न केवल अपने या परिवार के लिए जिम्मेदार बने बल्कि देश के लिए भी अपने कर्तव्यों को समझें। इसकी जिम्मेदारी भी पेरेंट्स की होती है, इसीलिए शुरू से ही बच्चों को अपने देश के प्रतीक चिन्हों जैसे राष्ट्रीय ध्वज, अशोक स्तंभ समेत अन्य चीज़ों का सम्मान करना सिखाएं।
इसके अलावा

0: बच्चों को बताएं कि ये चीज़ हर भारतीय नागरिक की लाइफ में अहम भूमिका निभाती है। अतः माता पिता बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं ताकि वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें।
1: बहनों, आप सुन रही थी वार्ता बच्चों के विकास में माता पिता की अहम भूमिका। जानकारी दे रही थी छाया जैन। बहनों, इसी के साथ चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

बहनों, तपती धूप और उमस भरे दिनों में सबसे ज्यादा नुकसान हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। बच्चों को लू, डिहाइड्रेशन, स्किन रैशेस और पेट की समस्या जल्दी ही घेर लेती है। इसीलिए गर्मी के मौसम में बच्चों के खान पीन से लेकर कपड़ों तक बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। बच्चे इस मौसम में कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम की फरमाइश करते हैं, जो कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इस मौसम में बच्चों को नींबू पानी, दही की लस्सी, नारियल पानी, सत्तू के सेवन से बच्चों की बॉडी हाइड्रेट रहती है। बहनों, इन सब का सेवन अगर हम बच्चों के साथ साथ हम बड़े भी करेंगे तो हमारी भी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, क्योंकि सभी की बॉडी में पानी की कमी तो हो ही जाती है गर्मी के मौसम में। बच्चों को तले भुने भोजन से बचाएं, क्योंकि बहनों बच्चों की बॉडी सॉफ्ट होती है, बच्चे जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए बच्चों को दाल, चावल और सूजी से बनी डिशेस खिला सकती हैं, जो आसानी से पच सकती हैं और टेस्टी भी लगती हैं, क्योंकि बच्चों को तो बच्चे ही हैं, बच्चों को तो डेली नई नई डिशेस चाहिए ही। बच्चों को तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी जैसे फल खिलाएं, जिससे बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है। गर्मी से बच्चों की स्किन पर दाने या रैशेज बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए बच्चों को हमेशा कॉटन के सॉफ्ट और ढीले कपड़े पहनाएं। बच्चों को धूप में ले जाने से बचें। लेकिन बहनों, कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें, जब हम लोग घर से जाएंगे तो बच्चे कहाँ रहेंगे, तो बच्चों को भी ले जाना पड़ता है, तो धूप में बच्चों को जाना पड़ता है। ऐसे में सॉफ्ट फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, सिर पर कैप और सन ग्लासेस जरूर लगाएं, इससे धूप डायरेक्ट स्किन पर नहीं पड़ती है। और बहनों, जैसे हो सके तो ध्यान ये रखें कि बिल्कुल टीका टिक दोपहरी में बच्चों को लेके नहीं जाएं, और अगर जाएं भी तो अगर ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इतनी जल्दी बच्चों पर इफेक्ट गर्मी का नहीं पड़ेगा। और छाता भी जरूर ले ले साथ में इतनी धूप में निकलने से पहले। गर्मी के मौसम में जब बच्चे बार बार नहाने की भी जिद करते हैं, क्योंकि गर्मी लगती है तो बच्चों को लगता है बस हम जाएं और नहाए आएं, लेकिन सुबह और शाम से ज़्यादा नहीं नहाने दें बच्चों को, क्योंकि ज़्यादा नहाने से भी बुखार, सर्दी और जुखाम का परेशानी हो जाती है। बहुत जल्दी सर्दी, जुखाम, बुखार भी हो जाता है इस मौसम में। जब बच्चा स्कूल से आए तो तुरंत हाथ मुंह नहीं धोने दें, थोड़ी देर अपनी उसकी बॉडी जब नॉर्मल हो जाए तभी हाथ मुंह धोने दें। बच्चों को शाम के समय थोड़ी देर खुले स्थान या पार्क में खेलने के लिए जरूर लेके जाएं, क्योंकि बाहर के वातावरण के संपर्क में आने से बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बच्चों को मक्खी मच्छर से बचाएं, बच्चों में डेंगू मलेरिया रोग होने की संभावना अधिक रहती है। बच्चों को रोजाना साफ कपड़े पहनाएं और ताज़ा घर का बना भोजन ही कराएं। बहनों, आज के बच्चे डेली नई नई डिशेस की फरमाइश करते हैं, ऐसे में घर पर ही बने पौष्टिक भोजन कराएं। बहनों, वैसे तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम बच्चों के स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं और गर्मी के दिनों को भी इंजॉय कर सकते हैं। बहनों, बच्चों के साथ साथ हम बड़ों को भी इतनी तेज धूप में अलग अलग तरह के स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं। इससे बचने के लिए अगर हम डेली रूटीन में कुछ घरेलू नुस्खे यूज़ करें तो इससे हमारी स्किन सही रहती है, हमारी स्किन पर रैशेज नहीं पड़ते, हमारी स्किन जलती नहीं है। इसके लिए बहनों, डेली रूटीन

में मुल्तानी मिट्टी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। मुल्तानी मिट्टी को दूध या दही में भिगोकर फेस पैक बना लें। इस फेस पैक को बनाकर अपने फेस पर लगा लें और सूखने दें। सूखने के बाद पानी से फेस धो लें। इससे हमारी जो स्किन जो जली हुई होती है वो भी बहुत जल्दी सही हो जाती है।

जल्दी सही हो जाती है। बहनों, जैसे दही जो होता है वो नॉर्मली सबके घरों में हमेशा मिल ही जाता है, तो अगर हम जल्दी जल्दी में डेली रूटीन में हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम कुछ कर पाएं, तो हम केवल दही को भी अपने फेस पर और अपनी नेक पर लगा सकते हैं। इससे भी दाने या रैशेज या जली हुई स्किन बहुत जल्दी सही हो जाती है। और दही में अगर हम चाहें तो एक चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं। इसके लगाने से हमारे फेस पर बहुत जल्दी इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे फेस से सारे दाने भी सही हो जाते हैं। ऐसे कि खीरा होता है बहनों, खीरा खाते तो हैं ही हम गर्मी में, अगर हम गर्मी में इसका फेस पैक भी बना के लगाएं तो ये हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारी स्किन सही रहती है। बहनों, ये तो थे कुछ घरेलू टिप्स। अब इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न होता है, तो इजाजत दीजिए नीतू को, नमस्कार। चलते चलते बस यही कहना चाहूंगी, मंजिलें बहुत हैं और अफसाने भी बहुत हैं, जिंदगी की राह में इम्तिहान भी बहुत हैं। मत करो दुख उसका जो कभी मिला नहीं, दुनिया में खुश रहने के बहाने भी बहुत हैं, इसलिए खुश रहिए और मस्त रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी नीतू सक्सेना। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, आज मंगलवार दिनांक 12 मई 2026 को शाम 6:15 से 30 मिनट की अवधि के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है नए बाग लगाते समय सावधानी की तैयारी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदयवान सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, घर परिवार की आय बढ़ाने के लिए यदि हम बागवानी वाली फसलों का उत्पादन करते हैं तो कम जमीन में भी अधिक उत्पादन एवं मुनाफा कमा सकते हैं। ज्येष्ठ मास यानी मई माह नए बागों की स्थापना के लिए उचित समय है। बाग लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां एवं खेतों की तैयारी कैसे करें, जैसे कौन कौन से पौधे एवं कौन सी किस्में लगाएं एवं बागों का लेआउट कैसा हो, इन विषयों पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदयवान सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फ़ोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर उदयवान सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक से। कार्यक्रम का समय होगा मंगलवार यानी आज शाम 6:15 से शाम 6:45 तक। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था अपनापन। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है आवारगी, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को धुन से संवारा है अन्नू मलिक ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: Warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya, and also predicted heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim tomorrow. Bihar and Uttarakhand are also likely to witness thunder squall, with wind speed reaching up to 60 km per hour tomorrow. Meanwhile, warm night conditions are expected to prevail at isolated places over Rajasthan throughout this week. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NEET exam for admission to undergraduate medical education cancelled over paper leak allegations, CBI probe ordered. Hemanta Biswa Sarma takes oath as Chief Minister of Assam for second consecutive term. CBI takes over probe into murder of West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari's aide, Chandranath Roth. President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15 nursing professionals. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanaklata. मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद

0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत विश्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लौ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन

0: रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य

0: हम सोने की खरीद को टालें।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: आवर एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
1: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र

0: और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे जो जीता वही सिकंदर फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थीं उदित नारायण और साधना सरगम की। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से। आवाज़ है कुमार सानू की, शब्द रचना जावेद अख्तर की है और इस गीत को धुन से संवारा है आरडी बर्मन ने।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का। उससे पहले आपको सुनवा देते हैं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, आज मंगलवार दिनांक 12 मई 2026 को शाम 6:15 से 30 मिनट अवधि के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है, नए बाग लगाते समय सावधानियां एवं तैयारी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, घर परिवार की आय बढ़ाने के लिए यदि हम बागवानी वाली फसलों का उत्पादन करते हैं तो कम जमीन से भी अधिक उत्पादन एवं मुनाफा कमा सकते हैं। ज्येष्ठ मास यानी मई माह नए बागों की स्थापना के लिए उचित समय है। बाग लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां एवं खेतों की तैयारी कैसे करें, जैसे कौन कौन से पौधे एवं कौन सी किस्में लगाएं एवं बागों का लेआउट कैसा हो, इन विषयों पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित

रहेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर उदय भान सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक से। कार्यक्रम का समय होगा

अभी आपने सुना इंदीवर का गीत, एम करीम का संगीत, आवाज़ें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की, फिल्म का नाम था क्रिमिनल। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, एसपी वाला सुब्रमण्यम की आवाज़ है, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, शब्द रचना देव कोहली की है, संगीत निर्देशन है राम लक्ष्मण का।

आप सुन रहे हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत, नुसरत फतेह अली खां का संगीत, आवाज है उदित नारायण की और फिल्म का नाम है और प्यार हो गया।

इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?

0: ही प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर, 2 लाख
2: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
1: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, देश में सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिनका कि सीधा लाभ देश के निवासियों को मिले। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी और लाभार्थी की पात्रता के आधार पर उचित हिस्सेदारी का विवरण है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहायता का अनुपात 60.40 है। इसमें जो मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती है, मैदानी इलाकों में घर के निर्माण के लिए प्रति लाभार्थी 1,20,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। पर्वतीय कठिन इलाके जहां सहायता राशि 1,30,000 रुपये तक होती है। मनरेगा के तहत अकुशल श्रम के रूप में 90 से 95 दिन की मजदूरी अलग से मिलती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की अलग से सहायता दी जाती है। लाभार्थी की योग्यता। योजना का लाभ लेने के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन SECC 2011 के आंकड़ों और ग्राम सभा की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, जिनके मुख्य मानदंड हैं परिवार के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, घर में रहने वाले सदस्य घरहीन हों या कच्चे युवा जर्जर घर में रहते हों, आय प्रति व्यक्ति 15,000 तक आय वाले परिवार पात्र हो सकते हैं। ये 2026 के अपडेट के अनुसार है। परिवार में 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई साक्षर वयस्क ना हो। कुछ इसके लिए महत्वपूर्ण नियम हैं। घर के निर्माण की निगरानी आवास ऐप के माध्यम से की जाती है। अगस्त 2024 का नियम है जमीन खरीदने के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए भूमि अगस्त 2024 से पहले खरीदी होनी चाहिए। आवास योजना में सरकार घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता सब्सिडी प्रदान करती है, ना कि पूरी लागत।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और साथियों, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं युवा वार्ता। युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति, वार्ताकार हैं शिल्पा महाजन।
3: ड्रग्स की समस्या आज समाज की सबसे बड़ी समस्या है, जिसे हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सामना कर रही है। नशीले पदार्थों का सेवन, उसका आदान प्रदान करना एक आम बात हो गई है। ये चीज हर उम्र का इंसान कर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव सबसे ज्यादा युवा वर्ग पर पड़ रहा है। आज के युग में हर उम्र, हर समुदाय, पढ़ा लिखा, अनपढ़, सब में नशा प्रवृत्ति पाई जा सकती है। बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू जैसी आम बात हो गई है, जिसका सेवन करते हुए हम अपने आसपास रोज कई लोगों को देखते हैं।

न सिर्फ आसपास बल्कि अपने घरों में भी देखते हैं। आयु और उपयोग के आंकड़े दर्शाते हैं कि तंबाकू एवं शराब का सेवन साधारणतः हर उम्र के लोगों में पाया जाता है, जबकि उच्च नशीले पदार्थ जिनमें चरस, गांजा एवं अन्य पदार्थ का उपयोग युवा वर्ग में विशेष रूप से पाया जाता है। हाल ही के सर्वेक्षण में, जिसमें 9वीं कक्षा एवं उनसे ऊपर की कक्षाओं के छात्रों में सिगरेट, शराब के सेवन के कई उदाहरण मिले हैं, इनमें पुरुष ही नहीं महिलाएं भी शामिल थीं। इनका उपयोग करते किशोरों का कहना है कि आमतौर पर सिगरेट पीना उनके लिए एक फैशन में आ गया है, जिसे उन्होंने बस ऐसे ही लेना शुरू किया, जिसकी उन्हें अब आदत हो चुकी है। इन सबसे परिणाम के रूप में हिंसा, आपराधिक गतिविधियों एवं बिगड़ते हुए सामाजिक संबंधों, स्वास्थ्य के रूप में बहुत वृद्धि आई है। प्रारंभ में लोग नशा फैशन में करते हैं और धीरे धीरे फैशन व्यसन में बदल जाता है। व्यसन होने पर उसे छोड़ने में बहुत कठिनाई होती है। आप अनेक पत्र पत्रिकाओं में नशे से होने वाली हानियों को पढ़ चुके होंगे। नशा करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसका अधिक सेवन करने से खांसी, श्वास, फेफड़ों की खराबी तथा कैंसर जैसे असाध्य रोग भी हो सकते हैं। बीड़ी सिगरेट के धुएं में निकोटीन होता है, जो प्राणघातक होता है। नशा करने से स्वास्थ्य के साथ साथ धन की भी हानि होती है। नशा करने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखकर ही सरकार ने यह वैधानिक चेतावनी की नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इन सभी वस्तुओं के पैकेट पर लिखना आवश्यक कर दिया है। युवा वर्ग कई कारणों की वजह से नशीले पदार्थों की तरफ आकर्षित होता है, जैसे युवा वर्ग इसे दोस्ताना अंदाज में अपना लेता है, जो कि आपस में कहने एवं सहपाठियों के अनुरोध एवं किसी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम में एकत्रित होकर इसका सेवन प्रारंभ करते हैं, ताकि वो भीड़ का हिस्सा बन सकें और अपने आप को जतलाने के लिए कि वो बड़े हो चुके हैं। दूसरा कारण है मानसिक सुख प्राप्त करने के लिए। एक बार उन्हें इसे लेने पर अच्छा महसूस होने पर वो इसे बार बार लेना चाहते हैं। तीसरा, वे इसे जिज्ञासु होकर भी लेते हैं। एक नया काम करने की जिज्ञासा में भी वो इसे लेना शुरू कर देते हैं। वे इसे एक प्रयोग के रूप में भी लेने की शुरुआत कर लेते हैं। बोरियत और खालीपन ये भी एक मुख्य कारण है युवाओं का नशा करने के पीछे। अपने वही पुराने 9 से 3 वाले रूटीन से बोर होकर भी युवा नशा शुरू कर देते हैं। युवा अपने आप को और आत्मविश्वासी दिखाने में और अपने को बहुत महत्वता और पावरफुल दिखाने के लिए भी नशा करते हैं। तनाव मुक्त होने के लिए भी वो नशे का सहारा लेते हैं। किसी भी तरह का तनाव या समस्या, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, घर में या आपसी रिश्तों में, सुलझाने के लिए भी नशे का इस्तेमाल करते हैं। नशा युवाओं को सच्चाई से भ्रमित करता है और कुछ समय के लिए सच्चाई को बहुत खूबसूरत कर देता है और परेशानियां काफी आसान लगने लगती हैं, सिर्फ कुछ देर के लिए। आक्रोश जताना, जो काम युवा होश में नहीं कर सकते वे नशे की मदद से कर पाते हैं, जैसे कि अपने माता पिता, टीचर्स या सहपाठियों से झगड़ा करना और उनसे बहस करना, वो आसानी से नशे के बेहोशी में कर पाते हैं। कुछ लोग मानसिक विकृति के कारण भी नशीली चीजों का सेवन करते हैं। आजकल माँ बाप दोनों ही बाहर कार्य करने वाले होते हैं या फिर माँ और अन्य सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहती है, और आजकल परिवार छोटे होने की वजह से बच्चों पर कोई पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता। बच्चा क्या कर रहा है, उसे क्या चाहिए और या वो किसी गलत आदतों में तो नहीं पड़ गया, ये सब कैसे पता करें? कुछ बातें हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं कि बच्चा नशा करने की लत से ग्रस्त तो नहीं, जैसे कि दोस्तों का बदलना, स्कूल की परफॉर्मेंस में बदलाव, स्कूल ना जाना, बहाना करके स्कूल से कहीं और चले जाना, कम नंबर लाना, अपनी बातें ज्यादा सीक्रेट

0: करता, क्योंकि ये उम्र ऐसी ही है कि बच्चा जल्दी संभल नहीं पाता। लेकिन फिर भी कहीं से शुरुआत करनी जरूरी है। जैसे बच्चे से बात करने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें, फिर बात करें और उसे समझाएं। आदत डालें कि बच्चे से रोज बात करें अलग अलग विषयों पर। बच्चे को सच्चाई से अवगत कराएं ताकि वो उसे समझे और आपका कहना माने। अपने बच्चों को जताइए कि आप चाहते हैं कि वो अपने जीवन के निर्णय खुद ही करें, क्योंकि वो इतने समझदार हैं। अपने बच्चे को समझाते समय शुरुआत से ही किसी अखबार या किसी अन्य मैगजीन के लेख के द्वारा समझाने की कोशिश करें, ताकि उसे बात जल्दी समझ में आए। अपने बच्चों को मौका दें कि खुद बताएं कि वो किस विषय पर उनसे बात करना चाहते हैं, और उनसे समय, स्थान और तारीख पूछें, ताकि वो अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस करें कि उन्हें भी किसी की जरूरत है। हमेशा अपने बच्चों को कुछ अच्छा करने पर उसकी तारीफ करें और उसे शाबाशी दें, जिससे उसका मनोबल बढ़े और वो किसी भी परेशानी के दौर से गुजर रहा हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा समय दें और उसकी समस्या का समाधान करें। अंत में ये कहा जा सकता है कि नशा ना सिर्फ शारीरिक बल्कि धन की भी हानि है, लेकिन अगर युवा वर्ग चाहे तो इसे त्याग कर अपना जीवन सुंदर बना सकता है और पूरी दुनिया को भी खूबसूरत बना सकता है, क्योंकि दुनिया खूबसूरत तभी बन सकती है जब उसमें रहने वाले लोग स्वस्थ हों।
1: साथियों, अभी आपने सुनी वार्ता युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति। वार्ताकार थी शिल्पा महाजन।

आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अभी आपने ये प्रोमो सुना और अब आनंद लेते हैं कार्यक्रम में फिल्म संगीत का।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपने दैनिक कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम करें।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोड की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक। 9:45 पर होगा कार्यक्रम मंथन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। इसमें आज मथुरा केंद्र की प्रस्तुति होगी। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी खेलों के संदर्भ में सामयिक चर्चा। ओबी पर आधारित रिपोर्ट आप सुनेंगे। खिलाड़ियों के लिए जिले में खेल सुविधाएं, जिला खेल अधिकारी राकेश यादव से भेंटवार्ता। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक जानकारी आईपीएल खेलों का आर्थिक पक्ष। वार्ताकार होंगे शरद श्रीवास्तव। खेल समाचार प्रस्तुत करेंगे हेमेंद्र कृष्ण शर्मा। इस कार्यक्रम में आलेख, ओबी वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे ओपी सिंह। समय याद रखिएगा आज रात्रि 10 बजे। अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। ये हमारा फोन इन कार्यक्रम होगा और सजीव कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का संचालन करेंगे वीरेंद्र सिंह और नीलमणि शर्मा। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा नए उद्यान लगाते समय सावधानियां। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर उदय भान सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। श्रोताओं, यदि आप भी इस कार्यक्रम में नए उद्यान लगाते समय की सावधानियों जैसे विषय पर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें संध्या 6:15 से लेकर 6:45 के मध्य फोन कर सकते हैं।

हमारा टेलीफोन नंबर है 2530-135। मथुरा से बाहर के श्रोता और मोबाइल से डायल करने वाले श्रोता टेलीफोन नंबर से पहले मथुरा का एसटीडी कोड 0565 अवश्य लगाएं। इस प्रकार संपूर्ण नंबर होगा 0565-2530-135। शाम 6:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी और गैर फिल्मी संगीत भजन संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

संध्या 7:05 पर होगा ब्रज साहित्य कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे ब्रज लोक कथा। जाको मन पवित्र वाको ईश्वर मित्र, कथाकार होंगे नितिन अग्रवाल। संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8 बजे से लेकर 8:20 तक। देशगान प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:20 पर। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। आज की फिल्म होगी दे दनादन। रात 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे राग बागेश्वरी में विचित्र वीणा वादन। वादा कलाकार होंगे रमेश प्रेम। तबले पर इनके साथ संगत करेंगे शरीफ अहमद खां। रात 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, इस बुधवार दिनांक 13 मई 2026 को दिन में 12 बजे से हमारे विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप जनगणना 2027 के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपलब्ध रहेंगे श्री राकेश कुमार त्यागी, उपनगर आयुक्त एवं नगर निगम क्षेत्र मथुरा के जनगणना 2027 के नोडल अधिकारी। श्रोताओं, आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9422255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर जनगणना 2027 के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा बुधवार 13 मई 2026 और दोपहर 12 बजे से। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुई है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
4: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है।
3: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
4: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
6: हेलो किसान।

0: आंगनवाड़ी कार्यक्रम सुनवे बारे सभी भैया बहन को वीरेंद्र सिंह और
1: नीलमणि बहन की
0: राम राम।
1: वीरेंद्र भैया देखो, अब किसान भैया दिन रात मेहनत करे हैं, जब
0: जी।
1: जाके अब इनको लाभ मिले है ना, और इनकी सारी जो खेती बाड़ी है सब मौसम पे ही निर्भर करे है।
0: बिल्कुल।
1: बात अगर हम अपने भैया की, भैया देखो खेती की करें तो उद्यान की बात करें, उद्यान लगाए वो एक बहुत ही लाभकारी काम है। अगर शुरुआत में सही जानकारी और सावधानी ना रखी जाए तो पीछे जो है नुकसान भी उठाना पड़ सके है। जाने कछु बात है जिनको की ध्यान अपने किसान भैया को रखना पड़े है, जैसे की सबसे पहले उद्यान के लिए ऐसी भूमि को चयन करें जहाँ पानी को भराव ना हो और माटी उपजाऊ हो।
0: बिल्कुल।
1: जाके बाद जो अपने क्षेत्र की जलवायु बाकी अनुसार अच्छी और प्रमाणित किस्म के जो स्वस्थ पौधा है उनको चयन करें। रोग ग्रस्त या कमजोर पौधा कब हो उनको ना लगानी चाहिए। फिर आवे पौधा लगाए बेते पहले उचित आकार के गड्ढा तैयार करें, बिनमें सड़ी गोबर की खाद और आवश्यक उर्वरक मिलावे, है ना। तो ये सब बातें जाके पीछे अगर हम कहें तो देखो सिंचाई की उचित व्यवस्था बहुत ही जरूरी है, ज्यादा या कम पानी दोनों ही पौधान के लिए हानिकारक हुए हैं, है ना। और संग में ही जो है निराई गुड़ाई और कीट रोग नियंत्रण करते रहना चाहिए यानी। और दूसरी एक जरूरी बात, उद्यान को पशुओं से बचाने के लिए चार दीवारी और तारबंदी की व्यवस्था भी करनी
0: जरूरी है जी,
1: है ना। तो हम यही कहेंगे कि किसान भैया सही योजना, अच्छी देखभाल और वैज्ञानिक विधि को अपना के उद्यान लगावे और उन्हें लंबे समय तक अच्छा उत्पादन और अधिक लाभ मिल सके है।
0: बिल्कुल।
1: तो भैया समझ रहे होंगे जो हमारी जो अभी बात करी है उद्यान से संबंधित, तो आज का जो विषय है वीरेंद्र भैया मंगलवार है और मंगलवार के दिन भैया को बेसब्री से इंतजार रह रहे है जा कार्यक्रम को,
0: और का
1: के हेलो किसान वाणी शुरू हो और घर बैठे ही फोन के माध्यम से इनकी समस्याओं को समाधान
0: है जाए।
1: तो भैया आपको जो है आज का जो विषय है नए उद्यान लगाते समय सावधानी पे आधारित है। आपकी जो भी समस्या है 25-30-135 हमारा फोन नंबर आपको मालूम ही है।
0: बिल्कुल।
1: और मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड जरूर लगा ले मैं।
0: हाँ।
1: तो आज हमारे बीच समस्याओं को समाधान करने के लिए विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उदयभान सिंह,
0: जो कि डीन है जो हमारे महाराजा सूरजमल जो महाविद्यालय भरतपुर में, तो बहुत अच्छी विशेषज्ञता रखे हैं जो बागवानी और उद्यानिकी के संबंध में। आज उनसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह जी, और या में जो है विशेष करके ये बात पूछी जाएंगी कि भाई जो भैया नयो बाग लगाना चाह रहे हैं तो वो कैसे कैसे अपना बाग लगावें, तो सुनो भैया और आप भी शामिल हो अपने या कार्यक्रम में।
2: किसान भैया राम राम। और जैसा कि अभी हमारे बहन भैया ने बताया, आज हमारे साथ उदयमान सिंह जी बैठे हैं, मुस्करा रहे हैं, बहुत सारी जानकारी, व्यावहारिक जानकारी और ऐसी जानकारी जो, क्योंकि जब हम उद्यान लगावें, आप देखो कि पुराने लोग भी कहे कि अगर एक बार बाग लगा दियो तो वो पुस्तकों के लिए हो जाए, मतलब कई पीढ़ी उसको खाएंगी कमाएंगी और समाज के काम आवेगा। तो अगर वह में शुरुआत में कोई कमी रह जाए तो फिर बाकू पूरा करने के लिए बहुत मुश्किल आवे। तो यही वजह से कि अच्छे और नए उद्यान अगर हम लगा रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी सावधानी है जो हमें रखनी चाहिए, अब ज़्यादा मैं बीच में ना बोलूँगा। डॉक्टर साहब आपको स्वागत, और बताएं कि हमारे किसान भैया में जब तक वो हमसे फ़ोन लाइन पर जुड़े, दो नंबर हमने उन्हें बता दिए, तो एक व्यावहारिक तौर पर कौन कौन सी मोटी मोटी बातें पहले वो वाली बता दें आपको।
3: सही, आपका ये समसामयिक प्रोग्राम है ओपी सिंह जी।
2: जी,
3: गर्मी का मई जून का महीना चल रहा है, इस समय यदि हम रेखांकन करते हैं, गड्ढे तैयार करते हैं और गड्ढों की मिट्टी जो खुलती है उससे जो तेज़ धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उससे जो है कीड़े मकोड़े उनके अंडे प्यूपे सब खत्म हो जाते हैं और बीमारियों के रोगाणु या खरपतवारों के बीज भी उस तेज़ गर्मी से खत्म हो जाते हैं। इसलिए रेखांकन का सबसे उपयुक्त महीना मई जून का माना जाता है। और आप ये देखिए कि इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक तो कितनी दूरी पे पौधा लगाना है। जैसे मैं पौधे वाइज बात करूं तो आम के लिए 9 मीटर बाई 9 मीटर, आंवला या फिर बेर के लिए 8 मीटर बाई 8 मीटर, जामुन के लिए भी 9 मीटर बाई 9 मीटर, मौसमी और अमरूद के लिए 6 मीटर बाई 6 मीटर, अनार और नींबू के लिए 5 मीटर बाई 5 मीटर, करौंदा के लिए 4 मीटर बाई 4 मीटर और पपीता के लिए 2 मीटर बाई 2 मीटर। यानी कि इसका मतलब है कि मैंने कहा कि नींबू के लिए 5 मीटर बाई 5 मीटर दूरी चाहिए, तो कतार से कतार की दूरी 5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 मीटर।
2: मतलब अब ये इसमें पहली बात

0: ये हुई कि किसान भाई हमारी कौन से किस चीज का बाग लगा रहे, और उस हिसाब से लेआउट उनको बनाना
1: बनाना
0: पड़ेगा।
1: पड़ेगा भाई, क्यों? जो पौधा छोटा है उसको कम दूरी चाहिए, जो पौधा बड़ा है उसके लिए ज्यादा दूरी चाहिए। हालांकि आजकल जो नया ट्रेंड है कि हम सघन खेती भी कर सकते हैं, और सघन खेती का जब ये बात चली गई है, बहुत अच्छा आजकल ये मॉडर्न हॉर्टिकल्चर में ये आता है कि जैसे हम कहें कि ये जो अमरूद का बगीचा है वो 6 मीटर बाई 6 मीटर पे लगाते हैं, तो इसको हम 2 मीटर बाई 2 मीटर पे लगाते हैं, तो कम से कम 3 गुना लाभ बढ़ जाता है। और चेंज क्या करना है, केवल दूरी चेंज करनी है। एक साधारण सी बात है कि कोई भी पौधा आप जो लगा रहे हो, एकदम तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, वो 10 साल में जाके बड़ा होगा। तो उस 10 साल तक हम, और फिर 10 साल में भी छोड़ें, आप ये देखिए, इन जनरल ऐसा लगता है कि 6 मीटर बाई 6 मीटर की जगह 2 मीटर बाई 2 मीटर लगाए तो 3 गुने पौधे लगेंगे, ऐसा नहीं है, 9 गुने पौधे लगते हैं। 6 × 6 = 36 और 2 × 2 = 4, और 36 में 4 का भाग दें तो 9 हो जाते हैं, 9 गुने। यदि बड़ा होने के बाद में एक अमरूद का पौधा जो हमने 6 मीटर बाई 6 मीटर पर लगाया है वो 80 किलो फल देता है, और जो पौधा हमने सघन खेती में लगा वो 40 किलो भी फल देता है, तो अभी 4 × 9 360 किलो होता है, और 80 किलो यानी कि 3 गुना 4 गुना लाभ मिल
0: जी।
1: जाता है।
0: तो अब आजकल ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, कुछ ऐसी वैरायटी भी आ गई है, और या उसको प्रून करके
1: इसके लिए
0: पौधे
1: जैसे
0: क्या?
1: अब देखें, जैसे आम में आम्रपाली मल्लिका फेमस हैं, या फिर मैं अभी अमरूद की बात कर रहा था तो रेड ताइवान वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है, तो इसके लिए बौनी वैरायटी भी आ गई है
0: मतलब पौधे छोटे रख
1: आकार
0: के
1: के
0: भी
1: है
0: हम जो है
1: जैसे। हाँ बिल्कुल सही बात है
0: जी
1: ये,
0: जी जी
1: और कुछ काट सांट करके, या फिर कुछ जो है जड़ों की प्रूनिंग करके, या कुछ साइकोसेल मेलिक हाइड्रेजाइड जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं उनका प्रयोग करके एक विधा है। लेकिन साधारणतः भी करें, इन चीजों को नहीं भी करें तो कम से कम 3 गुना लाभ तो मिलना ही है।
0: जी, मतलब
1: और मैंने इसको सफल बगीचे अपने भरतपुर में वैर में कम से कम 7-8 बगीचे लगवा भी दिए हैं, और वो जो है उस तरह का लाभ ले रहे हैं।
0: मतलब उस तरह की जानकारियां और वो आ गई हैं जिनसे आज आप मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं, अगर वैज्ञानिक जानकारी और उनकी सलाह को मान करके चलते हैं,
1: चलती
0: कि
1: है
0: आप
1: तो
0: सिर्फ पुरानी जानकारी से आप घर बैठे अच्छा लाभ नहीं कमा सकते, आपको जागरूक रहना पड़ेगा, जानकार रहना पड़ेगा, और लोगों के
1: और नई
0: संपर्क
1: विधाओं
0: में।
1: को अपनाना
0: जी
1: पड़ेगा।
0: जी जी इस बीच में कुछ हमारे किसान भैया जुड़ रहे हैं, अब बताइए। हेलो हेलो
2: हेलो
0: जी,
2: हेलो,
0: हाँ भैया राधे राधे, बताओ।
2: नासिर खान बोल रहा हूँ, आप मंडियारा से? जी
0: हाँ नासिर जी, बताइए क्या समस्या है।
2: सर, समस्या ये है, मैं नींबू के पेड़ लगाना चाहता हूँ।
0: नींबू के पेड़ लगाना चाहते हो, कहाँ रहते हो आप?
2: मैं कामा तहसील में रहता हूँ।
0: कामा तहसील में,
1: देखिए नासिर जी, एक बात ध्यान रखना, ये नींबू कांटे वाला पौधा है, और साधारणतः ये सोचा जाता है कांटे वाला पौधा खारे पानी में, खारा पानी में हो जाता है। लेकिन नींबू वर्गीय पौधे, एक साधारण सी भाषा में बात करें तो जहां चना हो सकता है, दाल वाली फसल हो सकती है, वहां नींबू हो सकता है। कामा
2: हाँ,
1: में
2: हो
1: पानी
2: जाते हैं।
1: खारी है, कामा में थोड़ी सी सैलिनिटी है, तो शुरुआत में तो 5-6 साल तक तो फल दे देता है, बाद में ऊपर से नीचे की तरफ शाखाएं सूखने लग जाती हैं और वो लाभकारी नहीं रहता। इसलिए ये डिसाइड कर लेना आप कि पानी यदि मीठा है, नॉन सैलाइन वाटर है, नॉर्मल पानी है, तो निश्चित रूप से फायदेमंद है। यदि पानी खारी है, यानी कि पानी उस मिट्टी का ईसी 1.5 ईसी से ज्यादा है, तो फिर वो नहीं होगा।
0: तो डॉक्टर साहब, अब जैसे मान लो आपने कह रहे हैं कि अगर पानी खारी हो और इनकी इच्छा नींबू की है, लेकिन वो खारे पानी में नहीं चलेगा, तो फिर खारे पानी में वहाँ कौन सी ऐसी
1: देखिए, ये
0: रुकावट?
1: बहुत अच्छा, भरतपुर में हमने बहुत अच्छा डेवलप किया कामा एरिया में, बेर, आंवला। बेर तो ऐसा है कि काफी खार को झेलता है
0: हाँ, और
1: और
0: बेर
1: पानी
0: तो
1: भी नहीं
0: डी
1: चाहिए,
0: कामा के आसपास
1: होता भी बहुत है,
0: पुश्तैनी उसमें होता
1: पुश्तैनी
0: है।
1: होता है, और आजकल चिकसाना क्षेत्र में और बेर क्षेत्र में बेर बहुत डेवलप हो
0: तो
1: गया।
0: बेर और आंवला,
1: आंवला है, इवन अमरूद है, अनार है, करौंदा,
0: करौंदा
1: करौंदा बहुत अच्छा हो सकता है।
0: हो सकता है।
1: तो ऐसा नहीं है कि हमारी परिस्थितियों के लिए प्रकृति ने ऐसे पौधे दिए हैं जो खारे पानी में, खारी मिट्टी में हो सकें।
0: जी,
1: तो बाकी वो हो सकता है कामा में पानी मीठा हो, तो मैंने जैसा कि बताया 5 मीटर बाई 5 मीटर की दूरी पे, और जो वैरायटी है नींबू की वो कागजी नींबू सबसे अच्छी होती है, और इसके बाद जो है रंगपुर नींबू है, या जो है आपका बारहमासी नींबू भी है, इंदौर बीज रहित नींबू है, सबसे बढ़िया नींबू कागजी
0: जी।
1: होता
0: एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ कोई बात नहीं, कट हो गई। अब इसमें जैसे

0: आपने कहा डॉक्टर साहब कि एक, चलो नींबू की हमने ये सोच लिया कि नींबू लगाना है या आंवला लगाना है, और हमने वैरायटी भी निश्चित कर ली, लेकिन वो वैरायटी के पौधे अच्छे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये भी एक बड़ा
1: हाँ, बहुत
0: प्रश्न
1: बड़ा,
0: किसान भाई के लिए प्रश्न
1: बिल्कुल बहुत चीटिंग है, और लोग कॉमर्शियल काम करते हैं और खराब क्वालिटी के पौधे दे देते हैं। तो मेरा मानना तो, जैसे आंवला का ही पौधा लेना है, तो आंवला जैसे सबसे अच्छी वैरायटी पैदा हुई है फैजाबाद नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में,
0: जी
1: NA7, NA10, कृष्णा, कंचन, ये सब वैरायटी वहाँ की है। या फिर आंवला की मान लो आनंद वैरायटी लेना चाहे, आनंद 2, वो गुजरात में हुई है, एक बलवंत आंवला बिचपुरी में पैदा हुई है।
0: जी,
1: इसके अलावा जैसे बेर की वैरायटी लेना चाहते
0: एक
1: हैं।
0: किसान भैया डॉक्टर साहब, हेलो
2: हेलो, नमस्कार जी।
0: राधे राधे भैया, नाम बताओ।
2: हाँ, खुशीराम पाठक बोल रहा हूँ, घड़ी पे तैर, एक लाश अलीगढ़ से।
0: अच्छा, घड़ी पे तैर से खुशीराम जी, बताओ आप डॉक्टर साहब से बात करो, क्या चाहते हो?
2: हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार
1: नमस्कार जी।
2: जी, ऐसा है, नारियल के पौधे लगाने में मतलब जो है क्या क्या उसमें खाद भी चाहिए?
1: देखिए, नारियल का पौधा यहाँ नहीं लगाना चाहिए। नारियल की जो जलवायु है, कोस्टल यानी कि समुद्र के किनारे की जलवायु है, यहाँ नारियल का पौधा लग जाएगा, बढ़ जाएगा, उसमें फल भी लग जाएगा, लेकिन उसकी जो गिरी बननी चाहिए वो अच्छी नहीं बनेगी। जैसे बहुत से बादाम भी लगाते हैं, बहुत सी काली मिर्च भी लगाते हैं, इसका मैंने खूब अनुभव किया है, और ये 20 साल से मैं सुन रहा हूँ, 30 साल से मैं सुन रहा हूँ, नारियल के पौधे आप नहीं लगाएं तो अच्छा रहेगा
0: जी। मतलब हमें
1: जलवायु उपयुक्त नहीं
0: अपनी
1: है,
0: क्लाइमेट देखनी चाहिए, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे।
1: भाई, हवा में पूरे साल मॉइस्चर चाहिए, पूरी ठंड नहीं पड़नी चाहिए, यहाँ तो टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है, तो
0: उधर में फिर 45 जाता है,
1: वहां 45 जाता है, तो टेम्परेचर इसके 22 से 37 डिग्री हो, हवा में जो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो कम से कम जो है 80-90 तक हो, 100% तक हो, तो नारियल अच्छा होता है। बाकी मेरा मानना यह है कि अच्छा लाभ नारियल नहीं
0: देगा। अच्छी गिरी नहीं होगी तो सिर्फ हम पौधे उगा के क्या करेंगे। एक किसान भाई और जुड़ रहे हैं। हेलो जी, शायद हेलो, हाँ बोलो भैया,
2: बोलो। भैया कहाँ से हो रहे हो? गल पर लग गया दी है।
0: ना ना ना, सही है, आप बताओ बताओ बताओ आप।
2: सही सही लगा है।
0: हाँ सही लगा है, आप
2: से
0: अपना प्रश्न पूछो।
2: हम ये पूछना चाहते हैं पहले राधे राधे जी,
0: जी
2: कि हमारी जो भिंडी लगाई थी वो भिंडियों में काली काली पड़ जाती है।
0: अच्छा, भिंडी काली पड़ रही है डॉक्टर साहब।
1: देखो, एंथ्राक्नोज रोग जब लगता है तो काली भिंडी पड़ जाती है, पत्तियों पर भी काले धब्बे पड़ जाते हैं, और उसके लिए डायथेन M45 दवाई सर्वाधिक उपयुक्त है, और उसको जो है आप जो है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़क देंगे तो वो नहीं पड़ेगी। बाकी न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखें कि कितना खाद, कमजोर जब पौधा होता है, बैलेंस जब न्यूट्रिशन नहीं होता है तो उसमें किसी भी फसल में रोग ज्यादा लगते हैं, तो जितनी अनुमोदित मात्रा में सॉयल हेल्थ कार्ड के हिसाब से जो रिकमेंडेशन दे रखी है वो खाद उर्वरक भी दें, और जो मैंने डायथेन M45 दवाई बताई है उसका छिड़काव करें।
0: ठीक है भैया जी। अब डॉक्टर साहब, हम उद्यान की उसकी बात कर रहे थे कि भाई एक तो हम क्लाइमेट देख लें कि हमारे क्षेत्र के लिए कौन सी जो पौधा है वो उपयुक्त रहेगा, दूसरे क्या मार्केट का भी ध्यान भाइयों को रखना चाहिए
1: नहीं,
0: कि
1: मार्केट तो मुख्य है
0: हाँ
1: कि भाई
0: हम
1: जब
0: जिस चीज
1: बिकेगा ही नहीं कोई चीज तो क्या करेगा उसको उगा
0: हाँ
1: करके।
0: हाँ
1: लेकिन मार्केट में क्या है कि 3 चीजों का ध्यान रख लें किसान, तो इतनी लाभकारी है। जैसे एक मार्केट में हम ग्रेडिंग नहीं करते, और ग्रेडिंग नहीं करते तो कच्चे पक्के छोटे बड़े सब फल एक साथ जाते हैं
0: हाँ।
1: तो भाव कम मिलता है। दूसरा, पैकिंग करें भाई एक डिस्टेंट तक दूर, जैसे हमने यहां पे मान लो बेर पैदा किया, उसको मुंबई भेजना है, फल जिंदा है, उसमें रैपनिंग की सड़ने की सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो उसकी पैकिंग होके जाएगी जिससे उसको जर्क नहीं लगे उसके दौरान, तो निश्चित रूप से ग्रेडिंग पैकिंग करना अच्छे लाभ के लिए जरूरी है।
0: मतलब जो प्रोड्यूस आ गया है उसको ठीक से मार्केट में पहुंचा दें और ग्रेडिंग करें, इससे भी जो उत्पादन, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें आय बढ़ानी है,
1: आय बढ़ानी है। अच्छा, इसके अलावा
0: जी एक किसान भी जुड़ रहे हैं। हेलो
3: हेलो
0: जी, नमस्कार भैया, नाम बताओ अपना।
3: जी, मैं कन्हैया लाल बोल रहा हूँ सहार से।
0: कन्हैया लाल जी सहार से, बताइए।
3: हाँ जी, हम धान की खेती लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए साहब?
0: अच्छा, अभी तो हम वैसे उद्यान की पे बात कर रहे थे, लेकिन धान की भी यहाँ लगती है, डॉक्टर साहब कुछ बताना चाहते हैं?
1: धान में क्या है कि वास्तव में जो पौध तैयार करते हैं वो पौध इस समय अप्रैल मई महीने में हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते।

0: सकते हैं। और जो नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं उसमें आपके पास पानी जैसे कितना उपलब्ध है, बाकी जो है ऐसी वैरायटी भी हैं जो कि कम पानी में हो जाती हैं, बाकी पानी की उपलब्धता उसमें सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि बारिश नहीं भी हो रही है तो उसमें पानी देना आपको पड़ेगा।
1: जी
0: और
1: जी
0: बाकी पानी वाले इलाकों में काफी अच्छी खेती इसकी होती है, बाकी मेरा टॉपिक ये है नहीं,
1: हाँ,
0: मुझे
1: आज हम
0: जानकारी भी कम है इस बारे में।
1: आज हम उस पर बात कर रहे हैं कि जो फलदार पौधे हैं और उनके जब हम बाग लगाते हैं तो क्या सावधानी रखें। एक किसान भैया जुड़ रहे हैं। हेलो।
2: हेलो
1: हाँ भैया, राधे राधे, बताओ, नाम
2: हेलो
1: बताओ।
2: हेलो सर, नमस्कार
1: नमस्ते भैया, बताओ।
2: सर, मैं गोकुल से सुरेश बोल रहा हूँ जी।
1: हाँ, गोकुल से सुरेश, बताए भैया क्या क्या जानकारी चाहिए।
2: सर, मैं वो हल्दी लगाना चाहता हूँ,
1: हल्दी?
2: हल्दी खेती।
1: अच्छा डॉक्टर साहब।
0: नहीं, हल्दी बिल्कुल बहुत अच्छी फसल है और
1: हाँ
0: सही समय पे, क्या अप्रैल महीने, ये क्या लंबी फसल है, ये 8 महीने की फसल है। अप्रैल महीने के सर्वाधिक उपयुक्त महीना इसका अप्रैल, बाकी मई थोड़े से लेट हो गए हैं, और ये जो है जाकर के दिसंबर में जाकर के ये फसल देगी। इसके लिए वैसे सबसे अच्छे पहाड़ी एरिया जो के एक तरफ छाया जिस तरफ रहती है,
1: हाँ
0: तो ये मल्टी लेयर के लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि बगीचा है, बगीचे के नीचे यदि आप इसमें हल्दी की फसल लगाते हैं
1: हाँ
0: तो इसमें काफी अच्छा उत्पादन यहाँ पे हो सकता है। पानी जरूर इसके लिए सैलाइन पानी नहीं चाहिए, नॉर्मल पानी चाहिए। और इसकी जो वैरायटी है वो इसके पंतनगर से भी पंत 2 वैरायटी इसकी है, और इसकी जो है कोयम्बटूर से भी वैरायटी इसकी निकली हुई है, कोयम्बटूर से और इवन तमिलनाडु से भी इसकी TN4 TN5 वैरायटी है, तो उसको आप लगा सकते हैं। ज्यादा धूप इसको नहीं चाहिए, थोड़ा सा छायादार जगह
1: जी।
0: चाहिए।
1: तो इसको जैसे हम बागवानी की बात करें, डॉक्टर साहब बाग लगाने की बात करें, तो इंटरक्रॉपिंग में इसमें कर सकते
0: मल्टी लेयर में बिल्कुल से
1: हैं
0: इंटरक्रॉपिंग
1: भाई?
0: में
1: हमने बड़े
0: बेस्ट है
1: पौधे
0: ये,
1: लिए, छोटे पौधे लिए, तो
0: बिल्कुल
1: उसके
0: बिल्कुल।
1: बीच में आप हल्दी लगा
0: ये
1: सकते
0: आपने क्वेश्चन किया, आजकल ये जमाना है कि ऊंचे पौधे, मीडियम पौधे और फिर
1: हैं।
0: हल्दी अदरक, ये
1: जी।
0: निश्चित रूप से आज का ट्रेंड है कि एक ही, जैसे जंगल का रूल है ये
1: हाँ
0: कि जंगल में जो डोमिनेंट होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, बीच और फिर नीचे घास भी होती हैं, नीचे जो है बेल भी
1: हाँ
0: होती हैं, तो वो सारी प्रोसेस करने के लिए हल्दी के लिए बहुत उपयुक्त है वो
1: जी। बस
0: चीज।
1: वैसे वृक्ष क्षेत्र में हो सकती है?
0: वृक्ष क्षेत्र में हो
1: हो
0: सकती है,
1: सकती है।
0: बिल्कुल
1: बस
0: हो
1: मीठा
0: सकती है।
1: पानी चाहिए, अच्छी
0: पानी,
1: से।
0: अच्छी पानी चाहिए, बाकी कोई, क्योंकि इस दौरान पूरी दिसंबर तक ज्यादा सर्दी भी नहीं होती है, जो सर्दी पड़ती है वो 25 दिसंबर के बाद
1: जी
0: ही
1: जी
0: पड़ती है।
1: एक किसान भैया। हेलो।
2: हेलो, राधे राधे सर।
1: राधे राधे भैया, बोलो, नाम बताओ।
2: नाम अशोक बोल रहा हूँ जी।
1: अशोक कहाँ से?
2: अशोक बोल रहा हूँ, मैं मथुरा से बोल रहा हूँ, अशोक
1: मथुरा से।
2: गौतम।
1: मथुरा से बताइए, बागवानी के संबंध में आप क्या चाहते हैं?
2: ऐसा है, मैं लौकी और तोरई की और भिंडी की सब्जी बोई।
1: हाँ, लौकी, तोरई, भिंडी, ठीक है।
2: हाँ जी, अब उनमें ऐसा है गलती से नाली का पानी चला गया,
1: ओके डॉक्टर
2: अब तो वो उसमें ऐसा है, वो जली जली सी, कुछ मुरझाई सी बेल हो रही है।
1: साहब, आप बताएंगे
0: देखो,
1: समाधान?
0: नाली से भी बहुत सारे साल्ट ऐसे हो सकते हैं, नाली तो जहां से आ रहा है उसके कारण भी ये हो सकता है, तो नाली के पानी को रोक दें। और जो कोकरविट्स होते हैं, चाहे तोरई, घिया, जो है टिंडा, करेला, तरबूज, खरबूज जितने भी होते हैं, इनमें
2: जी
0: एक ही बेल पे और नर और मादा फूल अलग लगाते हैं,
2: अच्छा
0: तो
2: जी,
0: इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहला काम तो ये करें कि मतलब ये धोरे में, नाली में बोए जाते हैं ये, तो
2: अच्छा,
0: नाली से जब बेर बाहर निकलती है तो नाली के बाहर भी पानी देना पड़ेगा आपको। जैसे आपने
2: अच्छा।
0: नाली नाली में जिसमें बीज लगाया है, पौधा उगाया है, कई बार नाली का जो नाले का पानी जो दिया था उसके कारण नहीं, आपने पूरे खेत में पानी नहीं दिया, तो जो मिट्टी का टेम्परेचर है गर्मी में काफी होता है, उसके कारण भी बेलें झुलस जाती है।
1: अच्छा, मतलब
0: तो
1: कई बार हम पानी कम करने के लिए
0: तब
1: नाली में
0: केवल
1: लगा
0: नाली
1: देते
0: में ही
1: हैं, तो
0: देते हैं,
1: शुरुआत में नाली में लगाएं, लेकिन जब गर्मी ज्यादा हो रही है।
0: जब बेल बाहर निकलने लग जाए तो उसके अकॉर्डिंग पूरे खेत में पानी लगाना पड़ता है, नहीं
1: हाँ।
0: तो सॉइल टेम्परेचर के कारण चाहे जड़ों में कितना ही पानी दे लो आप, वो बेलें झुलसती ही है।
2: दौसा वो सूख रही है बेल।
0: भाई सूख रही है, तो एक कारण तो ये हो सकता है कि आपने पूरे खेत में पानी नहीं दिया हो, और दूसरा आप जो
2: अच्छा
0: नाली का पानी कह रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है कि बहुत सारा कोई जहर आ गया हो उसमें, क्योंकि लोग क्या बहा रहे हैं
1: केमिकल
0: उसमें,
1: आ
0: कौन सी
1: जाता है।
0: कौन सी
1: हाँ,
0: फैक्ट्री का पानी आ रहा है उसमें,
1: तो इसमें
0: ये पता नहीं।
1: ये थोड़ा सा जाके कृषि विभाग दिखा लें, एक एक आध बेल का वो
0: बिल्कुल
1: देखो
0: दिखा लें, या
1: है।
0: फिर मेरा नंबर इनके पास है नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे भी कोई भेज देगा,
1: हाँ
0: उसका वीडियो में देख लूंगा तो उसका अच्छे से पता चल पाएगा।
1: जी,
2: तो
1: उसका
2: इसका व्हाट्सएप कर दूंगा जोर साहब, इस नंबर
1: हाँ, नहीं इस नंबर पे नहीं है।
0: बाद में आप इसी नंबर पे मेरा नंबर ले लेना आप,
1: ठीक है?
2: ठीक है
0: बाद में।
1: हाँ, पूछ
0: और
1: लेना।
0: दूसरा क्या मैं कह रहा था कि वो नर और मादा फूल जो है अलग अलग।

0: एक स्थान पर आते हैं, तो मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें उसमें या तो जब छह गांठ की बेल हो जाए तो उसके टॉप को तोड़ दें।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: हाँ, और या फिर टू फोल्ड ही आती है एक दवाई जो खरपतवार नाशी है, उसका 1000 लीटर में 5 ग्राम मिला करके, 1000 लीटर बहुत कम मात्रा, तो उससे फिर मादा फूल ज्यादा आएंगे। वो जो है इस तरह से हम कर सकते हैं कि उसमें मादा फूल ज्यादा हो, उसका उत्पादन बढ़े। दूसरा, घिया तोरई को बीज बनने से पहले तोड़ते रहना चाहिए तो घिया ज्यादा लगेंगे। और यदि आपने बीज बन जाने दिया तो उसको पता चलता है कि तेरा संतान पैदा हो गई, वो फिर फल बनना कम कर देगा।
2: अच्छा, अच्छा।
0: इसलिए कच्ची अवस्था में तोड़ते रहे।
2: मतलब छोटे जो खाने उपयुक्त है वो तोड़ते रहे,
0: ग्राहक भी पसंद करता।
2: जी जी जी जी। अब इसमें डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि जैसे एक तो हम हो गया कि लेआउट बना लिया हमने, एक हमने पौधे की वो ले ली कि भाई कौन सा पौधा हमें लगाना है, आम लगाना है, जामुन लगाना है, करेला लगाना है, मतलब करौंदा लगाना है या आंवला लगाना है, एक वैरायटी डिसाइड कर ली कि हमने कहाँ से कौन सी वैरायटी लेनी है। इसके साथ साथ अब उसमें चूंकि कई सालों बाद पौधे लगेंगे तो बीच में भी उसकी देखभाल की जरूरत
0: है। हाँ, वो बीच में फसल, जैसे कि मान लो कि अपन ने ये मान लो कि कोई पौधा 9 मीटर बाई 9 मीटर लगाया या 6 मीटर बाई 6 मीटर पे लगाया, तो वो डिस्टेंस काफी है, तो बीच की जमीन को हम अंतरासस के रूप में प्रयोग करना चाहिए।
2: हाँ,
0: जैसे आमदनी लेने के लिए, लेकिन लेकिन उसमें एक तो अनाज वाली फसलें नहीं लें।
2: हाँ।
0: ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, जौ, ये एग्जॉस्टिव क्रॉप होती हैं, इससे जमीन कमजोर होती है, इससे मूल पौधा भी कमजोर हो जाता है। और दूसरी लंबी बढ़ने वाली फसलें जैसे ढैंचा जो है काफी जमीन को मजबूत करती है।
2: किसान किसान भैया जुड़ रहे हैं। हेलो भैया। हाँ
3: हेलो।
2: हाँ जी बोलो। नाम हाँ बोलो, नाम बताओ।
3: आकाश बोल रहे हैं जी, मोरे गांव से। भाई सर नमस्ते।
2: नमस्ते, बताओ समस्या बताओ आकाश जी।
3: सर सर हमने पेड़ लगाया था सहतूत के।
2: सहतूत के?
3: हाँ जी सर।
2: ठीक है। अब
3: और ये सामने के बरसातों में तो खिल जाते, वो हरे भरे हो जाते हैं।
2: हाँ।
3: इसके बाद सूख के जाते हैं सर।
2: कहाँ से बोल रहे हो?
3: जो मोरे गांव से।
0: देखो वो सूखना नहीं चाहिए।
2: हाँ।
0: वो क्यों सूख? एक तो ये हो सकता है कि आपने पेड़ लगाया हो या मकान की या दूसरे पौधों की छाया आती हो, 12 घंटे जितने भी घंटे धूप निकलती है उतनी धूप ही नहीं रहती हो। दूसरा, उसमें जहाँ लगाया हो वहाँ पे रॉक आ गई हो, नीचे जड़ें नहीं फैल पा रही हो। तीसरा ये है कि उसमें सैलिनिटी यानी खारपन हो पानी में, मिट्टी में, इन कारणों से वो ऐसा होता होगा, या फिर कोई कीट रोगी ज्यादा लग रहे हो उसमें, कोई गिरार ज्यादा लग गई हो। तो यदि इन कारणों में से कोई कारण हो तो जब तक उसको दूर नहीं करेंगे, अब जैसे मान लो कि पेड़ आपने लगा दिया दीवार के पास में या बड़े पेड़ के पास में, छाया आ रही हो उसके पास में, इसका क्या अंजाम है? जितना मिल रहा है उतना लेते रहो, इन कारणों से वो पेड़।
2: इसीलिए लेआउट की बात हम कर रहे हैं कि बाग हम लगा रहे हैं तो उसके आसपास धूप आनी चाहिए,
0: खुला
2: होना चाहिए। और जो इसमें जैसे बाड़बंदी होती है डॉक्टर साहब कि भाई बाग लगाया लेकिन हमें पशुओं से सुरक्षा करनी।
0: देखो
2: है।
0: ये तो चीजें बेसिक हैं।
2: जी जी।
0: कि वास्तव में फेंसिंग, फेंसिंग वो भी अच्छी फेंसिंग यानी कम से कम 7 फुट ऊंची फेंसिंग, और जिसमें

और अब यही किसान कई आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। यह कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब ये सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

0: ये थे अनूप द्रोटा और साथी फिल्म थी अग्नि। इसी के साथ ही भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम, यह कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में लोक कथा जाको मन पवित्र बाको ईश्वर मित्र। कथाकार हैं नितिन अग्रवाल।
1: रत्नसेन नाम के एक व्यापारी को बहुत नाम होता हो। बाको व्यापार देश में ही नाए अपितु विदेशन में भी खूब हुआ करतो। कई देशन में बाकी व्यापार फैलो भयो, जा कारण बाके पास अपने समुद्री जहाज आते। बा समय परिवहन के इतने आधुनिक साधन नाए आते, जा कारण रत्नसेन अपने जहाजन ते ही विदेश यात्रा व्यापार के लिए कियो करतो। रत्नसेन जितनो अच्छो व्यापारी होतो उतने ही अच्छो इंसान भी हो। वो अपने सभी कर्मचारियों को अपने परिवार के सदस्यों की भांति समझो करतो। उनके सभी सुख दुख में बराबरी की हिस्सेदारी निभाओ करतो। रत्नसेन के जा व्यवहार की प्रशंसा बाके कर्मचारियों के साथ साथ बाके व्यापारी मित्र भी कियो करते। वो अपने साथियों से अक्सर कहो करतो, जाको मन पवित्र बाको ईश्वर भी मित्र। एक बार की बात हते कि रत्नसेन एक शुभ मुहूर्त में देख के अपने समुद्री जहाज को माल से भर के व्यापार के लिए दूसरे देश को चल दियो। हवा भी अनुकूल हती। रत्नसेन को उम्मीद हती कि ऐसा अनुकूल मौसम रहो तो वो जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा।

और जल्दी जल्दी व्यापार करके शीघ्र ही अपने घर वापस आ जाएगा। जहाज के सभी कर्मचारी बेहद खुश थे कि मौसम साफ है और हवा भी अनुकूल, सो वो गीत और मनोरंजन करते हुए जहाज पर सफर कर रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य सोचे कछु और है और होवे कछु और है। ऐसो ही कछु रत्नसेन के जहाज के साथ भयो। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और देखत देखत मूसलाधार बारिश हेवे लगी। ऐसो लगो कि जैसे आज बादल अपनो सारो पानी खाली कर देंगे। हवाएं भी बड़ी प्रचंड वेग ते बहवे लगी। रत्नसेन को वो समुद्री विशालकाय जहाज समुद्र की तूफानी लहरन में कागज की नाव की भांति डोलवे लगो। रत्नसेन और बाकी सभी कर्मचारी प्रकृति की जा विशाल लीला को देख के एकदम घबरा गए। अचानक जहाज के तले में एक छेद है गयो, जा कारण जहाज के अंदर पानी भरवे लगो। एक तो ऊपर मूसलाधार बारिश, दूसरों जहाज में छेद हैवे के कारण जहाज पानी में डूबे लगो। तो रत्नसेन ने जहाज को भार कम करवे के लिए कर्मचारियों ते सामान को समुद्र में फेंकवे के लिए कह दियो। समुद्र में सामान फेंकवे के बावजूद भी जब जहाज को डूबना बंद ना भयो, तो रत्नसेन ने अपने सभी कर्मचारियों ते बचवे के लिए समुद्र में कूदवे की आज्ञा दे दी और खुद भी समुद्र ते कूद पड़ो। कछु देर में ही रत्नसेन के सभी साथी धीरे धीरे बाकी नजरन ते ओझल है गए, या समझो कि समुद्र में डूब गए। लेकिन भगवान जाकू बचनो चावे बाके ताई को ना कोई व्यवस्था कर दे। ऐसो ही रत्नसेन के साथ भयो। जब रत्नसेन भी डूबे लगो, तभी बाकू एक लकड़ी को तख्ता बगल में तैरते भयो मिल गयो। रत्नसेन ने बाकू कसके पकड़ लियो और बातें चपक के लहरन के थपेड़न को सहतो रहो। धीरे धीरे समुद्री तूफान शांत है गयो, जा कारण समुद्री लहरें भी सामान्य है गईं। तभी अचानक रत्नसेन को के चिल्लावे की आवाज सुनाई पड़ी। बाने मुड़ के देखो कि बाके पास बाको एक नौकर केदार भी लकड़ी के एक बड़े टुकड़े को पकड़े हुए तैर रहे होते। जे देख के रत्नसेन की जान में जान आ गई। सोचा चलो एक ते दो भले। इधर यही हाल केदार को भी भयो। दोनों तैरते तैरते किनारे पे लग गए। केदार बोलो, मालिक भगवान ने जे कहा कियो, जहाज डूब गयो, सभी कर्मचारी मर गए, सब लुट गयो और हम बर्बाद है गए। जे तो प्रभु ने बहुत ही अन्याय कियो हमारे साथ। रत्नसेन बोलो, नाये केदार नाये, जाको मन पवित्र बाको ईश्वर भी मित्र होवे। जे बात तेने मेरे मुँह ते हजारन बार सुनी होगी। अरे देख ईश्वर की कितेक हम पे दोन पे कृपा आते कि केवल हम दो ही जीवित बचे हते। देख प्रभु आगे हमें का लीला दिखावे। ऐसो कह के रत्नसेन और केदार दोनों पैदल पैदल नगर की ओर चल दिए कि अचानक जंगल में एक पेड़ की टहनी रत्नसेन की आंखों में लग गई और रत्नसेन की आंखों से खून बहवे लगो। अब तो केदार और दुखी है गयो। बोलो प्रभु अभी हमारी कितेक परीक्षा और लेगो। रत्नसेन को दर्द तो बहुत भयो, लेकिन बाकू कछु दुख नाए हतो। बोलो अंधा ही तो भयो हूँ, मरो तो ना हूँ, देख भगवान मेरे साथ है कि नाए। केदार अपने मालिक की बात सुनके कछु नाए बोलो। धीरे धीरे दोनों चल के शहर के नज़दीक आ गए। चलते चलते रात है गई तो वो शहर के बाहर एक धर्मशाला में टिक गई। सुबह हैवे पर रत्नसेन ने अपने हाथ की उंगली ते अंगूठी उतार के केदार को दई और बोलो, ले जाकू ले जाए के बाजार में बेचा। कीमती अंगूठी आती तो अच्छे दाम भी मिल जावेंगे। कछु रिपन ते भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे, बाकी रुपया घर लौटा के काम आवेगो। केदार अंगूठी लेकर बाजार की ओर चल दियो। अंगूठी को बेच के बाकू काफी दाम प्राप्त भयो तो केदार के मन में लालच आ गयो और वो रत्नसेन के पास नाए लौट के कहूँ और चलो गयो। इधर रत्नसेन भूखो प्यासो अपने नौकर केदार की प्रतीक्षा कर रहे हो, पर केदार को ना आनो सो वो नाए आयो तो रत्नसेन बड़ो दुखी भयो। तभी अचानक वहां ते गुजरते भाई एक सज्जन पुरुष की निगाह रत्नसेन पे पड़ी। रत्नसेन को देख के मन में सोचो कि जे को भलो आदमी होते और दुर्भाग्यवश जे जहां दुखी बैठो होते, सो वो रत्नसेन को अपने नगर के राजा के पास ले गयो। राजा ने रत्नसेन की सारी त्रासदी सुनी तो बाकू भी बहुत दुख भयो। बाने रत्नसेन को अपने महल में रहवे की कह दई। लेकिन रत्नसेन बोलो, महाराज मैं एक व्यापारी हूँ,

0: जा बात हूँ मैं आपको आभारी हूँ, लेकिन मैं आपको हमेशा अतिथि बन के नाए रहना चाहूँगा। मैं चाहूँ कि आप एक सलाहकार के रूप में मेरी सलाह को लें। राजा रत्नसेन की बातन को सुन के अत्यंत प्रसन्न भयो और बैद्यनाथ बाकू अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लियो। रत्नसेन राजा को कई मौक़ों पर उचित सलाह दियो करतो तो जाते राजा बहुत खुश होतो। एक टाइम राजा ने रत्नसेन ते बिना पूछे हीरे की अंगूठी खरीद ली। रत्नसेन को पतो चलो तो माने राजा के पास जाके कही, महाराज आपने अपना वचन नाए निभाए होते तो कारण मैं अब आपके पास नाए रुक पाऊंगा। राजा को अपनी गलती को एहसास है, माने रत्नसेन की अंगूठी दिखाते हुए पूछो, ये अंगूठी कैसी है? रत्नसेन अंगूठी के हाथ फिरा कर बोलो, महाराज जा अंगूठी का हीरा तो नकली है, आप चाहो तो आप को जौहरी को दिखा दो। राजा ने फौरन अपने जौहरी को बुलवायो। जौहरी ने भी रत्नसेन की बात को ही समर्थन कर दियो। राजा बोलो, हे रत्नसेन अब मैं आगे ते ऐसी गलती कबू ना करूँगो। कछु दिनन बाद राजा के दरबार में एक तपस्वी पधारो तो राजा की सेवा भावना को देख के अत्यंत प्रसन्न भयो। ता कारण राजा ते बोलो, हे राजा बता मैं तेरी की अभिलाषा पूर्ण कैसे करूँ? राजा दयालु हो तो बाकू कानू बात की कोनू कमी नाए नहीं, लेकिन बाकू रत्नसेन के प्रति हमदर्दी अति तो वो सोचतो ही ऐसे भले व ज्ञानी आदमी के साथ कैसा अनुचित भयो है, सो आज अच्छो भयो। तो राजा ने कहा, महात्मा मेरे एक सलाहकार हते, उनकी आंखन में कष्ट थे, यदि आप मुए कृपा करना चाह रहे थे तो उनकी आंखन ते ठीक कर दो। तपस्वी महात्मा ने रत्नसेन की आंखों पर जैसे ही हाथ फेरो सो ही रत्नसेन की आंखें सही है गईं और बाकू दिखवे लगो। अब तो रत्नसेन बात की प्रसन्न भयो और ईश्वर को धन्यवाद देवे लगो और बोलो, सत्य कहा है, जाको मन पवित्र बाको ईश्वर भी मित्र।
1: अभी आपने ये ब्रज लोक कथा सुनी, जाको मन पवित्र बाको ईश्वर मित्र। कथाकार है नितिन अग्रवाल और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा में एक लोकगीत भारती शर्मा के स्वर में।

भारती शर्मा के गाया लोकगीत के संग आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम। प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने बताया है कि

0: सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी और जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगी। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, सोने की खरीद को टाले।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज असम में नव निर्वाचित एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मंत्रिमंडल के नव नियुक्त सदस्यों को उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में आज यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों का उपचार जारी है। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। चंदौली में बीते 24 घंटों में 3 लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति को बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए अपराधी ने 24 घंटों में ट्रेन में यात्रा करने वाले 2 लोगों और अस्पताल में भर्ती एक महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि पूछताछ में अपराधी ने तीनों हत्याओं की बात कबूल की थी। ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में आस्था और सेवा का संगम दिखाई दिया। जनपदों के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के अवसर पर रामकोट परिक्रमा में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखने को मिली। बिजनौर में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रसाद बांटा। लखनऊ में भी बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अलीगंज के पुराने और नए हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर

0: दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर समेत अन्य मंदिरों को बड़े मंगल पर भव्य रूप से सजाया गया है। इन मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया। दिन में तेज धूप के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नजर नहीं आई। शहर भर में सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों ने जगह जगह भंडारों का आयोजन कर सेवा की परंपरा निभाई। भंडारों में प्रसाद वितरण के साथ शीतल पेय और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं ने भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में आवागमन बाधित हो गया। एक रिपोर्ट।
2: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई, जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। आज दोपहर जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
1: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 24 घंटों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का अनुमान है।
3: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहां धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट में हल्का बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, उसका सबब जारी रहेगा कल के लिए। उसके बाद मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
1: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला कौशल विकास संस्थान है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला कौशल विकास योजना के अंतर्गत रामपुर में 15 दिवसीय विशेष शिल्पकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में माटी कला कार्य से जुड़े कुम्हार और परंपरागत कारीगरों को आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इच्छुक कारीगर 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। सीबीआई जांच के आदेश। नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम। प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
5: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रोताओं के अनुरोध के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदप्री और जयपाल यादव। जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। बिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, हर्ष आहूजा और उनके मित्रगण।

उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी, शिवन्या और अन्नू गोस्वामी। आप हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। गांव गोपी की नगरिया से मिट्ठालाल सारस्वत, नेहा नीरज निकेता और इनके माता पिता। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। जिला मगड़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। गांव नगलापुला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, राधिका, पवन, करण, भोला, नमन और इनके परिवार के सभी सदस्य। गोकुल चौक नंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, बुल्की वाली और फालना झा और उनके परिवारीजन। गांव नौघरा से कोमल मास्टर, यशोदा, सूरज, रोहित, चंचल, संजना, शिवानी और इनके माता पिता। गांव कुमोद वन से रमेश चंद्र सेन, सुनील, रचना गब्बर और परिवारीजन। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, सोनिया, शिवांश, चुन्ना और इनके माता पिता। ये संदेश हमें भेजा है दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले ने। शेरी वडने रकोला से अरुणा, बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। आप हैं नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनास, सलमा, असद, अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी। सदर बाजार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, बसंतराव भोजने और निवृत्ति आडोकार। फजल्लिका पंजाब से क्रियांश बगड़िया, योगेश, ओम गर्मा, रजत और मनीष चौधरी। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और उनके परिवारीजन। आइए सुनते हैं आप सबके लिए किशोर कुमार की आवाज़ में एक गीत, फिल्म का नाम है अमर प्रेम। शब्दकार आनंद बख्शी, संगीत निर्देशक राहुल देव बर्मन।

किशोर कुमार की आवाज में अमर प्रेम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अब जो हमें संदेश मिले उनके नाम हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, ज्योति और सक्षम शाक्य। लोहा गिरहीट से भाई यशवंत साहू, रेशमिया, हर्ष और अंश साहू। सेक्टर 67 मोहली मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, ईशान और कार्तिक सैनी। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, तनुजा और ईशांत देवांगन। भावी नीमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंधली, वैष्णवी, उषा और युवराज गोंधली। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमला बंछोर। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा।

साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया और उनके परिवारीजन। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश, बल्लू निषाद और तरुण यादव। आप हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल, डुग्गू, भाविका सिक्का। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चेतन मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव विधान खुराना। आप हैं नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। आइए सुनते हैं आप सबके लिए समीर की शब्द रचना, संगीत निर्देशक आनंद राज आनंद, गायक स्वर श्वेता शेट्टी, हंस और साथियों के, फिल्म का नाम बिच्छू।

ये थे हंस राज हंस, श्वेता शेट्टी और साथी फिल्म थी बिच्छू। अब आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह और साथियों को, फिल्म है ओम शांति ओम, गीत जावेद अख्तर का, संगीत निर्देशक विशाल शेखर। पसंद भेजने वाले श्रोता गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, कंचन कुसुम, जूली और जगदीश जौहरी। जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास। अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोड़े, योगिता प्रियाली, पार्थ और उनके परिवारीजन। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। करणवीर हाउस बूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपेंद्र वीरेंद्र, कुलदीप सिमु, एकम दमन और अभिजोत। मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत और चुलबुल रानी। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां। सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमाक्ष। शाहनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी।

राम लखन इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। गीतानंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमें जो संदेश मिले उनके नाम हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले, जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता, निहारिका, सुशांत और सुरेश चौरसिया, मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हिंश कुमार चंदन, नगलाखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल शर्मा, आप हैं मोताला महाराष्ट्र से राज गवई, राज वीर गवई, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा,

गांधीबाद अंकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय और उनके परिवारीजन, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलूफर फातिमा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान और पूजा परिहार, नेवासा कुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, पोपल घट, माया, शिवांश, चंद्रकला, देवीदास, हरिभाऊ बिडवे, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, गडकीनगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता लोखंडे और लोखंडे परिवार के सभी सदस्य, नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा, जिला वारंगल से मोहम्मद ख्वाजा रिजोद्दीन, मोहम्मद ख्वाजा फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया, गमरिया जमशेदपुर से रोहन जसवाल, आर जसवाल और उनके परिवारीजन। और अब इसी के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये थे कुमार सानू, अलका याग्निक और साथी। फिल्म थी प्यार दीवाना होता है। गीत मदन पाल का था, संगीत निर्देशक थे बाबुल बोस। अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ये संदेश।

और श्रोताओं, फिल्म संगीत में अब आनंद लेते हैं। इस गीत का फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। गायक स्वर कुमार सानू और अलका याग्निक के हैं। गीत समीर का, संगीत निर्देशक जतिन ललित।

0: ये थे मनन उदास, अलका याग्निक और साथी। फिल्म थी खलनायक। गीत आनंद बख्शी, कथा संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, इस बुधवार दिनांक 13 मई 2026 को दिन में 12 बजे से हमारे विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप जनगणना 2027 के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपलब्ध रहेंगे श्री राकेश कुमार त्यागी, उपनगर आयुक्त एवं नगर निगम क्षेत्र मथुरा के जनगणना 2027 के नोडल अधिकारी। श्रोताओं, आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 12 22 25 500

75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर जनगणना 2027 के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा बुधवार यानी कल 13 मई 2026 दोपहर 12 बजे से। और आइए सुनते हैं देश गान।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा। सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: RBI कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

समवेत स्वरों में अभी आपने सुनी कुछ देशभक्ति परक रचनाएं। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी सुनते कार्यक्रम एक ही फिल्म से, फिल्म है दे धनाधन। पहले सुनिए इस फिल्म में राहत फतेह अली खां और साथियों को।

0: ये थे राहत फतेह अली खां और साथी, और यही सुनते हैं मानक और सेलेनिया की आवाज में ये गीत।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा।

मीका सिंह और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी दे धना धन। इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे प्रीतम। FM 102.2 मेगा हर्स पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दिया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट, 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया।

के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित

0: सप्ताह खत्म होते ही उसे तत्काल पेमेंट होना चाहिए, इस तरीके की तैयारियां। और प्लस ये कि आप एक तैयारी इस लिहाज से करते हैं कि हमें किस तरीके के कंस्ट्रक्शंस करने हैं, क्योंकि इसमें पंचायतों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, बहुत सारी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उसको इसमें समाहित किया जाना है, तो इस तरीके की तैयारी की बात थी। देखिए अदरवाइज तो क्या है, 2005 से ही ये योजना चल रही थी तो चल ही रही थी, जो बदलाव हुए उसको देखते हुए जो तैयारी राज्यों को करनी है, उस लिहाज से जो ग्रामीण विकास मंत्री ने जो बात कही, मुझे वही लगता है इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है।
1: 1 जुलाई से इस तरह की योजना लागू हो रही है और इसमें जिस तरह से आपने भी बताया कि इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, नए कामों को भी, और साथ ही साथ समय से भुगतान को सुनिश्चित किया गया है, और अगर भुगतान अगर समय से नहीं होता तो क्या किसी तरीके का उनको हर्जाना भी मिलने की इसमें कुछ प्रावधान है?
0: जी बिल्कुल, ये अच्छी बात इसमें है, क्योंकि देखिए जो पुराने रिकॉर्ड जो बताते हैं मनरेगा के टाइम से जो चलती रही थी बात, उसमें ये समस्या शुरुआत से आ रही थी कि काम कर लिया भुगतान नहीं हो रहा है, महीनों महीनों पड़े हुए हैं, और फिर देने के लिए जो है सो मजदूर को रिश्वत देनी पड़ रही है, इस तरीके की समस्या। तो इसमें बाकायदा ये इंतजाम किया गया, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में होगा ना कि आपने आज से काम शुरू किया और अगले 20 दिन तक पहले काम किया, ये रिकॉर्ड में है, और उसमें प्रोविजन है कि आपको जो है कार्य संपन्न होने के बाद मैक्सिमम जो है 15 डेज का दिया गया है कि उसके बीच में आपको भुगतान करना है, अगर आप नहीं करते हैं तो पर डे के हिसाब से हर्जाना उसमें जोड़ना होगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि तभी तंत्र ज्यादा मजबूती से काम कर पाता है जब उसमें एक जवाबदेही तय कर दी जाती है, तो यहाँ जवाबदेही की गई है।
1: जवाबदेही की आपने बात करी तो इस बारे में भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ जानकारी दी है।
2: परीक्षित भारत जी राम जी के अंतर्गत रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने ही अपने बजट में 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। राज्यों ने भी अपने अपने बजट में विकसित भारत जी राम जी को लागू करने के लिए प्रावधान किया है, और केंद्र और राज्यों की कुल राशि अगर जोड़ ली जाए तो 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। मजदूरों को भुगतान DBT के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर में जो अकाउंट है उसमें किया जाएगा। कोशिश होगी कि 3 दिन के अंदर हो, लेकिन अधिकतम 15 दिन के अंदर प्रक्रियाएं पूरी करके उनके खाते में पैसा आ जाए। 15 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं आया तो हमारे मजदूर भाई बहन विलंबित भुगतान के पात्र भी होंगे, जो देरी से देंगे तो उस पर एक निश्चित राशि अलग से देनी पड़ेगी, और मांगने पर अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा।
1: जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि अगर मांगने पर रोजगार नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कोई संशय की गुंजाइश तो बनती नहीं है, ये योजना पहले की योजना से किस मायने में अलग देखते हैं आप?
0: 2-3 बड़े अंतर हैं अगर सिर्फ प्रावधान की बात करें। प्रावधान की सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर उसमें 100 दिन की गारंटी थी तो इसमें 125 दिन की गारंटी है, और राज्यों को ये तय करने का अधिकार दिया गया कि आप कौन सा लीन पीरियड मानते हैं और कौन सा ऐसा पीरियड मानते हैं जिसमें काम नहीं दिया जा सकता, ये दोनों चीजें हैं उसमें। रेनी सीजन है, अब पता चला उस बीच में कोई रोजगार मांगने आ जाए तो कैसे देंगे आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होना है वहां पर, तो इस तरीके की छूट भी है राज्यों को। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि ये थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी कई जगहों से कि काम मांगने पर भी काम नहीं मिलता था, क्यों? क्योंकि इंतजार करवाते थे वो जो जिलाधिकारी होते थे, वो ये देखते थे कि भाई अभी काम शुरू करना है तो फिलहाल इसको टाल कर रखो, जो एक होता है ना कि फिलहाल आप इसको नजरअंदाज करो, फिर कोई काम शुरू होगा तो फिर महीने भर बाद 45 दिनों बाद एक कोई काम शुरू हो रहा है तो उसमें जोड़ने की कोशिश होती थी। इसमें जो अच्छी बात है नई स्कीम में क्या है कि विभिन्न योजनाओं के तहत बहुत सारे कार्य राज्य सरकारों के भी चल रहे होते हैं, गांव में हॉस्पिटल बन रहे हैं, कोई और काम हो रहा है, बहुत तरीके के काम, कोई तालाब खुदाई की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको इससे जोड़ा जा सकता है। जो इन्होंने बात कही कि केंद्र और राज्यों के पैसे मिला करके केंद्र ने 95,000 करोड़ रुपीज का इसमें प्रोविजन किया है, और राज्यों की ओर से जो 40% की बात थी उसको जोड़ करके उन्होंने वो कहा। अब इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति जो अनस्किल्ड लेबर जिसकी बात हम करते हैं, क्योंकि इसमें अनस्किल्ड लेबर को ही मिलता है, वो कोई काम मांगे और उसे काम नहीं दिया जा पाए, मुझे ऐसी कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है। फिर भी अगर कहीं इस तरीके की स्थिति होती है तो मुझे लगता है वहां जरूर जानबूझकर लापरवाही हो रही है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि बदलाव दिखेगा मुझे लगता है।
1: जी, क्या इसमें राज्य सरकार या पंचायत के स्तर पे भी जो कुछ कार्य होते थे उसमें इसमें समाहित किया गया है उनको, और जिससे कि आपने अभी जैसे बताया कि बहुत सारे कार्य अलग अलग तरीके से चलते रहते थे लेकिन सबको एक समाहित करके जिसमें कि

0: धन का आवंटन की कमी ना आए, क्योंकि एक बड़ा भाग इसमें बजट में भी इसके लिए प्रस्तुत किया गया है।
1: यही बात जो राज्य विरोध कर रहे थे ऐसा, उनको यही समझाने की कोशिश हुई थी कि 40% ये आप पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ रहा है, अगर कोई भी निर्माण हो रहा है राज्य में तो वो राज्य के फायदे के लिए है या नहीं, तो राज्य के लिए फायदे के है तो राज्य उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं करेंगे, राज्य के लोगों के फायदे के लिए है कि नहीं कि उन्हें रोजगार मिलेगा तो फिर राज्यों की हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी और जवाबदेही ये दोनों चीज इसमें समाहित किया गया है, मुझे जिससे मुझे लगता है ये ज्यादा प्रभावी होगा, जमीन पर ये दिखना शुरू होगा।
0: जी, इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एक बड़ी धनराशि इसके लिए रखी गई है और इसमें कौन कौन से कार्य कराए जा सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी दी है।
2: 1,51,000 करोड़ से ज्यादा की विशाल धनराशि से गांव में इंफ्रा के सारे काम व्यापक पैमाने पर होंगे, जल संरक्षण के काम, गांव में अधोसंरचना के काम, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, खेत, सड़क, जो जरूरी है सब किए जा सकेंगे। आजीविका मूलक काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी हो, FPOs हो, उनके लिए वर्किंग शेड जैसी कई अधोसंरचनाएं भी बनाई जा सकेंगी, और प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए भी संरचनाएं जैसे रिटेनिंग वाल वगैरह अगर नदी के किनारे कोई गांव है या जहाँ पानी भरता है तो वैसे काम भी लिए जा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी साथी है उनको पर्याप्त और समय पर वेतन का भुगतान हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय को भी बढ़ा के 6 से 9% कर दिया गया है। मजदूरों की जिंदगी में एक नए सवेरे का आगाज हो रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का पूरा करने में यह योजना मील का पत्थर साबित होगा।
0: जैसे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित गांव बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या गांव के आसपास ही उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, इसके लिए समर्पित होगा, या उसमें कहीं दूरी का भी कोई प्रावधान नहीं है?
1: जो इसकी मंशा है वो यही है कि गांव के आसपास जो जहां के रहने वाले हैं उसके आसपास ही रोजगार मुहैया हो, और चूंकि बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहे होते हैं हर जगह, कार्य और नए शुरू किए जा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बात कही कि जल संरक्षण, अब जल संरक्षण आज देश के की प्राथमिकता में शामिल है तो जल संरक्षण को सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा एक खूबसूरत बात इसमें जोड़ी गई है कि आपदा से निपटने की तैयारी। अब देखिए आपदा से निपटने की तैयारी कई मिनिस्ट्री के लेवल पे चल रही है जिसमें होम मिनिस्ट्री भी शामिल है और उसमें बहुत सारे मिनिस्ट्री शामिल है, उसमें वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री भी शामिल है, केंद्र से लेकर के राज्य तक, यानी एक पूरे सहयोग की बात होगी। हर मिनिस्ट्री केंद्र से लेकर के राज्य तक एक दूसरे से सहयोग करके ऐसी अधोसंरचना का, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा होगा जो स्थायी होगा और वो हमेशा के लिए देश के काम आएगा, तो जाहिर तौर पर उसमें गांव तो शामिल होंगे ही। आप ये मान के चलिए कि अधिकतर जो इसमें लाभ मिलना है वो गांव को मिलना है, शहरों में तो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, गांव में ही समस्या सबसे ज्यादा खड़ी होती है जहां राज्य सरकार भी कई बार हिचकिचाती है और केंद्र सरकार से जो पैसे जा रहे हैं वो कई बार वो खर्च नहीं हो पाते हैं ढंग से क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस स्कीम के जरिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा गाँव को होगा, और इसीलिए बात हो रही है ना कि गाँव, हम लोग तो हमेशा से बोलते रहे कि भारत गाँव का देश है, बचपन से हम लोग ये पढ़ते भी रहे हैं, गाँव विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, यही इसकी मंशा है।
0: और शहरों पे भी जो
1: जी
0: ग्रामीण का जो बोझ होता है, अचानक से शहरों पे शहरीकरण का बोझ है, शायद उसको भी कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र का भी विस्तार होगा। एक महत्वपूर्ण जो मैं इसमें बात देख रहा था कि 5 किलोमीटर से अगर दूर होगा कोई कार्यस्थल, तो उसके लिए मजदूरों को कुछ अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा, ये शायद इस योजना को काफी आकर्षक बनाता है।
1: जी बिल्कुल, अब अगर कोई गांव का एक मजदूर आप उसे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक काम दे रहे हैं और दिन भर की दिहाड़ी के हिसाब से, जो चूंकि इसमें मिनिमम वेजेस का ही ये एक हिसाब होता है,
0: जी
1: उस पे तो वो बहुत आकर्षक कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात देखिए, जो पहली योजना थी मनरेगा उसमें भी ये बात थी कि उस घर के आसपास, लेकिन उसमें कोई एक डिस्टेंस को डिमार्केट नहीं किया गया था कि हाँ 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो आसपास आप कुछ भी बोल सकते थे, 10 किलोमीटर भी बोल सकते थे। तो ये बताना कि भाई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में, हम ये बहुत आकर्षक बनाता है। तो एक तो 125 दिन की गारंटी, दूसरा पेनल्टी अगर उनको समय पर भुगतान नहीं किया जाता है उनका जो वेतन है, और तीसरा गांव के बिल्कुल आसपास, ये तीनों चीजें हैं जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाएगी।
0: जी, क्योंकि ये एक अधिनियम ऐसा है जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं का भी समन्वय है, तो एकल योजना बहुवित्त पोषण दृष्टिकोण को इससे काफी बढ़ावा मिल

0: हुआ नजर आता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि राज्य सरकार पे अलग योजनाएं चल रही हैं उसी मतलब की, और केंद्र सरकार भी इसी तरह की कोई योजना चला रही है, और शायद गांव के लेवल, पंचायत लेवल पे भी, स्थानीय स्तर पे भी इस तरह की कभी कभी योजनाएं आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समावेशीकरण हो जाएगा तो उसमें बेहतर होगा कि एक तरह की योजना जिसकी कि खासतौर पर जरूरत है ग्राम के क्षेत्रों को, उसका पूरा भरपूर लाभ मिल सके।
1: बिल्कुल यही मंशा है, कन्वर्जेंस। जितनी स्कीम चल रही है उसका कन्वर्जेंस होना चाहिए, तभी
0: अच्छा,
1: क्या है कि आप पैसे को सही तरीके से खर्च कर पाएंगे और सही तरीके से निर्माण भी हो पाएगा। ये बहुत जरूरी इसका हिस्सा था और वही जरूरी है देश के लिए हर तरीके से।
0: चलिए तो मोटे तौर पे ये मान लिया जाए कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार मिलेगा, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य इसमें लागू किए जा सकेंगे। 100 दिन के मुकाबले 125 दिन का रोजगार इसमें सुनिश्चित किया गया है, और साथ ही साथ भुगतान भी समय पर मिले इसकी गारंटी भी की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो शायद इस योजना को पहली योजना से ज़्यादा आकर्षक बनाती हैं, और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी तय करती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। आशुतोष जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: मंथन जिस तरह कार्यक्रम खेल दर्पण,
3: श्रोताओं नमस्कार। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ देवराज। श्रोताओं, यूं तो क्रिकेट किसी भी फॉर्मेट में खेला जाए, ये खेल सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, और न केवल आकर्षित करता है बल्कि लोग इसे दीवानगी की हद तक पसंद करते हैं। और जब बात IPL की होती है तो भारत में ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मनोरंजक और व्यावसायिक मंच बनता है। ये टूर्नामेंट युवा भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के साथ खेलने, आर्थिक मजबूती और खेल को ग्लैमर के साथ जोड़कर वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन करने का अवसर प्रदान करता है। IPL न केवल क्रिकेट प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करता है बल्कि पर्यटन, खान पान, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में भारी राजस्व उत्पन्न करता है। ये भी कहा जा सकता है कि ये केवल क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि भारत में क्रिकेट की संस्कृति को बदलने वाली एक व्यावसायिक क्रांति है। क्यों है लोगों में और खिलाड़ियों में IPL के प्रति इतना जुनून, और इसका क्या महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में, आइए जानते हैं शरद श्रीवास्तव से।
4: भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग आज की तारीख में न सिर्फ क्रिकेट बल्कि पूरे खेल जगत की एक बेहद लोकप्रिय और चर्चित इवेंट बन चुकी है, जिस पर पूरी दुनिया की उत्सुकता भरी निगाहें टिकी रहती हैं। और महज भारतीय क्रिकेट प्रेमी ही नहीं, पूरे क्रिकेट जगत में सभी खेल जानकार, विशेषज्ञ, पूर्व खिलाड़ी तथा आम खेल प्रेमियों के मध्य इस वक्त यदि चर्चा का कोई सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है तो वह IPL ही है। वर्ष 2008 में अपने प्रारंभ के समय जिस IPL की वैश्विक ब्रांड वैल्यू करीब $2 बिलियन यानी 1700 करोड़ रुपए हुआ करती थी, वह आज बढ़कर लगभग 6 गुनी यानी $12 बिलियन हो चुकी है, जो कि भारतीय मुद्रा में तकरीबन 10,200 करोड़ रुपए बैठती है। वर्ष 2008 में BCCI ने कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमों के साथ IPL के आयोजन की शुरुआत की थी। यह वो समय था जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 फॉर्मेट का चलन प्रारंभ ही हुआ था। उस वक्त तक विश्व स्तर पर क्रिकेट में मुख्यतः 5 दिन के टेस्ट मैच और 50 ओवर प्रति पारी वाले एक दिवसीय मुकाबले ही लोकप्रिय हुआ करते थे। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठा था कि क्या T20 फॉर्मेट वाली IPL व्यावसायिक रूप से अपने कदम जमा पाएगी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ यह सारी आशंकाएं निराधार साबित हुई। IPL न केवल व्यावसायिक रूप से बेहद कामयाब साबित हुई बल्कि इसकी आशातीत सफलता ने पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट को भी लोकप्रियता के चरम पर पहुंचा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, IPL की सफलता ने दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी व्यावसायिक कामयाबी की एक नई राह दिखाई, और नतीजा यह हुआ कि आने वाले सालों में दुनिया के अन्य कई हिस्सों में भी IPL की तर्ज पर प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीगों के आयोजन शुरू हो गए। इस तरह के कुछ प्रमुख टूर्नामेंटों में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, इंग्लैंड की

0: इंग्लिश क्रिकेट लीग, दक्षिण अफ्रीका की SA20, पाकिस्तान की PSL और वेस्टइंडीज की कैरेबियन प्रीमियर लीग के नाम लिए जा सकते हैं। इनके अलावा श्रीलंका, USA, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के क्रिकेट बोर्डों ने भी अपने यहाँ प्रोफेशनल T20 लीग के आयोजन प्रारंभ किए। ये अलग बात है कि इन तमाम लीगों में से अधिकांश व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई और कुछ सीजन के बाद बंद हो गई। दरअसल IPL की जबरदस्त व्यावसायिक कामयाबी के लिए जिम्मेदार है इसका सुव्यवस्थित ढांचा और अनुभवी प्रोफेशनल टीम, जो कि मैदानों और क्रिकेटरों के प्रबंधन से लेकर प्रसारण, टिकट बिक्री, प्रचार और आर्थिक मुद्दों तक आयोजन के प्रत्येक पहलू को बड़े प्रभावी ढंग से संभालती है। इस सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि साल दर साल IPL की प्रसिद्धि, लोकप्रियता और व्यावसायिक कामयाबी में बढ़ती ही जा रही है। आज यह न सिर्फ विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीग बन चुकी है, बल्कि दुनिया भर की तमाम प्रोफेशनल खेल लीगों में भी चौथे नंबर पर आ गई है। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से IPL ने इंग्लैंड की मशहूर फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2008 में 8 टीमों के साथ IPL का पहला सीजन खेला गया था। उस वर्ष शेन वॉन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खिताब जीता था। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें कुल मिलाकर 5-5 बार IPL चैंपियन बनने में कामयाब रही हैं और उनके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार IPL खिताब जीता है। समय के साथ IPL में उतरने वाली टीमों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, साथ ही टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि और विभिन्न टीमों द्वारा अपने प्रमुख खिलाड़ियों को दी जाने वाली अनुबंध राशि भी कई गुना बढ़ चुकी है। 2008 के पहले सीजन में जहां टूर्नामेंट का टाइटल प्रायोजक बनने के लिए DLF समूह ने प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपए की बोरी लगाई थी, वहीं आज टाटा समूह ने 2024 से 2028 तक के 5 वर्षों के प्रायोजन अधिकार 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष में हासिल किए हैं। लेकिन IPL की सबसे बड़ी खासियत यह है, अपनी लंबी कामयाब यात्रा के दौरान अब यह महज एक खेल टूर्नामेंट नहीं रहा है, बल्कि एक बहुत बड़ा व्यावसायिक अवसर बन चुका है, जिसका लाभ असंख्य व्यक्तियों, कॉरपोरेट हाउसेज को होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी इससे कई रूपों में लाभान्वित हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन युवा क्रिकेट प्रतिभाओं की, जिनके लिए IPL के जरिए से सर्वोच्च मंच पर अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका हाथ लगा। इस मंच पर सही वक्त पर चमक जाने वाले कई युवा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के द्वार भी खुलते देखे गए और इनमें देशी और विदेशी दोनों ही तरह की प्रतिभाएं शामिल थीं। विभिन्न टीमों द्वारा अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी अच्छी खासी रकम में अनुबंधित किए जाने की जो परिपाटी IPL ने शुरू की, उसकी बदौलत क्रिकेट को करियर बनाने का ख्वाब देखने वाले युवाओं की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। युवा प्रतिभाओं के अलावा खेल से अवकाश ले चुके पूर्व दिग्गजों के लिए भी IPL ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। ऐसे तमाम नामचीन खिलाड़ी आज कमेंटेटर, तकनीकी विशेषज्ञ, कोच के रूप में विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के साथ जुड़कर अपनी आजीविका चला पा रहे हैं। अब बात करते हैं देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर IPL के प्रभाव की। एक प्रमुख अखबार के सर्वे के मुताबिक IPL के जरिए से देश में लगभग 12.5 लाख रोजगारों का सृजन हुआ है। इनमें होटल, पर्यटन, टैक्सी, खानपान तथा विज्ञापन सेक्टर में बने अवसर शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अप्रैल और मई के 2 महीनों में, जबकि IPL का सीजन अपने पूरे शबाब पर होता है, उस दौरान देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है। सीजन के दौरान विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के लिए खेल रहे विदेशी स्टार खिलाड़ियों के प्रशंसक उनका प्रदर्शन देखने के लिए निश्चित रूप से भारत पहुंचते हैं। यदि देश की अर्थव्यवस्था और GDP में IPL के प्रत्यक्ष योगदान की बात करें, तो अब तक IPL प्रबंधन आयकर व GST के रूप में भारत सरकार को करीब 3,500 करोड़ रुपए की कर राशि अदा कर चुका है। इसे भी IPL के एक सकारात्मक योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि IPL आज की तारीख में महज एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक व्यापक जीवन दृष्टि अर्थात परसेप्शन की शक्ल ले चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर तो वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभाव डाल ही रहा है, साथ ही इसके अनूठे बिजनेस मॉडल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी समृद्धि की एक नई राह दिखाई है।
1: श्रोताओं, खेल न केवल शारीरिक मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि मानसिक मजबूती के साथ व्यक्तित्व विकास में भी ये योगदान करते हैं। इनसे ऊर्जा का सदुपयोग होता है और आजकल खेल एक शानदार करियर विकल्प भी बन गया है, जो युवाओं को न केवल नाम बल्कि अच्छी आय भी प्रदान करता है। बस आवश्यकता है प्रतिभाओं को खोज

0: कर एक मंच देना और कुशल प्रशिक्षण प्राप्त करके वे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जनपद मथुरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, आइए सुनते हैं जिला खेल अधिकारी राकेश यादव से की गई ये बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
1: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जिला खेल कार्यालय से जुड़कर जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
2: हमारे यहाँ सुबह और शाम, सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक प्रशिक्षण का कार्य चलता है, जिसमें हमारे पास 8 कोचेज हैं। फुटबॉल, हॉकी, फेंसिंग, जूडो, बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, ये सारे और स्विमिंग के हम लोग 8 लोग हैं। तो बच्चे आते हैं यहाँ रोज प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने यहाँ चले जाते हैं और उनको जितने भी हमारे कोचेज हैं सब बहुत डिसिप्लिन और अनुशासित हैं। बच्चों को स्किल पर और उनकी फिजिकल फिटनेस पे काम किया जाता है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं।
1: और वर्तमान में हमारे जिले के खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों से संबंधित किस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं?
2: हमारे पास सभी ग्राउंड आधुनिक तरीके से बने हुए हैं, जैसे फेंसिंग का है उसमें पिस्ट वगैरह है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। जूडो है, जूडो का हॉल है, मैट्स हैं। कुश्ती है, कुश्ती का हॉल है, मैट्स हैं। तो सारे उन मानकों पे है जो एक बाहर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। तो वो हमारी सरकार साथ में बहुत अच्छे सहयोग कर रही है, खेलों को आगे बढ़ा रही है। खेलों में बहुत सारे पुरस्कार सरकार के द्वारा, सरकार नौकरियां भी खेल कोटे से देने लगी है, ये सब है।
1: जिला खेल कार्यालय से खिलाड़ी किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में और बताएं।
2: बड़ी सरल प्रक्रिया है, हमारे यहाँ जो कोचेज हैं 8 खेल के या और अन्य खेल के, तो उनमें आता है बच्चा एक 18 साल से नीचे है, वो 210 रुपये उसका पूरे साल का कार्ड बनता है। जो हमारे यहाँ फीस एक है सरकार द्वारा निर्धारित, उससे लेके 210 रुपये में पूरे साल का एक कार्ड वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने लगता है। सुबह शाम आके वो कार्ड आइडेंटिटी कार्ड रहता है, मिनिमम फीस है, आ सकता है और अपना रजिस्ट्रेशन करा कि जिस खेल में इच्छुक है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उस पर फिर हमारे कोचेज उस बच्चे पे काम करते हैं, काम करके वो बच्चा हमारे जिले के लिए, हमारे मंडल के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए खेलता है।
1: जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर आते हैं सीधा अपना यहाँ जुड़ सकते हैं या वो किसी स्कूल से संबंधित होना चाहिए?
2: ऐसा कुछ नहीं है किसी स्कूल से, लोकल बच्चे गार्जियंस आते हैं अपने घर से बच्चे लाते हैं। जरूरी नहीं है कि स्कूल का बच्चा है, सारे बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं तो वो इंडिविजुअल गार्जियंस ले आता है। कोई स्कूल नहीं आ रहा है, उनकी संख्या नहीं हो रही है तो वो सीधा आ सकता है, तो ऐसी कोई उसमें पाबंदी नहीं है।
1: वर्तमान में किस खेल में विशेष रूप से खिलाड़ियों की रुचि देखने को मिल रही है?
2: यहाँ जो बेल्ट है हमारी मथुरा की या मथुरा के आसपास की, वो कुश्ती वाली है। तो कुश्ती यहाँ का एक समझ लीजिए जनपद का खेल है, यहाँ के लोकल खेल है, तो कुश्ती में ज़्यादा बच्चों की रुचि रहती है। तो यहाँ हमारा खेलो इंडिया का सेंटर भी कुश्ती का ही चल रहा है, तो उसमें बच्चे लाभान्वित होते हैं, खेलने जाते हैं।
1: और इसके अलावा और किन किन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा है?
2: एथलेटिक्स में है, फुटबॉल में है, सारे बच्चे, जूडो में है, बैडमिंटन में भी है, सारे खेलों में बच्चे पर्याप्त हैं।
1: यहाँ पर स्टेडियम में एक तरणताल बना हुआ है, तो उसमें क्या विशेष सुविधा है, क्या उसके लिए यहाँ विशेष कोच रखे हुए हैं?
2: बिल्कुल, स्विमिंग का मैं खुद हूँ तो मैं बच्चों को कोचिंग देता हूँ। लाइफ गार्ड है, उसकी प्रक्रिया आजकल में पूरी हो जाएगी, रेगुलर चालू हो जाएगा। अभी भी स्विमिंग पूल चल रहा है, उन बच्चों को एडमिशन है जो बच्चे स्विमिंग जानते हैं या स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, उन सारे बच्चों को हम एडमिशन दे रहे हैं और चला रहे हैं स्विमिंग।
1: तैराकी में भी क्या कुछ विशेष रुचि देखने को मिल रही है?
2: हाँ, तैराकी में जो बच्चे हैं वो आते हैं, अपने कंपटीशन में भाग भी लेते हैं और अपना प्रैक्टिस करते हैं।
1: सरकार के द्वारा खेलो इंडिया जैसी योजनाओं का लाभ हमारे जनपद के खिलाड़ियों को किस प्रकार मिल रहा है?
2: पूरे इंडिया स्तर पर खेलो इंडिया भारत सरकार की स्कीम है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है पूरे देश में। तो हर एक जनपद में अलग अलग खेल है। हमारे यहाँ कुश्ती का चयन हुआ है, जो कुश्ती खेल है वहाँ 30 बच्चों का चयन किया जाता है और उन 30 बच्चों को रेगुलर अभ्यास किट वगैरह हमारी सरकार द्वारा दिलाई जाती है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके बच्चों का पूरा ध्यान दिया जाता है।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी रहते हैं लेकिन उनको एक सही मंच नहीं मिल पाता है, तो ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों में

0: खेलों को लेकर क्या कोई विशेष योजना है?
1: जी बिल्कुल, विशेष योजना है इस बार जो विधानसभा स्तर पर विधायक खेल स्पर्धा, जिले स्तर पर सांसद खेल स्पर्धा, वो ही उसी का भाग है जो ग्रामीण अंचलों से जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं वो पहले विधानसभा स्तर पर भाग लेंगे, फिर सांसद खेल स्पर्धा वे जिले स्तर पर, और इसके बाद जोन स्तर पर आगरा में जोन होगी, फिर इसके बाद स्टेट होगी। ऐसे उन बच्चों को अवसर दिए जाते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए।
0: मथुरा जनपद में मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम के अलावा अन्य जगह भी स्टेडियम वगैरह या अन्य सुविधाएं खेलों से संबंधित मौजूद हैं?
1: जी, जैसे हमारा एक समकक्ष विभाग है, हम लोग मिलके काम करते हैं, जिला युवा कल्याण अधिकारी, वो माट में उनका स्टेडियम है, कोसी में है, एक शेरगढ़ में है, तीन उनके बड़े स्टेडियम बने हुए हैं, वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनके व्यूज वगैरह हैं तो उसको देखते हैं।
0: जो खिलाड़ी आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन वो प्रतिभावान हैं, तो ऐसे खिलाड़ी अगर खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या सरकार द्वारा उन्हें कुछ सहायता या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है?
1: जी बिल्कुल, कराई जाती है जूनियर स्तर पे, सब जूनियर स्तर पे और सीनियर स्तर पे। हमारे यहाँ एक क्लब क्रीड़ा कोष की व्यवस्था है, जो खेल साथी पोर्टल पे अच्छे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट से लेके सिक्स प्लेस तक पोजीशन है, वो राष्ट्रीय स्तर पे है, वो प्रतिभावान है, अच्छे खिलाड़ी हैं, गरीब हैं, उनको एक क्लब क्रीड़ा कोष के माध्यम से आर्थिक सहायता उनके उपकरण खरीदने पर, उनके भोजन पर, उनके अभ्यास हेतु मुख्यमंत्री द्वारा एक कोष बनाया गया है, उसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और यहाँ से चार तीरंदाजी में बच्चे हैं और दो कुश्ती में हैं, उनको लाभ अभी तक हम 14 लाख रुपए दे चुके हैं तीरंदाजी पे और लगभग 4 लाख रुपए कुश्ती पे।
0: इसमें राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार से भी कुछ सहायता मिलती है?
1: बिल्कुल, जब बच्चा अच्छा अचीव करने लगता है तो छात्रवृत्तियां हैं, खिलाड़ी को पुरस्कार राशि है जो हमारा विभाग सब देते हैं।
0: आगे आने वाली कुछ विशेष बड़ी प्रतियोगिताओं के बारे में बताना चाहेंगे?
1: अब इस साल 26-27 में बहुत सारी यहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, बहुत सारे ट्रायल्स होंगे, बहुत सारे जिले और मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी, तो उनमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कैसे कराना है।
0: यहाँ जो खिलाड़ी जुड़े हुए हैं तो समय समय पर उनको प्रतियोगिताओं के बारे में और ट्रायल्स के बारे में सूचित किया जाता है।
1: बिल्कुल, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से खिलाड़ियों का जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनका प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक जनमानस तक हमारी बात पहुंचे, सरकार की बात पहुंचे। सरकार खेल के रूप में बड़ा काम कर रही है तो वो बच्चे पार्टिसिपेट करें और प्रतियोगिताओं में भाग लें।
0: ऐसे अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर देते हैं और उनको खेलों से दूर रखते हैं? देखा जा रहा है कि आजकल खिलाड़ी जो हैं खेलों में भी बड़ा देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अपना अच्छा कैरियर बना रहे हैं, तो क्या संदेश रहेगा इसको लेकर आपका?
1: खेल में अनुशासित रहें बच्चे और अपना बेस्ट करें, ये नहीं देखें कि ये आइडियल, सबके आइडियल होते हैं, उनके भी आइडियल हैं, उन आइडियल को पकड़ें। जैसे आप एथलेटिक्स के हैं तो पीटी उषा वगैरह या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे, हमारे थ्रोअर हैं अभी चोपड़ा जी, उनका इतिहास देखें कि इतना कितना ये वर्क करते थे, जब ये सफल हुए तो उस पे फोकस करना पड़ेगा। बच्चों को जो ट्रेनिंग करने वाले हैं तो वो जरूर वो अचीव करेंगे जो उनने किया, नीरज चोपड़ा ने जो अचीव किया, हमारी उड़न परी कहलाने वाली पीटी उषा थी, उनने बहुत अचीव किया, हमारे नामी ग्रामी आप जानते ही हैं, दद्दा ध्यानचंद का नाम सुना होगा आपने, वो तो महान हस्ती थे। उनके जन्म दिवस पे हम लोग 29 अगस्त को बढ़िया खेल डे बनाते हैं और बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं।

0: और अब श्रोताओं खेल की सुर्खियों के साथ हैं हेमेंद्र कृष्ण शर्मा।
1: खेलों में सबसे पहले बात खेल हॉकी की। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 समारोह में महिला टीम की स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी नवनीत कौर और पुरुष टीम के उपकप्तान

हार्दिक सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 1980 के मॉस्को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य और पूर्व कप्तान जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ में हार्दिक के अलावा सुखजीत, संजय और अभिषेक शामिल हैं। 2025 की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब बलजीत सिंह पुरस्कार विदु देवी खारी बम को दिया गया, जबकि हॉकी इंडिया प्रगट सिंह सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार संजय ने जीता। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का अजीत पाल सिंह पुरस्कार सुमित को और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का धनराज पिल्ले पुरस्कार सुखजीत सिंह को मिला। सभी खिलाड़ियों को 5-5 लाख का चेक दिया गया। फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए 48 टीमें तैयार हो गई हैं। पिछले 2.5 साल से क्वालिफाइंग प्रक्रिया चल रही थी। उत्तरी मेक्सिको के मॉन्टरी में मंगलवार को खेले गए अंतर महाद्वीपीय प्लेऑफ में इराक ने बोलिविया को 2-1 से हराकर 48वां और अंतिम स्थान हासिल किया। यह मैच बोस्निया हर्जेगोविना की यूरोपीय प्लेऑफ में 4 बार के चैंपियन इटली पर पेनल्टी शूटआउट में उलटफेर भरी जीत के कुछ घंटे बाद खेला गया। क्वालिफाइंग के आखिरी दिन यूरोप की 8 टीमें 4 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग करने वाली एक अन्य टीम कांगो थी, जिसने मेक्सिको में जमैका को 1-0 से हरा दिया। स्वीडन, तुर्की और चेक गणराज तीनों ने यूरोपीय प्लेऑफ में क्वालिफाइंग किया है। स्वीडन ने पोलैंड को 3-2 से, तुर्की ने कोसावा को 1-0 से, चेक गणराज ने डेनमार्क को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। विश्व कप 11 जून से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। यह पहला अवसर होगा कि विश्व कप फुटबॉल में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने मेलबर्न में जबरदस्त कारनामा किया। वे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के चैंपियन बन गए हैं। 22 साल के अल्कराज ने पुरुष एकल के फाइनल में दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-2, 7-5 से हराया। अल्कराज का यह 7वां ग्रैंड स्लैम है। पहली बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रचा था। सर्बिया के जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूट गया। हालांकि जोकोविच के पास हर रिकॉर्ड है। उन्होंने रोजर फेडर और राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके पास सेरेना विलियम्स से एक और अधिक खिताब है। सेरेना के नाम 23 एकल खिताब हैं। जोकोविच टेनिस के दमदार खिलाड़ी रहे हैं। कोर्ट पर उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। उनकी सर्विस और बैकहैंड ड्राइव देखते ही बनता है। जोकोविच से आने वाले समय में भी बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा। भारत में 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी और क्रिकेट को जरूर शामिल किया जाएगा, जबकि कबड्डी, योगासन, खो खो और मलखम जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों में से 2 को जगह दी जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे की अध्यक्षता में इसके प्रतिनिधिमंडल ने पिछले सप्ताह मेजबान शहर अहमदाबाद में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। हमारे पारंपरिक खेलों में से कबड्डी, मलखम, खो खो और योगासन में से 2 को शामिल करने का प्रयास है। ग्लासगो में इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में बजट में कटौती के कारण क्रिकेट और हॉकी को शामिल नहीं किया गया है। खेल मंत्री ने कहा कि भारत में होने वाले खेलों में इसकी वापसी होगी। भारत में अब खेलों को प्राथमिकता में रखा जा रहा है। भारत में 2010 के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है। भारत में फॉर्मूला 1 रेस की वापसी होगी। इसके लिए सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत में 2013 के बाद रेस नहीं हुई है। ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के 10 वर्षीय आरित कपिल स्पेन के मेनारका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के अंतिम दौर में ऑस्ट्रेलिया के सैमुअल असाका के साथ ड्रॉ खेलकर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर IM नाम हासिल करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं।
आरित ने यह उपलब्धि 10 साल 7 महीने की उम्र में हासिल की। प्रतियोगिता में आरित का सबसे शानदार प्रदर्शन अर्जेंटीना के 12 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ओरो के खिलाफ रहा, जिन्हें शतरंज की दुनिया का मेसी कहा जाता है।

0: टीपी सिंगेमन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट के 31वें संस्करण में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी ने शानदार शुरुआत करते हुए दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पहले दौर में ड्रॉ पर रोक दिया। मैच के दौरान कार्लसन ने क्वीन साउंड पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने सटीक बचाव करते हुए 24वीं चाल चलकर पास्ट प्यादे के खतरे को खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े को सक्रिय करते हुए स्थिति को सरल बनाया। रुक के आदान प्रदान के बाद सफेद मोहरों के पास जीत का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचा और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ये टूर्नामेंट क्वालिफाइंग शतरंज के सबसे मजबूत आयोजनों में से एक माना जाता है। इसमें 2024 के विजेता नॉडरबैक, 2021 के चैंपियन जॉर्डन वान फॉरेस्ट और स्वीडन के नंबर एक खिलाड़ी निल्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी खिताब के लिए मुकाबला कर रहे हैं। क्रिकेट के खेल में आईपीएल का 19वां संस्करण चल रहा है। ये टूर्नामेंट मई के अंत तक चलेगा। इस समय आईपीएल टूर्नामेंट अपने रोमांचक दौर में चल रहा है। प्रत्येक टीम प्लेऑफ में आने के लिए संघर्ष कर रही है। टूर्नामेंट में अब तक 50 से ज्यादा मैच हो चुके हैं। इस समय में खेले जा रहे सभी टीमों के सभी मुकाबले टूर्नामेंट के लिए अहम माने जा रहे हैं। अभी तक पहले नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद, दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स, तीसरे स्थान पर आरसीबी और चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स जैसे टीमें हैं। इस बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने सभी को प्रभावित किया है। सूर्यवंशी ने आकर्षक क्रिकेट खेली है। सूर्यवंशी बहुत जल्द भारतीय टीम में खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा, संजू सैमसंग, रिंकू सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स की दो बार मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आईपीएल क्रिकेट अपने चरम पर है। कौन जीतेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आईपीएल क्रिकेट भारतीयों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। खेल जगत में यह महीना उपलब्धियों और संघर्ष से भरा रहा। खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
1: श्रोताओं, खेल दर्पण के आज के इस अंक में बस इतना ही। आलेख वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का था। प्रस्तुतकर्ता थे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।

अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग बागेश्वरी में विचित्र वीणा वादन। वादा कलाकार हैं रमेश प्रेम। तबले पर इनके साथ संगत की है शरीफ अहमद खान ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी में विचित्र वीणा वादन, वादक कलाकार थे रमेश प्रेम। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम